0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामईन नाज़रीन, जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ होती है हम आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की फ़जाओं से मुस्लिम लीग काफ के सीनियर नायब जनाब अज़हर बेग साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बेग साहब, आपको कोपेनहेगन की फ़जाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
2: ये बड़ी मेहरबानी राय साहब, मेरी तरफ से सब डेनमार्क के रहने वालों को अस्सलाम वालेकुम और आपको भी।
1: वालेकुम सलाम। बेग साहब, आपकी मसरूफियात हमें मीडिया के जरिए तो पता चलती रहती हैं, तो आज कल क्या हो रहा है पाकिस्तान में, आपकी क्या मसरूफियात हैं?
2: देखिए जी, आजकल पंजाब के अंदर जो भी काम वगैरह, जो भी शाफे साहब ने जितने स्पेशली गुजरात के अंदर काम कराया, दूसरे जिलों में भी, पूरे पंजाब में वो वर्क कर रहे हैं। इतने बिजी होते हैं कि मुझे भी उनसे मिलने के लिए या दूसरे कुलीग को भी टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि वो काफी मीटिंग एवरी डे, वो जब भी सुबह से लेकर रात तक, फिर घर में बैठ के भी वो लोगों को टाइम देते हैं, मुस्लिम लीग हाउस में भी टाइम देते हैं। तो सब लोग मिलजुल के हम लोग काम कर रहे हैं। मसले मसाइल तो बहुत ज्यादा है लोगों के, और महंगाई का भी दौर है, तो ऊपर से ये बारिशों का मौसम है गुजरात में, स्पेशली वो सैलाब वगैरह का सिलसिला चल रहा है, उसमें भी ये दौरे वगैरह करते हैं, और जो हो सकता है इनको लोगों की मदद मदाद भी करते हैं, तो अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से भी, दो मिनिस्ट्री है उनके हवाले से भी काम करते हैं। वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए भी वो सब लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। मरकज में सालक साहब है, पंजाब में शाफे साहब है, और हम लोग इनके साथ है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे। तो बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा लग रहा है। इधर की पॉलिटिक्स, इधर की सियासत और उधर की सियासत जरा और तरीके की है, इधर जरा और तरीके की है, तो अच्छा है, वो सीख रहे हैं, तो अपने की आदत से सीखते रहेंगे इंशाल्लाह, जो वो बोलेंगे उनके मुताबिक काम करेंगे जी।
1: बेग साहब, आपकी मीटिंगें होती रहती हैं, जरा पार्टी की मीटिंगें चलती रहती हैं, जो अखबारात में भी मैं पढ़ता रहता हूँ कि और आजकल हर रोज आपकी कोई ना कोई मीटिंग होती है, तो यहाँ डेनमार्क में भी माशाल्लाह 14 अगस्त बड़ी धूमधाम से मनाया गया, पाकिस्तान अम्बेसी की बड़ी ज़बरदस्त तकरीब थी, और वहाँ बहुत सारी चीज़ों को, इस दफ़ा शील्ड भी दी गई, सारा इम्तियाज़ भी जो है वो कोपेनहेगन के शहरियों के हिस्से में है, आप भी कोपेनहेगन के शहरी, आप क्या कहेंगे?
2: जी, मेरी तरफ से तो मलक साहब को भी मुबारक हो, वो डेनमार्क में रहने वाले पाकिस्तानी एक बंदे को गवर्नमेंट पाकिस्तान वो अगर इस नवाज रही है तो मैं खुशी होनी चाहिए, वो इस काबिल है। स्पेशली आपको भी उन्होंने शील्ड दी है, आपको भी मुबारक हो।
1: शुक्रिया।
2: अल्लाह आगे भी आपको तरक्की दे, और ऐसे ही चलते रहे हम सब मिलजुल के, तो खुशी होती है जब अपना, मेरा मुल्क तो डेनमार्क भी है, मेरे सारा आप लोग सारे बहन भाई हैं उधर हैं, तो आप लोगों का नाम लेता हूँ, बात बात पे कहता हूँ कि हम डेनमार्क के लिए कुछ करें, स्कैंडिनेविया के लिए कुछ करें, उधर के ओवरसीज़ के लिए कुछ करें, वो कहते हैं इंशाल्लाह टाइम देंगे, करेंगे और हम सब लोगों को साथ लेके चलेंगे। तो मेरी तो यही कोशिश है कि सब लोग अच्छे तरीके से, हम पाकिस्तान भी जब आए तो अच्छी सानियां पैदा हो हमारे लोगों के लिए, स्पेशली एयरपोर्ट पे, और स्पेशली जो थाना कचहरी का कल्चर है इसमें सानियां पैदा हो, जो लोगों के साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जो लोग सलूक करते हैं, मैंने खुद भी देखा है और लोगों से भी सुना है जी, बहुत ज्यादती करते हैं। तो इस पे वो मोहसिन नकवी साहब से भी वो कहते थे हम बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो वजीरे दाखला है, उनके अंडर है इंतजामिया सारी पूरे पाकिस्तान की। अच्छा होगा, राम राम से होगा इंशाल्लाह। अभी 2-2.5 साल है तो चौधरी से बवाल लगे हुए हैं, दोनों भाई सारे मिलजुल के कर रहे हैं, और पंजाब में स्पेशली इंशाल्लाह इनका काम नजर आ रहा है, गुजरात में तो नजर आया सबको, सड़कें बन गई हैं, सारा काम कंप्लीट हो
1: ये रहा। बेग साहब ये जो पानी नजर आता है ये पानी इतना ज्यादा कहाँ से आ जाता है? हम भी रहे पाकिस्तान में कभी इतना सड़कों पे पानी नजर नहीं आता, या ये भी कोई एक आई मूवी बनती है जिसमें इतना बड़ा सैलाब दिखाया जाता है गलियों में?
2: नहीं नहीं ये नेचुरल है, इसलिए कि ये बारिश का जो पानी था वो तो शाफे साहब ने क्लियर कर दिया, पहले 10-10 दिन वो पानी नीचे नहीं जाता था, अब अल्लाह का शुक्र है कि वो क्लियर है, पीछे रह जाता है। ये जो पानी आता है ये सैलाब का पानी कह ले, हमारे से कोई 15-20 किलोमीटर दूर है बल्लू खोखर उसको कहते हैं, गाँव है सड़क है, उधर से वो जो सैलाब आता है ना पानी, वो बन जो होता है वो तोड़ देते हैं लोग, वो शहर की तरफ पानी कर देते हैं, तो वो पानी जब शहर में आता है तो वो सैलाब की तरफ लोगों के घरों में सड़कों में वो पानी आके खड़ा हो जाता है, फिर गाड़ियां लगती हैं, फिर वो टाइम तो लगता है। पहले लोगों ने बोरियां गटरों में बोरियां डाल दी थी ना, जो इनको इनके साथ जो भी बातें लोग करते थे अपोजिशन वाले, आपको भी पता है मुखालफत जब होती है तो ऐसे प्रोग्राम वो लोगों ने बंदे छोड़े होते हैं जो इनके खिलाफ काम करते हैं, ऐसे घटिया काम है ये, जो लोगों को तकलीफ देते हैं, बंदों को नुकसान करते हैं घरों का।
1: पेक साहब आपने ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है कि लोग गटरों में बोरियां दे देते हैं अपनी मुखालफत में, ये तो कम्युनिटी को नुकसान होता है।
2: ये तो सबको पता है कि ऐसे ही करते हैं, ये दलालत करते रहे हैं, अब नहीं होगी, अब तो बहुत ये मरियम नवाज ने भी इस पे एक्शन लिया है, गटर सिस्टम है, गटरों के ढक्कन ले जाते हैं और जो पुल के ऊपर वो जंगला वगैरह लोहे का होता है वो काट के ले जाते हैं, बंदे भी नहीं अपने आप को दुरुस्त करते। ठीक है
1: बेग साहब, आपको मौका मिलता रहता है लीडरान से मिलने का, तो चौधरी शाफे और जो दोनों भाई जो हैं वो बड़ा मेहनत कर रहे हैं, हमारे ओवरसीज के जो वजीर हैं वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप सब आपका मिलना जुलना रहता है, तो आप खुद ओवरसीज के मसाइल सबसे बेहतर कौन जानता आपके?
2: जी जी तो जो हमारी मीटिंग हो रही है ना वो सालक साहब के साथ होगी स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, तो उसमें शाफे साहब का मेरी कोशिश है स्कैंडिनेविया में स्पेशली डेनमार्क में वो आए और आएंगे इंशाल्लाह, और पहला इंटरव्यू भी आपके साथ करेंगे आने से पहले भी, और मंगल वाले दिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब में आम लीडर्स ब्रांड से आपका बात भी मैं कराऊंगा और मीटिंग भी दिखाऊंगा लाइव, और जो भी हमारा प्रोग्राम होगा वो मेरी कोशिश होगी कि मेरे कोपेनहेगन के लोग देखे, मुझे ना देखे इनके काम देखे, चौधरी शाफे साहब के काम देखे, सालक साहब के काम देखे, और ये कर रहे हैं इंशाल्लाह और आगे भी करेंगे, और जो भी मसले मसाइल है डेनमार्क के अंदर लोगों को, जो भी किसी फैमिली को कुछ जमीन का है या कोई वैसे ये पर्चे वगैरह जाली लोग करा देते आजकल तंग करने के लिए, या और भी कोई मसले मसाइल है तो वो मुझे बताए, आपको बता दे, किसी और को बता दे, वो इन तक पहुंच जाएंगे और ये एक्शन लेंगे इंशाल्लाह, लेते हैं नोटिस लेते हैं, मैंने ये शाफे में देखा है सालक साहब में देखा है कि ये नोटिस लेते हैं, ये झूठ के खिलाफ बोलते हैं, बात सच्ची हो और ये उस बंदे के साथ खड़े हो जाते हैं। बकाया हमारी आपस की लड़ाइयों में छोटी मोटी मैं ऐसे हूँ मैं ऐसे हूँ, मेरे लिए सारे काबिले इज्जत है जो उधर बैठे हैं, मैं आप लोगों में से हूँ, मैं उधर ही आना है, ये आनी जानी चीजें होती हैं, ये सीटें ये उद्दे ये कोई मायने नहीं रखते, इंसान का खलाक प्यार और असद जायलस मुनाफत जो है ये अच्छी बात नहीं।
1: बेग साहब हमने देखा आपका ऑफिस बड़ा खूबसूरत है, लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं, पीछे बड़ी खूबसूरत आपने तस्वीर भी लगाई हुई है अलामा इकबाल साहब की, बाकी कायदे आजम की तस्वीर भी हमने देखी है, लोग साहिल आपकी आपके पास आते हैं तो जहर है आप एक पोस्ट पे बैठे हुए आम बंदे तो नहीं आप रह गए पंजाब में, अगर सीनियर नायब सदर है तो कोई छोटी पोस्ट तो नहीं है ये?
2: देखिए जी ये जो मेरे सुनने वाले हैं ये भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, ये पंजाब कितना बड़ा 13 करोड़ आबादी का पंजाब है, और किधर सिंध के पास से शुरू होता है वो उधर जाता है पिशावर तक, पिशावर से आगे जाता है, तो लोग आते हैं इनके पास, بہت بڑی پارٹی ہے ماشاءاللہ، چارے صوبوں میں اس کی نمائندگی ہے، آپ چیک کرا لیں۔ اور لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو پنجاب کے رہنے والے ہیں، اور پراپر ہم ٹائم دیتے ہیں، ان کے مسئلے مسائل سنتے ہیں، اور ہم نے اپنے قائدین کو بتاتے ہیں جی یہ ملتان سے آئے ہیں، 14 اگست کو یہ سارا پنجاب کے لوگ، لیڈیز اور جینٹس سب آئے ہوئے تھے، اور شافی صاحب نے سارا دن میں ساتھ تھا، انہوں نے ٹائم دیا، تمام چینل والے ادھر تھے، ARY جیو 42 یہ جتنے رنگ ٹی وی دنیا سارے تھے ادھر، اچھا ٹائم گزرا ہے، سب خوش تھے۔ اور اسپیشلی انہوں نے بولا تھا کہ جو اوور سیئر ہے ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ بتائیں ہم انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یورپ کے لوگ ہیں، وہ سعودی عرب کے ہوں گے، دبئی کے، کویت کے، جدھر قطر کے، وہ کہتے ہیں ہم کام کریں گے، تو وہ کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی کام ہو، آپ لوگ، آپ بھی شافی صاحب کے ساتھ ٹائم لے کے آپ ان کا، میں کوشش کروں گا کہ مہینے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ آپ سنڈے کو وہ 10 منٹ یا 5 منٹ یا 20 منٹ وہ دیں گے، یہ وعدہ ہے میرا، میں کرواؤں گا، انٹرویو کرواؤں گا ان کا۔ میں نے ان کو پہلے بھی بولا تھا جب کوپن ہیگن میں تھا، تو میں نے بولا شافی صاحب ان کو ٹائم دے، راج صاحب کو ٹائم دے، میڈیا کو ٹائم دے، لوگ ان کو سب سنتے ہیں، تمام پاکستانی ان کو سنتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، تو وہ کہتے تھے آپ کے میں دوں گا ٹائم، تو انشاءاللہ میں، آپ خود بھی ان سے بات کر سکتے ہیں، اور کوپن ہیگن کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، پہلے ڈبل نیشنلٹی کا تھا، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے، یاد ہے بہت سال سب نے سرنیچر کر کے دیے، اور ہم امبیسی میں جاتے تھے، پیچھے بھی چور شرابہ ڈالتے تھے کہ سب کو مل رہی ہے، ڈینمارک کو بھی دے، تو اللہ نے کیا تو وہ مل گئی۔ اب پی آئی اے کا مسئلہ ہے، تو وہ بھی اللہ کرے، سب میرے سے سمجھدار بیٹھے ہیں ادھر، ان کے بہت اچھے ہیں، سارا سلوک تعلق ہے پیچھے، تو میں اس لیے خاموش بھی رہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں۔
1: نہیں بیگ صاحب، چونکہ آپ وہاں موجود ہیں، آپ پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ پارٹی کے سینئر نائب صدور صدر ہیں، تو آپ کی بات چیت چلتی رہتی ہے، تو لیڈران کو بولے، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہاں پی اے کا ہونا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، پرافٹیبل جو ہے وہ یہ اسٹیشن ہے، یہاں سے بہت زیادہ پرافٹ ہوتا ہے، زر مبادلہ جاتا ہے۔ تو بیگ صاحب انشاءاللہ یہ پروگرام لائیو کریں گے، اور شافی صاحب سے وہ ساری چیزیں جو ہیں کھل کر بھی ڈسکس کریں گے، آپ بھی ڈسکس کریں چونکہ آپ ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں۔
2: جی میں ان کو کہتا ہوں کہ ڈینمارک کے اندر رہنے والا کوئی بھی اوور سیئر ہے، وہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ گجرات کا بندہ ہے جی، یہ میرے حلقے کا بندہ ہے تو یہ میرے ساتھ بات کر سکتا ہے، نہیں، جو بھی گجرات پنجاب کا رہنے والا بندہ ہے، چاہے پاکستان کا رہنے والا ہے، جو بھی کسی کو میرے ساتھ کام ہے میں انشاءاللہ اس کا کام کروں گا، یہ شافی صاحب کہتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ روٹین کے مطابق ہر بندہ جو چاہے ان کے ساتھ بات کرے، جو بھی مسئلہ مسائل ہے بتائے ان کو، اور جو بھی شکوہ گلہ شکایت پارٹی کے ساتھ ہے، قائدین کے ساتھ ہے، چاہے میرے ساتھ ہے، وہ شافی صاحب کو ڈائریکٹ بولے، یہ بات ہے جی ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے، وہ پارٹی لیول کی بات ہو، چاہے ویسے کسی کو، کسی پولیس والے سے، کسی مجسٹریٹ سے، کسی تحصیلدار سے، کسی پٹواری سے کوئی شکوا شکایت ہے تو وہ شکایت درج کرتا ہے، تو وہ سیل تو مریم نواز کا بنا ہوا ہے، مگر وہ سیل ان کے ساتھ بھی کام کرتا ہے، ان کی بھی شکایت وہ جاتی ہے فوری طور پہ، تو جو بھی کسی کا کام ہے وہ بتائیں ان کو۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ یہ ہمارے شہر کے ہیں، وہ چوہی شجاعت صاحب کے بیٹے ہیں، اور اچھا کام کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔
1: بیگ صاحب آپ کا قیمتی ٹائم ہے، آخری سوال آپ سے کرتے ہیں، یہ جو بلدیات کا بن گئی ہیں، یونین کونسلیں بن گئی ہیں، کوئی ادھر کوئی رائٹ کوئی لیفٹ، یا آگے پیچھے ہو گیا سارا سسٹم، آپ اس کو کس

0: बहुत ज्यादा तावन करती है, किसी को कोई शिकवा गिला नहीं है कि इनके साथी कोई ये करके वो करके, नहीं, बहुत अमन है गुजरात के अंदर माशाल्लाह। और ऐसे ही अफजाबाद, सियालकोट, गुजरावाला, जो भी डिवीजन के अंदर जितने जिले आते हैं, इंशाल्लाह इनमें हम फतेह हमारी होगी। हमने काम किया है, काम नजर आ रहे हैं, और हम भी उधर बैठते हैं दफ्तर में, लोग आते हैं तमाम से, पंजाब से, जिलों से, और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है।
1: बेग साहब
0: पाकिस्तान
1: आपका बहुत
0: मुस्लिम
1: शुक्रिया। हाफज साहब को सलाम दीजिएगा, जो आपका मीडिया सेल है और राजा साहब है उनको सलाम दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा।
0: थैंक यू सर, तमाम सुनने वालों को शुक्रिया, अल्लाह।
1: नाज़रीन ये थे मिर्ज़ा अज़हर बेग साहब, जो कि पाकिस्तान की फ़िज़ाओं से बात कर रहे थे, और सारी बातें आपने ख़ुद सुन ली। तो जब आपने ख़ुद सुन लिया, आपको सबको उन्होंने कहा कि आप ख़ुद डायरेक्ट भी फ़ोन किया करें, डायरेक्ट उनसे बात किया करें, कोई शिकायत हो तो आप ख़ुद बता दिया करें, और हमारा भी जिक्र कर रहे थे, हमें भी बता दिया कि सामान हम तो कम्युनिटी के मसाइल जहाँ जहाँ होते हैं उठाने की कोशिश करते हैं, हम कोई अकले कुल नहीं है, ना ही हम कोई पुलिस मैन है जो हम जो है डंडे के ज़ोर पर काम करते हैं। हमारा काम है अपने सामान, जो हमारे सामान है उनको इन्फॉर्मेशन देना, यही हमारा काम है। इंशाल्लाह हम अपना काम करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए, ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: क्या वो क्या कहती है, इनको क्या तजावीज देंगी?
1: मैं तो राय साहब आपको पता है हमेशा की तरह ये कहती हूँ कि आपसे वोट जरूर डालना है, ताकि जब आप वोट नहीं डालते तो जो वो एक बैलेंस खत्म हो जाता है। जो लोग हमारी बर्बादी चाहते हैं वो तो वोट डालते ही है, और हम लोग घर में भी बक बक झक झक करके गुस्से से वोट नहीं डालते, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ डालें। अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि आपको बोलने का भी हक हो ना। जब आप वोट नहीं डालते तो फिर एतराज करने का भी हक नहीं। मेरी तो यही होगी, और कामरान कोई अननोन शख्सियत नहीं है, काफी अरसे से अपनी हम वतनों के लिए स्वीडन में काम कर रहा है। मैंने तो हमेशा इसके बारे में अच्छा ही सुना है, तो अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे।
0: तो लुबना यहाँ की भी बात कर लें, यहाँ भी बड़े काम हुए और काम होने जा रहे हैं, यहाँ भी किसी टाइम भी पार्लियामेंट के इलेक्शन हो सकते हैं, कम्यून के इलेक्शन तो अपने टाइम पर होते हैं, तो यहाँ कम्यूनों में क्या हो रहा है?
1: आपको मेरी पेशन को याद नहीं आई कि मैंने कहा था ये अपना टर्नोल हुकूमत नहीं निकालेगी। अभी देखे जो पहला एतराज जो है कि जो के जैसे रेडिकल वेंचर के लिए नो गो है, वो ये है कि जो शरीयत की कमेटी है, इंफ्यूज़गास की कमेटी, वहां पे उन्होंने जो लोग काफी अरसे से शरीयत जिन्होंने अप्लाई की हुई थी उनको रोक दिया है, इस पर इतना बड़ा झगड़ा बना हुआ है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि लोग अगली दफा सोच के वोट डालेंगे, क्योंकि जहां उन्होंने वोट डाला है वो अभी भूले नहीं है। तो इस चक्कर में ना रहें कि सिर्फ अपने लोगों को वोट डालना है, उस चक्कर में रहें कि जो बंदा बंदी आपके लिए काम करती है, चाहे किसी पार्टी से भी हो। तो कि जिन लोगों ने जैसे डेनमार्क की सोशल डेमोक्रेट है उसमें और टेंस खोल के पार्टी में मेरा ख्याल है 70% फर्क है, 30% ये डिफरेंट है। अदरवाइज वो वही बातें करते हैं जो, या वही पॉलिसीज बनाना चाहते हैं जो डेनिश सोशल डेमोक्रेट है, जो कि डेंस खोल के पट्टी करती है। तो मैं तो बहुत उम्मीद करती हूँ, खुदा से दुआ करती हूँ कि मिड टर्म इलेक्शन आए तो कि हमारी इस मनूस से जान छुटे, कोई दूसरा आए जो कि हक इंसाफ की बात करें। अभी देखे कि इंगस्टॉयबिया ने एक उधर गिमनेजियम है, तो वहां पे कुछ बच्चों ने हमाकत है कि वो कहा कि लड़कियों को कहा तुम ये क्यों पहनती हो, वो क्यों पहनती हो, तो ये उनका काम नहीं है। बच्चों की तरबियत के लिए उनके वालदैन हैं, और वालदैन ही को फॉलो करना, क्योंकि सिस्टम ये कहता है कि बच्चे वालदैन के या सिस्टम के नहीं। तो जी वो इनका था कि उस जिमनेजियम को ही बंद किया जाए ना। तो अभी वो जिमनेजियम के बाद खड़े होके ये कह रही है कि मुसलमान ऐसे है ऐसे। तो मैंने कोपेनहेगन कमून को लिखा है कि वो कोपेनहेगन कमून की इंस्टीट्यूट है, तो इसके ऊपर कानूनी पाबंदी लगाए, या कोई भी हो कि किसी इदारे के बाहर अगर खड़ा होके कोई इस्लाम की बात नहीं कर सकता, तो ये जो बकवास कर रही है इसको क्यों इजाजत है? अब देखे क्या जवाब देती है, क्योंकि ये एक इश्तियाल अमेज हरकत है। ये अपने जमाने में खान यस पसंद कर चुकी है, वो टैक्सी पकड़ के ब्लॉगर्स प्लेस पे आती थी, दुनिया जहां की ओल फोल बकती थी, जिसका नतीजा हमें बाद में भुगतना पड़ा। बच्चे जज्बाती होते हैं जब वो उनको खड़े होकर बाहर गालियां दे रही है, उनके मजहब को गालियां दे रही है, तो वो क्यों ना उसका जवाब दे, कोई लॉजिकल बात करे ना। उनका ये जो कुछ भी गिमनेजियम में हुआ है वो उनका एक ये कह सकते हैं अंदरूनी मामला है, वहां पे स्कूल कॉलेज का बिस्टुअल से होता है, वहां पे कॉलेज का डीन होता है, इंस्पेक्टर होता है, उनको ये हल करने दो। तुम्हारा काम नहीं, तुम कमून की किसी चीज में जंप लगा के आग लगाने के लिए वहां से आओ, अपनी जो तुम्हारी जगह है तुम उसको संभालो। फिर उसने कहा कि जी ये जो ड्यून जाके होती है जो कि खुद वो हर वक्त पहनती है, वो ममनू करार देना चाहिए क्योंकि इसको मुसलमान पहनते हैं। मतलब देखे ना,
0: तो लुबना इस पर जो सियासी बाकी जमाते हैं जिनको गैर मुल्की ने वोट दिए हैं, एसएफ क्या कहती है, रेडिकल वेंस्टा क्या कहती है, इन्हें इस लिस्टर क्या कहती है?
1: राय साहब इतना कुछ इतने कम अरसे पहले तो कंडम करते हैं, लास्ट लुके ने कल जाकर पियाना रवि की बात करते हैं, जो गलत बात है, हम अपने माशरे के लिए जो अच्छाई होगा हम ये करेंगे, लेकिन ये नहीं कि खुद आप वो जैकेट पहने जो भी पहने और आप तक आ जाए ना। देखो कमून का काम है कि जो उनके कमून के अंदर मामलात है वो उसको हल करे, ठीक है। जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं वो मतलब कानून बनाते हैं, उनका कोई काम नहीं।
0: कम्यून में कौन काम कर रहा है?
1: कम्यून में जो तो अभी तो बेचारे जो हुए हैं, मेरा आप लोगों से वादा था कि इनसे मैं पूछूंगी या बुलाऊंगी कि बताएं आप क्या कर रहे हैं। अभी जो ये हुकूमत बनी है उसके बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई है, अभी तो अल्लाह अल्लाह करके वापस सारे कौंसलर आए हैं। तो मेरी किसी से कोई रब्ता नहीं है, सिवाय के मैं अपने कम्यून में जरा जो छिंग पे में जो हालात है उसके ऊपर बहुत बिजी हूँ कि वो नहीं होने चाहिए। یعنی یہ پچھلے دنوں جو پھر سے

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। समान, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा था कि ये हमारे प्रोग्राम जो होते हैं इंफॉर्मेशन के होते हैं, ये ना किसी के हक में होते हैं ना किसी के मुखालफत में होते हैं, ये टोटली इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम होता है। चूँकि हम लोग लोकल हैं, लोकल रहते हैं, लोकल हमारी बातचीत होती है कि हमारी लोकल जो है कम्युनिटी क्या कर रही है। और समान, आपको पता है कि ये जो सितंबर का महीना और आ रहा है, इससे पहले भी हमने प्रोग्राम बनाए थे और इस पर खुलकर बात भी की थी। तो अब सितंबर जो है वो बहुत नज़दीक आ चुका है और स्वीडन में जो हमारे एक पुल क्रॉस करते हैं, यहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं, चूँकि वहाँ भी दोहरी शरीयत का निज़ाम है तो वोट का हक भी लोगों के पास होता है। तो इस वक्त तजिया नगार, शायद नसीम जो है हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, इनसे जानने की ये सारी बातें कोशिश करेंगे। शायद एक बार फिर आपको अदारा आपकी आवाज़ पर खुशामद कहते हैं।
2: जी राजा साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले तो मैं आपको आपके शील्ड की, आपके मेडल की मुबारक दे दूं। मैं कुछ दिन पहले मैंने देखा था आप नसीम मजदूर थे, तो सफारत सफीर मोहतरम सफीर ने आपको एक मेडल या एक शील्ड पेश की, तो उसके लिए मेरी तरफ से मुबारकबाद आपको। आज ही बात हुई है, आज ही आपने मुझे लिया, तो आज ही मैंने आपको मुबारकबाद दे दी है।
1: शायद आपका बहुत शुक्रिया। शायद आप जानते हैं, हमेशा से जानते हैं, और आप मीडिया पे नजर भी रखते हैं, और हमारे सबसे पुराने लिसनरों में भी आपका शुमार होता है।
2: जी जी, मैं आपका ये आप गालिबन बहुत पीछे चले गए हैं, 26 साल, आज 2026 है, 2020 में चले जाए। उस वक्त मैं एक टीन एज ही था, एक बच्चा था छोटा सा, तो उसमें आपका रेडियो सुना करते थे। उसमें मैं वीकेंड में पार्ट टाइम संडे को मेरे ख्याल अपने वालद की टैक्सी भी कभी भी चलाता था, उसमें आपका रेडियो पहली दफा सुना था। तो उसमें फिर कभी जब आप, क्योंकि उस टाइम कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई स्मार्टफोन नहीं था, कोई इस तरह की चीज नहीं थी, तो फिर जब पहली दफा ये चीज मैंने देखी इधर कोपनहेगन में, तो उसको देख के बड़ी खुशी हुई। तो मैं तब हैरान भी हुआ कि रेडियो पाकिस्तानी रेडियो जो है कोपनहेगन की फजाओं में घूम रहा है, ये क्या है। बहरहाल पता लगा, जो बड़े मेरे से बड़े थे, जो बुजुर्ग, उन्होंने बताया वाकई ये कोई पाकिस्तानी है, गालिबन का राजा गफूर नाम है। तो फिर उसके बाद मुलाकात भी हुई निजी महफिलों में आपके साथ, आपके बच्चे भी, आप भी, तो वो फिर पता लगा कि ये
1: आप, याद होगा आप कई दफा जब आए तो खुशी से एक दफा आपकी बात में आज जरा कोट कर दूं, लोगों को बता दूं, बाज़ ऐसी बातें होती हैं। और मैं और मुबशर प्रोग्राम कर रहे थे तो आप आए, आपने घंटी दी, तो आपने कहा आए तो आपके हाथ में एक गालिबन पिज्जा था ना, तो कहते हैं कि आप थक गए होंगे प्रोग्राम करके, चले बैठ के चाय भी पीते हैं, मैं भी आपके साथ बैठता हूँ, ये मैं कार्ड पे लाना चाहता हूँ।
2: जी बिल्कुल, ये बात याद आई है, ये बहुत बहुत बहुत महल बहुत काफी पुरानी बात है, और ये उस टाइम
1: बहुत पुरानी बात
2: है, लेकिन पुरानी है लेकिन यादें रह जाती हैं। और ये वाकई ऐसे हुआ था, और मतलब मुबशर एक दोस्त है, अच्छा दोस्त है, एक मुखलस इंसान है, वो मुझे याद है। और वो कैसी है ये चीजें जो कि यादें रह जाती हैं आदमी की, इंसान की, इंसान चले जाता है इस दुनिया से लेकिन फिर यादें रह जाती हैं। और फिर क्या कहते हैं उसको, उस टाइम के जमाने मेरे हिसाब से उस टाइम के जमाने ज्यादा अच्छे थे आज की बनिस्बत। अगर मैं आज देखूं तो देखें हम, बहरहाल इसके ऊपर मैं क्या डिस्कस करूं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं।
1: आजकल जो है ना, ज्यादा वो जिस तरह नहीं होता कोला जलता है, हालांकि कोला बड़ी अच्छी चीज है, फायदे वाली चीज है, आप उस पर ग्रिल करते हैं, लेकिन आखिर में जब जो बंदा कोले से जलता है उसको पॉजिटिव लें तो वो जलने वाली चीज बड़ी अच्छी होती है, उस पर आप जो है ग्रिल करते हैं, कुकिंग करते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ जलना चाहते हैं तो फिर अब बंदा कोला आपको पता राख ही हो जाता है।
2: जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया, कोले ने तो राख ही होता है आखिर में, तो उसको फिर आप दोबारा तो नहीं वापस लेके आ सकते जब कोला राख हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: शायद आते हैं इलेक्शन की तरफ, आप सितंबर में इलेक्शन हो रहे हैं तो इसमें पाकिस्तानी निसाद भी हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं चाहूंगा क्या लेटेस्ट पोजीशन है इस वक्त।
2: जी राजा साहब, आपने मुझे इस वक्त फोन किया, मैं इस टाइम अपने ऑफिस के अंदर मौजूद नहीं हूँ, जो उसके अंदर मेरी जो है ना खासकर, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल दूंगा कि उसमें मेरी सारी डिटेल मेरे सामने पड़ी होती है सारी, खासकर क्योंकि हर चीजें, बहुत सी चीजें बंदा इंसान भूल जाता है ताकि गलत ना हो जाए। तो मैं इसलिए अपने सामीन और आपने ये लेना है इस टाइम कोई क्या कहते हैं मशवरा या कोई इन्फॉर्मेशन। तो उसमें यह है कि कोई कोताही अगर कोई गलती हो जाए तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। स्वीडन में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो 13 सितंबर को है, जिसमें बड़े इलेक्शन है, अपने रीजन के भी हैं, कमून के भी हैं और पार्लियामेंट के भी हैं। तो मैं स्टॉकहोम की पहले बात करूंगा। स्टॉकहोम से गालिबन 5 से 6, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ डिटेल में कि मैं अपने घर ऑफिस में मौजूद नहीं हूँ ना, मैं अपने घर में मौजूद हूँ, तो मैं बाहर हूँ। तो मैंने आपकी कॉल उठाई, आपकी आपकी जो गुजारिश थी, गुजारिश किया थी, आपका हुक्म था, तो मैंने कहा चलो मैं उठा लेता हूँ, और क्योंकि आपकी कॉल आई है। तो मैं दरअसल कल चाह रहा था, लेकिन कोई नहीं आज। तो उसमें ये है कि स्टॉकहोम से जो है ना, तकरीबन 5 से 6 पाकिस्तानी खड़े हो रहे हैं, दो या दो जो पाकिस्तानी है वो उसमें, दो दो दो खवातीन है, ये एक का नाम सारा कुका, सारा कुका नाम है, और एक का नाम जकिया बीबी, ये दो हैं। और एक बुजुर्ग है गालिबन 80 के करीब, वो भी रीजन से भी और कमाउन से भी और पार्लियामेंट से भी खड़े हो रहे हैं। बाकी एक, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो कोई खटाना साहब है वो कमाउन से, और दो और जो है पाकिस्तानी वो भी वो कमाउन से खड़े हो रहे हैं। और ये जो लेडी है सारा कुका, ये खड़ी हो रही है स्टॉकहोम के साथ, एक शहर है जैसे कोपेनहेगन के साथ ग्लोस्टोप होता है, या क्यों कह लें, या कोई ऐसे क्लासक से वगैरह वगैरह, तो वो एक उसके मेयर के लिए खड़ी हो रही है। और उनके जो चांस हैं जो है मेयर के लिए, वो सुनने में आ रहा है कि 90%, 85-90% के करीब है वो मेयर के लिए खड़ी हो रही है सारा कुका। और बाकी जो जकिया बीबी हैं वो, ये मैं स्टॉकहोम की बात कर रहा हूँ, और बाकी जो जकिया बीबी हैं वो काउंसिल के लिए, वो एक पार्टी का नाम है मिलियो मिलियोपैथी, जैसे एनवायरमेंट जैसे कहते हैं इंग्लिश में, तो उसकी उस तरह की एक पार्टी है। और बाकी जो दो दोस्त हैं वो सोशल डेमोक्रेट में हैं और वो काउंसिल के लिए हैं। तो इसकी मजीद डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीक दे दूंगा, अगर मैं अपने ऑफिस में हुआ तो इंशाल्लाह ताला के नामों के साथ पूरी, के क्या है और किधर किधर से और क्या है। ये तो हो गया स्टॉकहोम से मेरे शहर यानी कि मालमो से, उधर जो है गालिबन 5 से 6 हैं, जिसमें से दो जो पाकिस्तानी हैं, तीन जो चार हैं वो पाकिस्तानी जो है, वो 3 से 4 जो है, मुझे अगर मुझे गलत नहीं हो तो वो कदियानी जो उनका जो जो फिरका है उस सबसे खड़े हो रहे हैं वो इधर मालमा में, स्टॉकहोम में ऐसे कोई नहीं है। तो वो और जो दो पाकिस्तानी हैं जो जो अपना जो पाकिस्तानी है, जिसे हम क्या कहते हैं रियल पाकिस्तानी ये कह लें, वो खड़े हो रहे हैं, जिसमें एक जो है वो है अपना कामरान अनवर साहब, और दूसरे अमजद खान साहब। और अमजद खान साहब भी एक बुजुर्ग से मिल रहे हैं, बुजुर्ग से मुराद के 70 के करीब उनकी एज है, और कामरान जो है वो आपको पता ही है, वो एक ये
1: नौजवान
2: यूथ में
1: है।
2: आता, नौजवान में कह लें, नौजवान में आता है। और ये दो जो लोग हैं इनकी कैंपेन जो है जारी है, और मैं कभी देखता हूँ कभी नहीं देखता। तो अभी जो है इसकी जो शिद्दत है, मैं सुनने में आया, मैं आज 20-21 है गालिबन, अगर डेट मुझे गलत नहीं हो तो मेरे ख्याल है बीस
1: आज
2: इक्कीस
1: बाईस
2: बाईस
1: है, 22 है आज।
2: हाँ बाईस मेरे ख्याल है गालिबन नेक्स्ट वीक तक इनकी कैंपेन में वो शिद्दत आ जाएगी। तो शिद्दत से मुराद के फिर ये उसको बढ़ चढ़ के जो ना कैंपेन को करेंगे, मेरा जो ख्याल है ये मुझे सुनने में आया। तो और ऐसा होना भी चाहिए।
1: तो
2: तो
1: क्या
2: जो
1: ये बरादरी कौन सी, देखें ये सारे बेसिकली सारे स्वीडन हैं, चूंकि जमहूरी मुल्क में रहते हैं, इस पे कोई जात पात वाला तो मसला ही नहीं होता, किस ग्रुप से है किस ग्रुप से नहीं है। तो लेकिन ये जो क्या कादियानी बरादरी इतनी है जो इतने तीन मैंडेट उनके जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं?
2: देखिए जी, कादियानी जो जो जो कहते हैं बरादरी की आप बात कर रहे हैं, वो उनका एक ये यानी कि वो एक मुनज्जम लोग हैं, मैंने जो देखा है। वो गोथेबर्ग में भी हैं बहुत ज्यादा, यानी कि स्टॉकहोम से ज्यादा वो योथेबर्ग, यानी कि हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं गोथेबर्ग, एक शहर है जो स्वीडन का दूसरा बड़ा शहर है, और तीसरा बड़ा शहर जो है वो मालमो है। गोथेबर्ग में वो काफी तादाद में, मैं उसका भी पता कर रहा हूँ कि वहां पर कितने हैं पाकिस्तानी है, मेरे मुझे कल तक पता लग जाएगा, तो मैं इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दूंगा ताकि गलत ना हो जाए। तो उधर से मुझे लगता है कि उधर से भी काफी होंगे, या अपनी जो قادیانی برادری ہے. باقی جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایک منظم وہ لوگ ہیں, اور وہ تعلقات کی بیس پر, میرے ایک سننے میں ایک میں جگہ پڑھ رہا تھا یار سر, وہ تعلقات کی بیس پر ایک جگہ کو لکھ رہا تھا پاکستانی جو اپنے جو ہم کر رہے ہیں الیکشن کمپین, اس میں وہ لکھ رہے تھے کہ جگہ تعلقات کی بیس پر ہم نے اس کو ووٹ دینے ہیں. تعلقات کی بیس پر نہیں ہوتے ووٹ, یہ کارکردگی اور آپ کی جو آپ منشور جو دے رہے ہیں لوگوں کو اس کے اوپر لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں. یہاں پر تعلقات کی بیس پر پاکستان میں کیا جاتا ہے, لیکن میرے خیال ادھر بھی اب ختم ہونا چاہیے. تو یہ اس ملک ان ملکوں میں آ کے جب آپ رہ رہے ہیں 10-15-20 سالوں سے, کوئی رہ رہا ہے 10-15, کوئی شادی کر کے آیا, کوئی وہ دماد آیا, زیادہ تر یہی ہے نا. میں میری جیسے تو کوئی کم ہے جو اس وقت یہاں پر سویڈن میں ہیں, تو جو شروع سے یہاں پر رہ رہے ہیں, جن کے والد 60 سال پہلے آئے تھے یا 50 سال پہلے, تو آپ جب آئے ہیں تو آپ 10-15-20 سال یار بہت ہوتا ہے ان ملکوں سے سیکھنے کے لیے. جمہوریت کا سیاست بھی ایک, سیاست تو حرام نہیں ہے, سیاست بھی ایک بڑا اچھا بڑی چیز ہے, لیکن ایک منصف سیاست, ایک کہتے ہیں کہ اپنے دل کے ساتھ, ایک لیگل لپٹی, منافقت کے بغیر, جھوٹ مکاری کے بغیر بھی آپ سیاست کر سکتے ہیں. سیاست تو کسی نے روکا آپ سے, سیاست بڑی اچھی چیز ہے کہ سیاست سے آپ جس چیز اپنے ملک کے لیے سیاست کر سکتے ہیں, اپنے ملک کے مفاد کے لیے, جیسے یہ لوگ کرتے ہیں. میں ڈینش کی بھی مثال دوں گا آپ کو, سویڈن کی بھی, جیسے یہ لوگ کرتے ہیں اپنے ملک کے مفاد کے لیے یہ سیاست کرتے ہیں. ہاں ان میں بھی بڑی چیزیں ہیں, کمزوریاں ہیں, لیکن یہ میں پھر پتھر آ جاتا ہوں کہ میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا یار یہ کیا لکھ رہے ہیں کہ جی آپ تعلقات کی بنا پر ایک دوسرے کو ووٹ دیں, اور یار یہ میں پڑھا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو یہ تو آپ نے بات کی قادیانیوں کی. دوسرا میرے خیال آپ کا غالباً سوال ہوگا یہ اپنے جو پکشنی ہیں جو ہیں, تو اس میں یہ کہہ لیں جسے کہتے ہیں سنی پکشنی جلے کہہ لیں, تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ لوگ منظم طریقے سے کریں اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں الیکشن کمپین, اس طرح نہ کریں کہ جیسے انہوں نے کہتے ہیں کوپن ہیگن میں کیا. جو بات غلط ہے اس کو تو ماننا چاہیے نا. اگر کوپن ہیگن میں 5 لوگ دوست ہمارے الیکشن ہار گئے, بہت بڑی بات ہے یہ, تو اس کے بجائے کہ اگر یہ میں بات کر رہا ہوں غصہ کرنے کے, اس کی اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے, جیسے یہ لوگ ڈینش لوگ کرتے ہیں, سویڈش لوگ کرتے ہیں, بڑی خوشی سے سنتے ہیں, کہتے ہیں ہم ہارے ہیں اور ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں, لیکن ہمارے یہ لوگ بہت کم اس یہاں کے بھی جو تیسری چوتھی جنریشن ہے, پھر چوتھی جنریشن تیسری بھی اور چوتھی بھی کافی کافی بہتر آ رہی ہے اور آئے گی, جو آگے آ رہی ہے, چوتھی تو شروع ہو گئی ہے, اور میرے خیال اگلے 10-12 سالوں تک وہ کافی بہتر ہوگی, اور وہ اس کو جیسے یہ لوگ کرتے ہیں اسی طرح کریں گے. برملا بالکل, وہ اگر کوئی چیز غلط کی ہے انہوں نے اس کا برملا وہ جو ہے نا میڈیا پہ آ کر پریس کانفرنس بھی کریں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں, تاکہ آپ کے ووٹر نیکسٹ ٹائم آپ سے بیزار نہ ہو اور آپ کو ووٹ دیں. اور سویڈن کا بھی یہی ہے, اگر یہ اپنے اس کمپین میں بالکل یورپ کی طرح جس ملک میں یہ رہ رہے ہیں, وہ ادھر کی جو پولیٹکس یہ کر رہے ہیں اس کو مد نظر رکھ کے اپنی کمپین کریں گے, تو آپ کے الیکشن جیتنے میں کافی چانس ہو جائیں گے کہ آپ کو ووٹ دیں گے لوگ, آپ کو سنیں گے. لیکن پہلے تو آپ یہ بتائیں نا کہ آپ لوگوں کو بتا کیا رہے ہیں, کہ آپ اس میں جو چیز آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اس میں عمل درآمد کرا سکیں گے, کیونکہ آپ وہی چیزیں بتائیں نا جس میں آپ عمل درآمد کرا سکتے ہیں, کیونکہ 3-4 سال تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں, تو نیکسٹ ٹائم پھر آپ بالکل آؤٹ ہو جاتے ہیں سیاست سے, جیسے کہ ڈنمارک میں بہت سے لوگ آؤٹ ہوئے ہیں, پاکستانیوں کے علاوہ عربی آؤٹ ہوئے ہیں, ترکی کردش آؤٹ ہوئے ہیں, سیاست سے بالکل ہی ختم کر دیا لوگوں نے. اس کی وجہ یہی ہوئی ہے کہ آپ جھوٹ ایک دفعہ بول لیں گے, دو دفعہ بول لیں گے, تیسرے دفعہ لوگ آپ کا فارغ کر دیں گے. تو آپ وہ چیز کریں جو پارٹی سے آپ بات کر کے جس پارٹی کے ٹکٹ لیا آپ نے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں, یہ آپ اپنے ووٹر کو بتائیں, نہیں کر سکتے وہ نہ بتائیں. اور ووٹر آپ سے سوال کرے گا تو آپ اس کو صاف بتائیں کہ اس کا میں کر سکتا ہوں, یہ نہیں کر سکتا.
1: بڑی دلچسپ بات بتائی ہے, ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں, اسکینڈینیویا میں رہتے ہیں, آپ نے بڑی یہ میں سمجھوں کہ بڑی خبر ہے, اور آپ نے یہ بریکنگ نیوز آج دے دی ہے کہ یہاں جو ہے وہ اپنا سنی قادیانی الیکشن ہو رہے ہیں. ووٹ تو سنی کا بھی برابر ہے, قادیانی کا بھی برابر ہے, شیعہ برادری کا بھی برابر ہے, یہاں تو ووٹ سب برابر ہے.
2: میں نے آپ نے یہ کہا تھا کہ دوسرا, یعنی میں نے یہ بتایا تھا کہ پاکستانی ہیں,
1: آپ نے انفارمیشن کی حد تک بات کر رہے ہیں نا,
2: انفارمیشن کی حد تک بات کر رہا ہوں. میں نے یہ بتایا تھا کہ
1: متفق ہونا ضروری نہیں ہے,
2: نہیں ہے, میں یہ بات کر رہا تھا کہ एक जो जो कहते हैं पाकिस्तानियों का वो जो भी है उनका फिरका, उसको छोड़ें, वो मुनज्जम है, मुनज्जम होके, और उनके चांस ज्यादा है इलेक्शन जीतने में। उनके पार्टी जो जिस पार्टी से वो खड़े हैं, वो 3 है या 4 है या 2, मालूमों की बात कर रहा हूँ, मुझे ये शक है कि वो उन वो सीटें निकालेंगे, क्योंकि वो मुनज्जम होकर काम करते हैं, वो ये एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करते। पाकिस्तानी है वो भी, जारी बात, हमारी तरह उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, हमारी ममालिक से उनका ताल्लुक है, तो ये तो फिर पाकिस्तानी हुए ना। तो अगर वो कर सकते हैं तो इधर क्यों नहीं आप मुनज्जम होकर कर सकते, अपनी कंपेन चला सकते हैं, अपना अपनी सियासत कर सकते, इधर क्यों आप की जो है एक बात क्या कहते हैं, मुंह के ऊपर और होती है, पीठ पीछे और होती है, दरमियान में और होती है, तो इधर तो फिर आप जो है ना फिर मुनज्जम ना होए। मैं इसकी मिसाल मेरे अपना मुल्क जो है डेनमार्क, उसकी बार बार दे रहा हूँ। क्यों देता हूँ बार बार, कि उसमें 5 लोगों का हारना बड़े इलेक्शन में बहुत बड़ी यार बात है, छोटी बात नहीं है। जो जो मुल्क ये सुनता है ना यूरोप के, उधर भी पक्ष नहीं है, वो हैरान रह जाते हैं, किसी को पता भी नहीं है, किसी को पता लगता है, कहते हैं ऐसे हुआ है, मैंने कहा जी ऐसे हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है। उसकी उसका जाला नहीं अभी तक किया कि क्या हुआ है, उसकी अभी शर्म नहीं आई, या मुझे तो आ गई है कि शर्म आ जाए कि यार ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ऐसे क्या किया आपने। आप इधर की सियासत कर रहे हैं, इधर की सियासत में आप इधर ही की सियासत के लोगों से मिलें, इधर की ही कंपेन चलाएं, और इधर ही की मशहूरी करें, इधर ही की पार्टी की। जो ही आप किसी के पीछे लग के दूसरी दूसरे मुल्क की सियासत को करेंगे आप अपनी कंपेन में शामिल, लोग देख रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, वोटर आपको देख रहा है, तीसरी जनरेशन चल रही है वो आपको देख रहा है, अब ये दूसरी पहली जनरेशन नहीं है जिसमें आप ओए छड़ो यार कोई नहीं गल, ओए पुत्र वोट पा दे, अब ऐसे नहीं है। मेरे घर के अंदर मैं अपनी बात करता हूँ, अभी 13 को जाना है ना, मैंने किसी पार्टी को डालना है, मेरे बच्चों ने किसी पार्टी को, मेरी बीवी ने किसी पार्टी को डालना है, और मैंने बात भी की कि कहते पापा तू खाई एक तू तू तू खाई फसल लॉस वो उसके बीच टाइम सो खत्म बात हो गई।
1: बिल्कुल, क्योंकि जमहूरी मुल्कों में रहते हैं, जमहूरी तरीके से आप बात कर रहे हैं, चूंकि इसको आप एनालाइज कर रहे हैं, आप तजिया कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, टैक्सी ब्रांच का भी आपको बहुत तजर्बा है, इसको हर चीज़ को आप समझते हैं, जानते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ आई, चली गई, ख़त्म हो गई, और अब जो है वो एक नई कंपनी जो आई है उस पर भी जो है उनकी अब गाड़ियाँ हमें हर जगह नज़र आती हैं, और ये भी पता चला है कि कभी वो एक शहर में जाती हैं, कभी दूसरे शहर में जाती हैं। तो मैंने कहा क्यों ना ये आपसे इन्फॉर्मेशन से बेहतर कौन दे सकता है, या हमारे थिंक टैंक से तुकीर शाह साहब देते रहते हैं। जी शायद
2: जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब कोई कंपनी, या पहले तो उबर आई, उबर बहुत बड़ी कंपनी है, तो पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसी की कोई दौर आई नहीं है, सबको पता है। डेनमार्क में जब उबर आई, मैं पहले नहीं जाता, 2013-14 में इलीगली तरीके से यहाँ के टैक्सी कानून के मुताबिक नहीं आई थी, 2013-14 की बात है, मैं उधर नहीं जाता, वो लंबी बहस हो जाएगी, क्या हुआ फिर वो यहाँ से निकल गए, ये सबको पता है। अब 2025 फरवरी रिसेंटली ऑलरेडी इनकी 2024 के अक्टूबर सितंबर में ऑलरेडी कुछ लोगों के यहाँ से इनके साथ रवाबत हुए थे उबर के साथ, कि कैसे आपने आना है, ये भी छोड़ दें, ये सबको पता है। 2025 फरवरी में इन्होंने बकायदा आगाज शुरू कर दिया उबर का। ड्राइवर एक टैक्सी कंपनी थी छोटी सारी, जिसके अंदर गालिबन 40-50-60-70 टैक्सियां थी, यहाँ 100 कर लें, उनके साथ मिलकर छिल खुद कहते हैं, यानी कि उसके साथ अटैच होके आप आ सकते हैं। खाली उबर नहीं की इजाजत नहीं मिली थी उनको, यानी कि जैसे गायन उबर, यानी कि बिल्कुल खाली उबर जो है, क्लीन उबर सिर्फ खाली वो चलाती है, लेकिन उनको किसी किसी किसी कंपनी के साथ सहारा लेके उनको आना पड़ा, और वो आए, साथ ही उन्होंने यहाँ पर धूम मचा दी। उधर भी हमारे जो पाकिस्तानी वॉनमैन है, मैं भी इंक्लूड हूँ, अपनी बात भी करूंगा, वाले साहब रहे हैं सब समेत, जो मैंने सुना, बल्कि सुना अपनी आ, आ, आ, अपने कानों से सुना, लोगों ने कहा ओ कुछ नहीं होता उबर है इसके, ये ऐसे मैंने बड़ी सेल्स कैंपों के अंदर भी सुना, वहां पे भी कहना शुरू कर दिया कुछ नहीं होता, आप रिलैक्स करें, पाकिस्तानी जैसे स्टाइल है हर चीज में रिलैक्स कर जाएं। पता क्या हुआ फिर, उबर ने जनाब इनको ना फरवरी में आई, जून जुलाई में जनाब इनका एग्रीमेंट हो गया सबसे बड़ी कंपनी डैन टैक्सी के साथ, यानी जो पहले कुरियर होती थी डैन टैक्सी, जो पूरे शेलन में है, उसके बाद पूरे यूलन में और पूरे स्वीडन में भी है, दूसरे मुल्कों में भी है। एग्रीमेंट क्या हुआ, उन्होंने खरीद ली, ऊबर ने डैन टैक्सी खरीद ली। ये किसी को नहीं पता कितने मिलियार्ड की खरीदी है या कितने मिलियंस की खरीदी है। कंपनी बहुत बड़ी है, उनके पास इनकम है, इन चेक जिसे कहते हैं वो बहुत ज्यादा है, और उनके पास अवैध खून है, यानी कि उनके पास कंपनी के खोचो खोसला, उनके पास DSP है, उनके पास हॉस्पिटल्स हैं, ये जो होते हैं उनके पास। ये सिर्फ खाली टैक्सी नहीं होती जैसे आप मैंने बुक कराई है, ये तो कोई इसके ऊपर नहीं आपकी कंपनी चलती। इनके पास बड़े बड़े जो है ना आउटसेलिंग एग्रीमेंट हैं डेनमार्क में, खाली कोपन हैगन में नहीं है, पूरा शेलन, उसके बाद यूलैंड और फ्यून सारा, बहुत बड़े बड़े कितने मिलियंस की है, 200-300 कपल ऑफ 1400 मिलियंस की इनकी आउट चले हैं, वो उन्होंने खरीद ली ऊबर ने, और ऊबर ये जो ना पूरी मार्केट तकरीबन वो ले गया तकरीबन। अब क्या हुआ कि 2026 में, यानी कि जून जुलाई जून में ये इसकी बाजगश्त हुई, ग्रीन SM, यानी कि वियतनाम टैक्सी तो नहीं लिखा हुआ लेकिन इसका असल नाम जो है ग्रीन SM है। ग्रीन SM ऑलरेडी जो है ना वियतनाम और चाइना और इंडिया और इन मुल्कों में आ चुकी है 2025 में। यार वियतनाम तो पहले की चल रही थी, और ग्रीन टैक्सी ग्रीन SM जो है इसके बाद स्वीडन, इसके बाद जर्मन, इसके बाद ओस्लो, स्वीडन इसी साल जा रही है। और उन्होंने जो मुझे जो मैंने देखा सुना है, उन्होंने ये चीजें कोई फ्री नहीं होती, उन्होंने ये डेनमार्क में हेसल हॉल, यानी कि एवल हॉल जो इंडस्ट्री कुछ है सबको पता है, उन्होंने वहां पर जो बहुत बड़ा ले है, जो इसे स्वीडिश में कहते हैं लॉगर, जो ले है वो बहुत ही बड़ा, मैं समझता तो 5-6 हजार करोड़ मीटर से ज्यादा कर लें बार भी, वो उन्होंने पहले तो ये समझे थे कि उन्होंने लाया किया है, लेकिन जो मैंने पूछा है उधर उनसे, उन्होंने कहा उन्होंने खरीद लिया है, तो हो सकता है खरीद लिया हो, तो ये भी पता लग जाएगा, क्योंकि वो उसके उसी को पीछे से या आगे से तोड़ के तो उसका ब्यूगा करने लगे हैं, तो उसके अंदर उनको काफी जो है ना उन्होंने उसको एडजस्टमेंट करनी है। एक तो ये हो गया। अब ये 600 गाड़ियां जो है ना, ये इनकी तकरीबन ऑलरेडी 400 या 300 या के करीब, ये आधी से ज्यादा गाड़ियां इनकी ऑकुपाइड हो गई हैं, जो चढ़ गई हैं, ड्राइवर इनके तकरीबन 500 से ज्यादा जो है, या 500 के करीब जो है ना एग्रीमेंट बन चुकी हैं, किसी ने सितंबर में शुरू करना है, किसी ने अगस्त में, किसी ने नवंबर में, वगैरह वगैरह, और वो साथ में कोर्स भी करा रहे हैं साथ में। अब किसी कंपनी ने बाहर से इतनी बड़ी इन्वेस्ट की है, वो खाली इन्वेस्ट जो इधर डेनमार्क में किया है, स्वीडन में करने जा रहा है, जर्मन में है, और यूरोप के मुल्कों में करने जा रहा है, और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि उसके पीछे स्टेट नहीं है, उसके पीछे जो स्टेट है वो उन्होंने थपकी नहीं दी? ये ऐसे कभी नहीं हो सकता, ऐसे कोई इन्वेस्ट नहीं करता जब तक मुल्क जो है वो आपको वेलकम ना करें और आपकी हेल्प ना करें, जो जो चीज उन्हें जो जो चीजें उनके चाहिए होती हैं, जैसे कि अब वो भी चाहेंगे कि हमारी हमारी भी औछले हों कमोनों के साथ, फ्लेक्स के साथ, काउंटर खोसले हों, ये वगैरह वगैरह ये चीजें। मेरा ये ख्याल है कि वो इसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं और वो ये मार्केट लेने की कोशिश करेंगे। ये मुझे नहीं पता वो कैसे करेंगे क्यों, लेकिन उन्होंने बंदे हायर किए हैं, उन्होंने बंदे हायर किए हैं, उनको वो लोन दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पर्सनल है उनके, और वो इसी पे काम करने लगे हुए हैं। हाँ, अब मैं आ जाता हूँ, आपने बात की थी वोनमैन, पाकिस्तानी, अरबी, तुर्की, डेनिश, जितने भी वोनमैन है, हम अपनी भी बात करेंगे, पाकिस्तानी ये सबसे ज्यादा है। इनका फ्यूचर मुझे कोई अब अच्छा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये मार्केट उन्होंने लेके जानी है, क्योंकि वो खुद ही वोनमैन है। एक तो ये हो गया कि वो इसे उर्दू में आप आसानी से ये कह लें कि वो एक ऐप नहीं है ग्रीन SM, क्योंकि जो ऊबर है वो एक खाली ऐप है, वो आप ऐप लेते हैं या उसको आप उसका जो 20% या 18% या 25% उसका आप पे करते हैं, लेकिन गाड़ी आपकी अपनी होती है, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊंगा, लेकिन जो ग्रीन SM है गाड़ियों की अपनी है, वो खुद ही बॉनमैन है और खुद ही वो गाड़ियां भी बनाते हैं अपनी, वो कंपनी उनकी गाड़ियां भी अपनी ही कंपनी में बनती हैं, और वो कंटेनर के कंटेनर यहाँ यूरोप की तरफ रवाना है, जिधर जिधर उन्होंने ये करना है, पड़ाव डालना है। अब ये जो चीज है, ये मुझे जो शक है, ये ये वोमेन की मोनोपोली खत्म करने के लिए इन्होंने सिर्फ डेनमार्क नहीं, दूसरे मुल्कों में भी जिसे कहते हैं आया है ना, चाक्षा आया वोमेन, ये उसको खत्म करने के लिए इन्होंने कहा कि इसको अपने पास रखो, अपने कंट्रोल में कर लो। इस तरह की उन्होंने कंपनी को दावत दी है जो ऑलरेडी ये काम शुरू कर चुकी थी, तो उनके साथ ये बमामला जो है इनके 1-1.5 साल से बैक चैनल चल रहे थे। ऐसे कोई नहीं आ जाता अचानक, ऐसे कोई नहीं पैसा इन्वेस्ट करता, कहते हैं वो कहते हैं हेल मिलियन या इन मिलियार्ड। और आपको पता है कि जो 400-500 ड्राइवर अभी चढ़े आए हैं उनको अगले महीने तनख्वाह भी देनी है, और वो तनख्वाह अभी कोई उनकी इनकम नहीं हुई, अभी उनकी ऑप्शनें जो हैं चल रही हैं या नहीं चल रही वो बात की बात है, वो तो आपको पता लग जाएगा सबको। लेकिन उन्होंने लोन तो देना है, कुछ लोगों को लोन मिल गया जिन्होंने ऑलरेडी जुलाई में शुरू किया था काम, अब तो अगस्त का एंड आ गया तो उनको लोन मिल गया मुझे सुनने में, और उनको पूरा लोन मिला है। मैंने खुद पूछा, मैंने पूछा आपको लोन मिला, उन्होंने कहा जी मुझे लोन मिल गया जो इस महीने के उनको मिलना था और मैं जुलाई के, तो वो बहुत से लोगों को मिल
1: इसका
2: गया
1: मतलब है
2: जो
1: कि ये पैसा सारा सिस्टम है आगे, इस पर लेफ्ट राइट नहीं हो सकता।
2: मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप ये देखें लोन मिला ना, क्योंकि हो एलआर के साथ उन्होंने ये जो लोन जो यहाँ के शनि के लोन नहीं तनखाओं के जो कानून है कवानीन है पेंशन ऑर्डनिंग के साथ उन्होंने मिलके बनाए हैं, कि इसमें कोई हंकी बैंकी नहीं है, उसमें मिलके बना के उन्होंने वो बैठे हैं उनके साथ बनाए सारा कुछ। उसमें ये जो अभी जो पैसे जो इनके चंद 150 जो पहले थे इनके शोफेयर उनको लोन मिला ना, वो हालांकि उनकी इनकम कोई नहीं हुई ड्राइवरों की, बहुत कम इनकम ना होने के बराबर, क्योंकि उनके ऐप में भी छुआ नहीं है जो आए, वो कल छुआ ही उठा रहे हैं, अगर वो उठाते हैं और अपने 7.5 घंटों में, 7.5 घंटे उसके आधा घंटा पाउस का 8 घंटे, 7.5 घंटे में अपने काम करके जो बनाया है वो ही है, उसके ऊपर वो उनके कोई इतराजात नहीं है इस वक्त, और पहल बाद में भी जब उनके पास ऐप में छुआ आ जाएंगे जो उनकी औचले होंगी, आपने हर छुए को यस करना है, आपने ना ही नहीं करना, क्योंकि आप काम कर रहे हैं आपको वो तनख्वाह दे रहे हैं, वो उन्होंने इसके ऊपर रखी हुई है कुछ परसेंटेज, यानी कि आप किसी को वो क्या कहते हैं वो कहते हैं वॉशरूम भी आ जाता है या वगैरह वगैरह 2-4 मिनट के लिए तो आप उसमें पॉज कर सकते हैं, लेकिन आपका आधे घंटे का पॉज एक लगा है, लेकिन जब आपको छुआ आ रहा है आपने यस करनी है, क्योंकि आप तनख्वाह ले रहे हैं उनसे पक्की, यानी कि फेस्ट लोन ले रहे हैं आप उनसे, तो आप मजाज नहीं है कोई नए करने के किसी छुए के, जब जब ये शुरू होगा उनका बकायदा, अभी तो चल रहा है। और उसमें मैं ये आपको बता रहा हूँ कि लोन मिले हैं 170-180 जो शुफे पहले के थे वो कितने मिलियंस होंगे, वो उन्होंने अपने जो उनके पास जो उनका अकाउंट या जो भी वो पैसा लेके आए हैं अपने पास से दिए हैं। मैं ये बता दूं कि अपने पास से कोई नहीं देता, ये तो अभी दिए हैं, जब उनकी औचलें वगैरह चल जाएंगी, जब उनके साथ कमूनों के साथ या जिधर भी वो करना चाह रहे हो जाएंगी, कितने वो मिलियंस की इतनी कमूने हैं, सैकड़ों कमूने हैं यहाँ पर शेलन में, जब उनके साथ हो जाएंगी, अगर आदियों के साथ भी हो जाएं जब हो जाएंगी, तो फिर ये जो पैसा उन्होंने अपनी जेब से लगाया है, ऐसी जो जो बिजनेसमैन काबिल बिजनेसमैन होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो फिर उनका वापस डबल से ज्यादा वापस आएगा, तो ये है उनकी जो है
1: इसका
2: प्लानिंग।
1: मतलब है उन्होंने
2: और
1: अपना जो इन्वेस्ट किया उसको सबसे पहले सेव किया है, गवर्नमेंट के साथ जो है अपनी बातें कमून के साथ अपने एग्रीमेंट किए हैं जहाँ से ये सिस्टम चलता है, अब वो जो है कोई पैसा जो है वो कोई आगे पीछे नहीं हो सकता कंपनी का।
2: देखिए जी, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये किसी को उन्होंने नहीं बताया, यहाँ पर किसी मीडिया को नहीं बताया, कि अभी फिलहाल बहुत से लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे आए, किसने कौन इनके पीछे है, ये सिर्फ क्या रही हैं। लेकिन जो आदमी आप जैसा और यहाँ पर सब लोग अकल आप जैसे लोग अकल बूझ रखते हैं कि ये तो खुद भी सोचे ना कि जब आप 1 दिन 10 दिन 1 माह 1.5 माह हो गया आप देख रहे हैं, तो फिर पता आपको लग जाता है, जब आप अंदर भी जाते हैं पूछते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको ये पता लग जाता है कि ये इसके पीछे स्टेट इन्वॉल्व है, वो साथ है। ऐसे ही दूसरे मुल्क में आप अपना मैं अगर बिजनेस लेके जाऊं, मैं कहूं जी मेरे पास है 1 मिलियन 1 बिलियन डॉलर है, मैं यहाँ बिजनेस, आपकी आपकी बिल्कुल मदद करेंगे, आपकी स्टेट करेगी, वो कहेगी पैसा आ रहा है, आपकी मदद करेंगे, आपको जो जो चीज चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे आपके वगैरह वगैरह, तो इसी तरह
1: फैसिलिटेट किया जाता है। चलिए शायद आते हैं
2: इसी तरह
1: आप
2: बिल्कुल
1: इसी तरह जिस तरह आपने ये इन्फॉर्मेशन दी है, इलेक्शन किस तरह लड़े जाते हैं, पार्टियों में किस तरह लड़े जाते हैं, ये जो कारोबारी लिहाज से जो लोकल ये टैक्सी चलती है इसका क्या सिस्टम होता है, और आगे बढ़ते बढ़ते दूसरे मुल्कों में ये चीज़ें चली जाती हैं, شاید ہمارے ملک میں جہاں بھی پوری دنیا میں ہماری سیاسی پارٹیاں ساری خود کفیل ہیں پورے ملکوں میں ان کی بھی ٹیکسیاں وہاں موجود ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو پارکنگ پلیس ہیں ساری پارٹیاں یہ پارکنگ پلیس ہیں, یہ سیاستدانوں کی ٹیکسیاں ہیں, ان کی جو ہے وہ پارکنگ کی جگہ ہے. نہ کوئی ہمارا ممبر بنا پارلیمنٹ میں, کوپنہاگن کی بات کروں گا, اگر ڈنمارک کی بات کروں گا, سویڈن میں آپ دیکھتے ہیں ہمارے کتنے ممبر بنتے ہیں پارلیمنٹ کے بنتے ہیں, تو کہیں بھی ہم فٹ نہیں ہو رہے. اب پاکستان کی ساری چیزوں کو ملا کے دیکھ رہے تو لیکن زیادہ سیاست جو ہے وہ پاکستان کی جاتی ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں سیاست کو پاکستان کو؟
2: میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ آپ نے سویڈن کے الیکشنوں کی بات کی تھی اور ڈنمارک کے, میں نے یہی بتایا ہے کہ جب تک آپ اپنے ملک پاکستان کی جو سیاست ہے, اگر یہ کوئی کسی کو اگر غلط لگے میں اسے معذرت کر لیتا ہوں, کیونکہ سامعین سن رہے ہیں, یار پاکستان کی سیاست آپ کو سب کو پتا بہت گندی سیاست ہے. وہ گندی سیاست کو وہ کہتے ہیں سمجھنے کے لیے ہزاروں سال بھی کم ہے. تو وہ کیونکہ پاکستان کی سیاست تو ہر سیکنڈ بعد بدلتی ہے, وہ سیاست انہوں نے ہوئی. تو آپ جب اس سیاست کو, میں یہ بتا رہا ہوں ادھر جہاں رہتے ہیں ادھر بھی کریں گے تو پھر یہاں پر آپ اپنا ہی مذاق بنوا لیں گے. لوگ مذاق کرتے ہیں دیکھ کے, یہ کوئی خوشی نہیں لوگوں کو ہو رہی ہوتی, دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے لوگ سے مراد ہے کہ پاکستانی بھی اور دوسری نیشنیں بھی, کسی کو خوشی نہیں ہو رہی ہوتی. وہ آپ کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں مسخرے سارے. میں آپ نے بات کی پاکستانی جو سیاست کرتے ہیں یہاں پر یورپ میں, میں حالی ڈنمارک کی بات نہیں کر رہا. تو وہ پھر جب آپ اس طرح کے مسخرہ پن کریں گے تو لوگوں نے تو آپ لوگوں میں آپ کمیونٹیوں میں دوسری کمیونٹی میں مذاق بنائیں گے. یہ جو ڈینش ہیں سویڈش ہیں نارویجن ہیں جرمن جہاں بھی چلے جائیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں, یہ نہیں کہ ان کو سارا پتا ہوتا ہے. وہ یہ لوگ خاموش طبیعت کے ہیں, خاموشی سے سارا کچھ کرتے ہیں. یہ باتیں نہیں زیادہ کرتے, جنرلی بات کرتا ہوں. ان میں بھی لوگ برے ہوتے ہیں لیکن ان میں بھی لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے, لیکن وہ جنرلی ایسے نہیں ہیں. یہ لوگ باتیں نہیں کرتے, یہ کام کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان ملکوں میں ایسا نہیں تھا, ان ملکوں میں گندی سیاستیں نہیں تھیں, ان ملکوں میں جبریت نہیں تھی. فرونی 100 سال پہلے ایسے ہی تھا, 100 سال پہلے یہ انہوں نے یہ سسٹم جو ہے نا لڑ لڑ کے قوموں نے ان کی قوم لڑی, ان کے لوگ لڑے, بڑی قربانیاں دی ہیں ان کے لوگوں نے. حالی جنگیں نہیں لڑی انہوں نے ایک دوسرے سے, انہوں نے سیاسی یہ جو سیاسی اس کے لیے جمہوریت کے لیے لڑے. یہاں تو بادشاہ تھی پورے یورپ میں بادشاہ تھی پورے. آپ کو پتا ہے, آپ ہسٹری پڑھیں جا کے, سویڈن کی بات کر لیں ڈنمارک کی بات, یہاں تو ظلم تھا. یہ بادشاہ جو ہوتی ہے نا ظلم ہی ہوتا ہے. یہ ایک بندہ سب کو کہہ رہا ہے جو میں نے کہنا وہی آپ نے ماننا ہے, ادھر ایسے تھا. لیکن پھر یہاں قومیں لڑی, لڑنے کے بغیر آپ قربانیوں کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ سسٹم ہی بادشاہ کے سارا تھا قبضے میں. بادشاہ جو ہے یورپ کا یعنی کہ سویڈن کا یا ناروے کا, اس کے تھا انصاف وہی کرتا تھا. جج جو ہے وہ انصاف جس اس نے کرنا ہے وہ بادشاہ کے حکم پر اس نے کرنا ہے, تو کہے کا جج. ادھر ایسے تھا, پھر یہ لوگ لڑے, ان لوگوں نے قربانیاں دی, 1 سال نہیں 2 سال نہیں کئی سال لڑتے رہے, آخر میں یہ ان کی جیت ہوئی. گھر بیٹھنے سے, ہاتھ میں ہاتھ باندھنے سے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مسخرہ پن, فضولیات, چیپ حرکتیں, یار یہ کیا ہے؟ کیا ہو آپ؟ جب تک آپ ان چیزوں سے نہیں نکلو گے آپ ایسے ہی رہو گے جیسے 1400 سال پہلے میں نے سنا تھا کہ جہلیت ہے. آپ اس سے بھی آگے نکل جاؤ گے. 1400 سال کی جو جہلیت سنتے تھے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بھی آگے نکل جاؤ گے, بلکہ نکل گئے ہو. تو یہ ہے کہ آپ عید ملکوں میں رہ کے ان قوموں سے جب نہیں سیکھ پا رہے تو یار پھر تو میں کیا اس کے اوپر کروں تبصرہ, مزید تبصرہ ہی پہ رہ جاتے ہیں.
1: تبصرہ کیا, آپ دیکھیں نا منافق آدمی جو ہوتا ہے جس کے منہ پہ ہوتا ہے اسی کا ہوتا ہے, وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے دوسرے پہ چلا جاتا ہے. تو یہی سیاسی پارٹیوں کا ہے,
2: یہی ہمارے جو سسٹم کا المیہ ہے کہ آپ دیکھو کیا کر رہے ہو. میں غالباً یہ چیزیں دیکھتا رہتا ہوں, کبھی دیکھتا ہوں ادھر سویڈن کا بھی چلو بات کر لیتا ہوں. یار سویڈن کے اپنے ملک کی جہاں رہتا ہوں میں, جی فوٹو لگ گئی ہیں, ایمبیسی کے پاس بیٹھا ہوا ہے, ایمبیسی کو الودائی اگر میں سے اردو کا الودائی اس کو سلام پیش کر رہا ہے, فوٹو لگا دی ہے. یار کیا ہو گیا ہے؟ यहाँ तो मैंने कभी देखा ही नहीं, यूरोप के जो एम्बेसडर उधर गए होते हैं दूसरे मुल्कों के एम्बेसियों में, पता ही नहीं किसी को तक अब आ गया क्या ही नहीं। वहां के जो उधर के लोग हैं जिन मुल्कों में, स्पेन में डैनिश रहते हैं, पता ही किसी को डैनिश को नहीं है। स्पेन में डैनिश रहते हैं ना, अमेरिका में डैनिश रहते हैं, उधर एम्बेसडर है ना उनके, आते हैं, किसी को पता, देखिए किसी किसी किसी डैनिश की फोटो, आम शहरी की, एम्बेसडर को सलाम कर रहे जाके, फोटो लाती फेसबुक पे, हाय यार देख के मुझे हंसी आ जाती है, क्या कर रहे हैं को? कभी हो गया यार, चले गए हो आप कोई अपने काम से, उन्हें क्या फाड़ के लाती, चलो जी हो गए सलाम, जराना पेश, वो तू कौन है जराना, तू कौन होना है जराना पेश करने वास्ते, जोहराना, ये अगर उर्दू मेरी गलत है तो जोहराना इसी को कहते हैं ना खाने को, राजा साहब जोहराना जी आपने पेश कर दी है,
1: बिल्कुल
2: मैस्टर
1: ठीक
2: जा रहे
1: बात
2: हैं,
1: है, बिल्कुल ठीक बात है, बड़ी अच्छी बात है, आप पैदा
2: ये
1: यहाँ हुए
2: बात,
1: उर्दू बोल रहे हैं।
2: ये कोई बात है करने वाली यार, ये मैं देख कर आना होता हूँ, फोटो लग गई है यार, इन चीजों से निकल आओ, एम्बेसडर आया है एहतराम के काबिल है, जा रहा है, खत्म हो गई बात, पैसे हमारे हैं, खजाने से निकल रहे हैं, तू कौन उन्हें जोहराना पेश कराने वाला, उन्होंने इस तरह आपके मुल्क में ना जो ये ना ये काम खराब हुए हुए हैं, नीचे दिखाने के लिए दूसरे को,
1: इसका हल क्या है,
2: मैं हर एक की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं
1: इसका
2: कह
1: हल
2: रहा कि मुझे
1: बताएं,
2: कोई
1: हल
2: दबके,
1: क्या है, आप चूंकि यहाँ पैदा

0: एक मालिया खौलिया की बीमारी होती है, हम इसी को लेते हैं, कोई जहनी मरीज किसी को कहता है, लेकिन और भी बीमारियां अगर देखा जाए तो बंदों का कसूर भी नहीं होता, वो चूंकि वो बीमारियां उनको लगी होती हैं, आप उनका इलाज नहीं कर सकते। इसलिए साइकोलॉजिस्ट जब बैठता है ना, वो उसको घंटा घंटा दो दो घंटे टाइम देता है, खाली उससे बातें करते रहते हैं। वो जहनी मरीज इस तरह के होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते इसको ये बीमारी है।
1: राजा साहब, अभी आप मेरी वो डीपी जो है ना उसके बारे में आप चर्चा करते हैं, तो काइंडली वो डीपी जो है मेरी, उसका जो सामने जो मेरा वो है, उसको पढ़ें, अभी पढ़ें तो, ताकि आपको मैं बताता हूँ क्या है वो।
0: बड़ी अच्छी बात है, और आप अक्सर बात इस पर करते भी रहते हैं। लिखा हुआ है आपकी जो शिनाख्त है, जो आपने अपने लगाया, डीपी लगाया हुआ है, मुनाफ़िक़त दरअसल पुश्त के पीछे दुश्मनी नहीं बल्कि मुंह पे ऊपर दोस्ती का नाम है। ये तो एक ऐसा खूबसूरत अल्फाज हैं, शेर लिखे हैं, ये सब के लिए, ये किसी की मुखालफत में नहीं है, किसी के हक में नहीं है।
1: ये चीज जब ये चीज आप खत्म कर देंगे ना, ये जो कौम है पूरी, आपकी हर चीज ठीक हो जाएगी, सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये है मुश्किल काम है हमारी, खासकर कौम हम लोगों के लिए मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। लेकिन जब ये चीज खत्म हो जाएगी ना, ये जो मैंने अभी अब लिखा हुआ है ये सारा, तो आप जो है ना राय रास्ते में आ जाएंगे। लेकिन मुश्किल और खटन है, ये नहीं पता कब है, शायद 100 साल लग जाए, 100 साल बड़ा, शायद 1 साल में खत्म हो जाए, लेकिन 100 साल में पता नहीं, हम रहे, हम तो नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे, हमारे बच्चे भी नहीं होंगे, तो 100 साल किसने देखा है। लेकिन वैसे भी ऑलमोस्ट हमें 78 साल हो गए हैं
0: इस जमहूरी निज़ाम में। अब हम जमहूरियत की भी नफ़ी करना शुरू हो गए हैं, ये भी प्रोपगंडा हम लोग शुरू कर देते हैं। इस जमहूरी नाम रहते हुए अगर आपको वोट मिले हैं, आप मेंबर बन गए, आपको वोट मिले हैं तो अभी रीजन के मेंबर मिल गए, अगर आपको वोट मिले हैं तो आप पार्लियामेंट के मेंबर बन गए, पार्लियामेंट को आप वोट मिले हैं तो आप वज़ीर आज़म बन गए। ये तो एक जमहूरी निज़ाम है, कौन किसी को रोक रहा है?
1: कोई किसी को नहीं रोक रहा है। और राजा साहब एक और बात, जब आप इलेक्ट हो गए हैं, आते हैं ना आवाम आपको सिलेक्ट करती है, तो फिर इलेक्ट हो गए हैं आप, तो आप उसमें आ गए हैं, तो जब आपने किसी वध में, ये इधर की बात कर रहा हूँ अपने यूरोप की, तो हमारे जो ओवरसीज पक्षनी है, भाई हैं, बहने हैं, तो वो जो वादा करते हैं ना, वो फिर अपना वादा 100% नहीं तो कम अज कम 80-90% पूरा किया करें अपनी अपने अपने क्या कहते हैं वोटरों के साथ। ये मेरा बार बार कहना है। तो मैं आप वाली बात फिर, जब तक आप अपने सारे ओवरसीज पूरी दुनिया में, जब तक आप पाकिस्तानी गंदी सियासत, गंदी तरीन सियासत है, अच्छी सियासत भी लोग करते हैं, लेकिन गंदी तरीन सियासत को आप खत्म नहीं ना करेंगे, आप तरक्की भी नहीं कर सकते किसी चीज में। यूरोप में भी पीछे रह जाएंगे हर एक से, हर महाज में पीछे रह जाएंगे, नहीं कर सकते तरक्की ये, क्योंकि यही अल्लाह ताला का सूल है, यही कानून है। अल्लाह ताला के सूल और कानूनों को तो नहीं अवरद कर सकते ना, अल्लाह ताला तो देख रहा है हर वक्त, अल्लाह ताला तो आपको लम्हा लम्हा देख रहा, सुन रहे, उसके साथ तो नहीं ना आप कहते मकारी यारी कर सकते, यारी भी तो करते हैं ना हम लोग।
0: देखिए ना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिन चीजों से मना किया, क्या वो काम हम करते नहीं है?
1: हम वो काम नहीं करते, अल्लाह ताला ने जिन चीजों से मना किया हम वो काम करते हैं, अल्लाह ताला के रसूल ने जिन चीजों से मना किया वो काम कर रहे हैं, इसलिए तो ऐसे हो रहा है। लेकिन ये चीजें जो हम बात कर रहे हैं, ये दीन को भी इस्तेमाल करते हैं यार, दीन को भी, दीन भी आज कुरान भी आपको आज कल पैसों में बिकता है, दीन भी आपका बिक रहा है पैसों में, दीन की सुबह दीन को इस्तेमाल करता है, रात को शैतान बना होता है बंदा, वही दोबारा सुबह या रात को शैतान है वो पूरा, सुबह वो दीन को इस्तेमाल कर रहा है टोपी पहन के, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, वो क्या खत्म हो रहे हैं यार मी शरीफ के फलां जगह, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यार दीन को तो ना इस्तेमाल करो, फिर अपना दीन आप अपने पास छुप के अल्लाह के साथ करो, इसका चर्चा ना करो ऐसे, चर्चा वो करते हुए अच्छा लगते हैं जो माशरा सुलझा हो, जिसमें कोई हलाकियात हो, जिस माशरे में हलाकियात नहीं, वो अपने दीन का क्या चर्चा करेंगे, क्योंकि उसने तो अपने आप से शुरू करना है, मैं कैसे चर्चा करूं अपने दीन का, हमारे मारे मारे मुल्क में चले ले लेते हैं, कोई हलाकियत ही नहीं है, बेहयाई उधर उरूज पर, उस पे बात करेंगे तो हंसेंगे आगे से। ये तो यार आप क्या बात कर रहे हैं शाह साहब, यहाँ तो ये तो आम हो गई है चीजें यहाँ पर।
0: आप मुफ्ती कवि कितने देखे हुए हैं पाकिस्तान में?
1: क्या अब मैं क्या बात करूं इनके ऊपर,
0: ये देखे मैंने आपकी बात को आगे बढ़ाया, शायद ये देखें ये जो बच्चे यहाँ पैदा हुए ना, ये अब सवाल करते हैं, जिस तरह आप ये बातें कर रहे हैं ना, आप यहाँ पैदा

0: हुए हैं, आप यहाँ को देख रहे हैं तो सवाल करते रहे हैं, तो मुनाफ़क़त की बात करते हैं। आपने लिखा हुआ है कि मुनाफ़क़त दरअसल पुश्त के पीछे दुश्मनी नहीं बल्कि मुंह के ऊपर दोस्ती का नाम है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं और छुपा के नहीं कर रहे। आप देखें ना मुनाफ़क क्या होता है, कई दफ़ा हमने इस पर जो है प्रोग्राम किए, कई दफ़ा उलमा ने इस पर बात की। अल्लाह ताला कहता है कि जो मैं मुनाफ़क़ को माफ़ नहीं करूँगा, जो मेरे मुकाबले में खड़ा होता है उसको माफ़, जो मेरे साथ किसी को जोड़ता है मैं माफ़ नहीं करूँगा, बाकी सब बहुत सारी चीज़ें मैं माफ़ कर दूँगा। जन्नत दोज़ख किस लिए बना, जन्नत दोज़ख को मजाक तो नहीं है, जन्नत दोज़ख बनाए गए इन्हीं वजह से बनाए गए हैं, तो ये सजाएं मिलेंगी। वो कोई बंदे कहते हैं जी बस एक बार पढ़ने से 10 हज का सवाब हो जाता है, फिर हज का सवाब पढ़ने का हो जाता है तो खाना काबा में क्यों जाते हैं, आज उधर हज करने के लिए क्यों मक्का मदीना जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं
1: मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूं अगर आपकी इजाजत हो।
0: जी जी,
1: एक तो ये चीजें हैं ना, अगर आप मेरी अगर लोग दोस्त यहाँ पर जो सुन रहे हैं सामीन, वो इसको समझेंगे, आप भी समझेंगे। एक तो हमारे में ये बहुत ज्यादा है, एक इसको मुनाफ़क़त ही कह लें, तल्लुकात की बेस पर यानी कि तल्लुकात बनाते हैं, यानी कि यार आपको पता है कि सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन पता है आपको सच क्या है, लेकिन आप तल्लुकात की बेस पर आप वो सच को जो छुपा रहे हैं, यानी कि उसे मुंह फेर रहे हैं। यानी कि मैंने ये पढ़ा था, अगर गलत ना हो जाए क्योंकि मैं ये कोड यहाँ गलत नहीं करना चाहता, किसी हदीस में पढ़ा था कि किसी सहाबा ने फलां मैं यहाँ गलत ना हो जाए क्योंकि मैं मेरे पास ऑफिस में नहीं हूँ, मैं देख नहीं सकता, पूछा कि आपके पीछे तो आप अकेले रह गए हैं, उधर तो हजार बंदा खड़ा है। उसने कहा अल्लाह ताला के अकामत के खिलाफ अगर हजार बंदा भी हो जाए मैं अकेला रह जाऊं तो मैं सच के साथ ही खड़ा होऊंगा। ऐसे ही है ये लोग पता क्या करते हैं, वो यार उधर तलुका दी कोई नहीं, उधर तो जानते ही कोई नहीं, ये साढ़े नाल भी हजार बंदा है, 100 बंदा है, 200 बंदा खलोता था, ऐसे बात करते हैं ये ऐसे हम लोग हो गए हुए, यानी कि तल्लुकात की बेस पर एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, चाहे वो गलती सही है चाहे मैं गलत हूं। आपको पता है
0: आपको पता है कि
1: जो बंदा कोई भी हो दुनिया में, आपने तारीख पढ़ी है, जो सच की बात करेगा उसके उसके उसके दुश्मन होंगे सिर्फ, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, ना उसके दोस्त होंगे, यही अल्लाह ताला को पसंद है।
0: आप देखें जब बात की जाती है ना कि सारी दुनिया में आप देख लें कि बाद जगह आपको पता है कि गुलाम खरीदे जाते थे, मंडियां लगती थी, उनकी कीमत दी जाती थी, ठीक है, गुलामों में भी किस्में होती थी कितनी कीमत का गुलाम है कितने में, और दूसरा गुलाम दूसरे को बेहतर मिलते थे, मालिक गुलाम को बेच देता था, ये हमने सब पढ़ा। लेकिन हम 2026 में रह रहे हैं, यहाँ भी गुलाम बिकते हैं, सियासी गुलाम
1: देख लें आप, 2026
0: तरीका होता है ना, यहाँ भी हम यहाँ की बात करते हैं डेनमार्क की, इनका तो आइन है कानून है, हमें एहतराम करना चाहिए, ये कानून के अंदर रहते हैं कानून के नीचे रहते हैं, इक्वल राइट्स की ये हमायत करते हैं, शादी की इजाजत है, तो क्या मुसलमान खरीदते नहीं है जाकर, उनके गलों में हार नहीं डालते?
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की आपने,
0: तो ये बहुत सारी चीजें हम रियलिटी से पीछे हट जाते हैं, हम अपनी तसल्ली करने के लिए, भाई यहाँ का कानून है जिस मुल्क में आप रहते हैं उसका आइन में इसको जो है उस पर लिखा हुआ है, तो हमें क्या कि जिस मुल्क के हम किसी के मुल्क के आइन की मुखालफत कर सकते हैं, रहते हैं हम ये डेनमार्क में, सियासत हम पता नहीं कहाँ की कर रहे होते, आप बंदे हमारे यहाँ आ जाते हैं, जो आप मैं भी वो जो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कहता रहता हूँ, बहुत सारे आलम बन जाते हैं, सियासी आलम बन जाते हैं, हम एक दूसरे के पीछे बैठे हुए गाली निकाल रहे होते हैं, और मुझे कितने लोगों ने सबूत दिए, मुझे शर्म आती है, वो सुन के भी शर्म आती है, यार ऐसे भी लोग हैं। फिर जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो अब मेरा यकीन हो गया कि ये बीमारी एक किस्म की ज़हनी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, या ज़हनी मरीज एक बीमारी नहीं होती, ये बहुत सारी बीमारियाँ, ये ठीक ही नहीं हो सकती। जो आपका दोस्त आपके पीछे बैठे आपको गाली निकाल रहा है, वो आपका दोस्त अब बीमार आदमी है, वो
1: देख लें फिर राजा साहब क्या चल रहा है। अब आपने खुद ही इसकी सारी तशरीह कर दी है, तो मैं
0: शायद आप इजाजत लेते हैं, आप भी मुझे पता है मैं तो आप ऑफिस में मौजूद नहीं,
1: नहीं आप कोई नहीं, आप कोई नहीं बात करें, मैं कोई ये भी नहीं अब कह सकता कि इनको हदायत दे, कितनी बार कहूंगा या कितनी बार कहेंगे हम आपस में एक दूसरे को, हमें हदायत दे सबको, हदायत तो अल्लाह ताला ने, तो मुझे लगता है आपको पता है मेरे ये पढ़ा हुआ है कि तौबा के दरवाजे बंद हो जाने एक दिन अचानक ही, तो मुझे तो लगता है कि इधर तो तौबा के दरवाजे पहले ही बंद हो गए हुए हैं, इधर हमारे ऊपर, इस कौम के ऊपर, कि तौबा ही कोई नहीं, कोई दुआ ही नहीं कबूल हो रही। बता दें कोई दुआ कबूल हुई हो? दुआएं करते हैं ना सारे, हमारी माँ बहनें बेटियां सब कर रही हैं, मुल्क के ऊपर भी कर रही हैं, सबके ऊपर, कि हमारा कोई परेशान हाल नहीं है, कोई वो कोई दुआ कबूल हो रही है। मुझे लगता है कि यहाँ तो अल्लाह ताला ने तौबा के दरवाजे, अल्लाह ताला नाराज है बड़ा सख्त। अकल भी तो काम करती है ना, कुरान पाक पढ़ा हुआ है आपने उर्दू के साथ इंग्लिश के साथ, उसको तो बार बार पढ़ेंगे आपको समझ आएगी। उसमें अल्लाह ताला ने यही चीजें फरमाई हुई हैं कि मैं मेहरबान नहायत, अब अपने इंसान के ऊपर बहुत मेहरबान है अल्लाह ताला, बहुत प्यार करने वाला है इंसान को। तो अल्लाह ताला ये कहता है कि उसको हो जाता है कि मैं अपने इंसान को कोई ना पहुंचाऊं, चाहे वो जितना मर्जी जालम भी हो, कर देता है। शिर्क नहीं माफ करता अल्लाह ताला किसी को जो उसके अगेंस्ट आ जाए कि मैं खुदा हूं। और दूसरी बात, ये अय्यारी मकारी और झूठ और मुनाफकत, तो देख लें आप
0: शायद मैं
1: हम
0: नहीं
1: कितने
0: कहता कि
1: हम
0: लोगों ने एक अपना बनाया हुआ है ना। अब यहाँ जितने भी मेले हुए हैं, जितने भी, और इसमें कामयाबी का राज क्या था? मैंगो फेस्टिवल, उसमें आम लगे हुए हैं, लोग जो है वो जा रहे हैं, ख्वातीन जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, फैमिली जा रहे हैं, कहीं सहूलियात ज़्यादा हैं, कहीं सहूलियात थोड़ी हैं। जो मैंने एनालाइज़ किया है कि लोग दिनों पर नहीं जाते, लोग स्टालों पर जाते हैं, इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सफा साबित हुई हैं।
1: बिल्कुल इस तरह की चीजें होनी चाहिए। जैसे कि अभी आपने खुद ही बताया कि लोग यहाँ पर कोई छोटी मोटी इंटरटेनमेंट चाहते हैं, इस तरह की इंटरटेनमेंट जो हटके, दूसरी चीजों से हटके, जो की है स्टालों में कर लें। मैंगो फेस्टिवल एक, जिसे आप कहते हैं पाकिस्तान का भी लगता है पता, कि ये पाकिस्तान के आम है, इधर अंग्रेज लोग भी आते हैं, डैनिश भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं, इंडियंस भी हैं, सिख भी हैं, मैंने देखे हैं बहुत से लोगों को पता लगता है कि ये पक्षन के आम है, और कईयों को नहीं पता, फिर पता लगता है ये खासकर डैनिश लोगों को आते हैं। और फिर इस तरह आप ये जो है ना, आपकी मशहूरी होती है, इन चीजों को करें हाईलाइट, बजाय कि आप गंदी सियासत करें, उसे आप हट जाएं। ये बाकी सबके अपना अपना है, एक राय है ना, मशवरा है ना,
0: जमहूरी
1: किसी को
0: मुल्क के हर
1: हुक्म
0: आदमी का हक है, उसे हक है, जो यहाँ बोलने की आज़ादी है, कहने की आज़ादी है, जहाँ कानून ने इजाज़त दी है कानून कहता है, लेकिन कुछ हदें ऐसी होती हैं जो इंसान को खुद भी ख्याल करना पड़ता है।
1: बिल्कुल ठीक फरमाया आपने।
0: एक बंदा कहता है यार मुझे कानून इजाज़त देता है, तो खुद भी कुछ चीज़ें होती है ना, खुद भी बंदा कह लगता है यार मैं किसी के दीन की बात गलत ना करूं, उसका दिल हार्ट होगा, तो ये बंदा खुद भी कह सकता है। अब कानून में यहाँ बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त है, लेकिन ये तो नहीं आपने सब कुछ वही करना है।
1: यहाँ पर मैं ये बात कहते चलूं, आपने चले ये बात कर ही दी है, किसी के दीन के बारे में खासकर हमें ये बात करते हुए अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम पहले खुद अपने दीन के मुताबिक चल लें। जो जो हकामत आपके रब ने और आपके रसूल ने दिए हैं, उसके ऊपर आप पूरी तरह पहले अमल कर लें, क्योंकि आपके ऊपर सवाल हो सकता है। आप किसी के दीन के ऊपर, और वैसे भी हमें किसी, हमारे दीन ने ये सिखाया कि आप किसी के दीन के ऊपर किसी किस्म का कोई फतवा या किसी किस्म का ये नहीं लगा सकते कि आप ये करें। और जिन मुल्क ममालिक में आप हम रह रहे हैं, डेनमार्क स्वीडन में, हम यहाँ पर एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी है, ओवरसीज और दूसरे जो मुल्कों के लोग हैं, हम यहाँ पर आए हैं, जब फिर हमने हमने इनके ममालिक के कवानीन का एहतराम करना, ये हमारे दीन में भी है, ये और दीनों में भी है, लेकिन हमारे दीन की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे दीन में भी है। आप यहाँ पर जबरदस्ती कोई चीज मसला नहीं, कि कानून को आप ये नहीं कर सकते कि ये कानून मुझे पसंद नहीं है, तो लिहाजा है लोग शिद्दत पसंदी जो है यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाती। ये ऐसी है कि जब आप अपने मुल्कों में जाते हैं तो आपके साथ वहां क्या होता है, शिद्दत पसंदी करते हैं तो क्या
0: शायद
1: करते हैं,
0: मैं
1: आपको
0: पता नहीं बात
1: नंगा
0: करने
1: करके,
0: लगूं,
1: नंगा करके लटका के मारते हैं आपको। इधर
0: शायद
1: जब
0: मुझे एक
1: आप
0: बात मैं
1: करोगे,
0: करने लगूं कि सारी सियासी जमातों का मंशूर होता है, क्या सारी जमातें अपने मंशूर पर अमल करती हैं जो उन्होंने खुद मंशूर बनाया होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था, वो मंशूर ही था ना, और क्या था?
1: बिल्कुल
0: ठीक है, वो मंशूर था, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशूर पर हम अमल करते हैं,
1: बिल्कुल नहीं,
0: कोड हम करते हैं? इसी तरह ये जो होता है ना, जब तक आप अपने मंशूर पर अमल नहीं करते, आप जहाँ चाहते हैं, जहाँ आपको दीनी लिहाज से जाते हैं, उस मंशूर पर अमल नहीं करते, हमारा तो किसी बंदे से गिला बनता ही नहीं है।
1: नहीं, हम उस मंशूर को कोड करते हैं या उसको हर अमल नहीं करते, कोड करके लोगों को बताते हैं जिसमें उसने कोई अपना मफाद हासिल करना हो, ये भी बताएं।
0: सही बात, صحیح بات. تو شاید آپ کا بہت شکریہ، آپ آفس سے باہر ہیں، آپ نے قیمتی ٹائم دیا. مجھے پتہ ہے کام کرنے والے کا بندہ کتنا قیمتی ٹائم ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہے. تو یہ چھٹی کے جو دن ہوتے ہیں ہم نے 35-36-40 سال کے قریب جو ہے اپنی عوام کے لیے دیے ہیں. آج آپ کا بھی چھٹی کا دن ہے، میرا بھی چھٹی کا دن ہے، جو ہمیں سن رہے ہیں ان کی بھی چھٹی ہے. وہ تو گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے، دکانوں میں بیٹھے ہوئے، پبلک پلیس پہ بیٹھے ہوئے، دنیا کے کسی حصے میں بیٹھے ہوئے سن رہے، وہ تو بڑے انجوائے کرتے ہیں. میں بھی جب بیٹھتا ہوں کبھی گاڑی میں، کبھی دوستوں کے پاس، تو جب کوئی پروگرام لگا ہو تو میں بھی بڑا انجوائے کرتا ہوں.
1: راجا صاحب، میں نے چلے تھوڑی مزہ کن بات بھی کر لیں. میں نے تو آپ کو چھٹی بڑی دیکھا ہے 25.
0: آپ دیکھ لینا جو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا، جو مذاق کی طرف ہم جب مذاق پہ آتے ہیں، جن لوگوں نے کام کیا ہوتا ہے انہوں نے کیا ہوتا ہے، کسی نے بھی کیا. اگر کوئی بندہ آپ کو پسند نہیں ہے لیکن اس نے زندگی میں کوئی کام کیا ہو، تو اس کام کی تو بندہ جو کہتا ہے یار اس نے کیا ہو، بندہ مجھے پسند نہیں ہے اس نے کام تو کیا ہو. یہ ایک دوسرے کے کام کو اپریشیٹ نہیں کرتے، وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، غیبت کی طرف چلے جاتے ہیں، منافقت کی طرف چلے جاتے ہیں.
1: جیسا مگر کل کو فرض کریں مجھے کوئی شیلڈ مل گئی ہے، میں ایک ویسی بات کر رہا ہوں، مجھے بھی نہیں کوئی چھوڑے گا کہ اس کو شیلڈ کیوں ملی ہے. یہ ہے ادھر جو قومیں ہیں ادھر کی جو ہیں جام رہتے ہیں،
0: چند لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں نا، کہتے ہوتے ہیں ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، کیا مچھلی تالاب گندا کر سکتی ہے؟ مچھلی نہیں تالاب گندا کر سکتی. وہ کہتے ہیں ایک مچھلی، اس کی وضاحت ہے. اسی طرح چند لوگ ہوتے ہیں جو ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں اور اس پہ جو ہے نا اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں. ہر انسان کو اپنی خوبی کا بھی پتہ ہے، خامی کا بھی پتہ ہے، دوستی کا بھی پتہ ہے اور دوستی نہ ہونے کا بھی پتہ ہوتا ہے، منافقت کا بھی پتہ ہے. لیکن یہ چند لوگ ہوتے ہیں، شاید اتنی زیادہ لوگوں کی تعداد نہیں، بہت یہاں سادے لوگ ہیں، بڑے سمپل لوگ ہیں. یہ بچے بڑے معصوم ہیں، ان کی تختیوں، یہ بچے پیدا ہوتے ہیں اس تختی پر کچھ نہیں لکھا ہوتا، یہ ہم ان کی تختی پر لکھتے ہیں اور اس کے بعد بچوں کو خراب کر دیتے ہیں. بچے جو ہے یہاں پیدا، بچہ کون پیدا ہوتا ہے اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کچھ؟ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا. آپ اذان دیتے ہیں، اگر مسلمان پیدا ہوا تو اذان کیوں دیتے ہیں آپ؟ اذان دی جاتی ہے. اسی طرح کرسچن ہیں وہ اس کو اپنے نظام سے کرتے ہیں، دوسرے مذاہب ہیں وہ اپنے نظام سے کرتے ہیں. تو میں تو سب مذاہب کی جو ہے عزت کرتا ہوں شاید.
1: جی، اور یہی ایسے ہی کرنا چاہیے یہاں پر رہ کے. اب آپ اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں اچھی لگتی تو پھر یہی ہے، آپ کو ڈینش کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. اگر آپ نہیں ان کے قانون کے مطابق چلنا چاہتے، سعودی عرب میں چلتے ہیں نا ان کے قانون کے مطابق، وہاں کتنی سخت سزائیں ہیں، وہاں تو آپ چپ کر کے سر جھکا کے چلتے ہیں. جو ادھر لوگ جو کام کر رہے ہیں، انڈین، پاکستانی، بنگالی، جو بھی ہیں جو قومیں وہاں کام کر رہی ہیں، تو ادھر آپ کیوں جو ہے ان کی وائلیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، جنرلی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کچھ لوگ کرتے ہیں اور انہی کے اوپر یہ انہوں نے شکنجا جو ہے نا ٹائٹ کیا ہوا ہے اور کر رہے ہیں ادھر، اور مزید جو قوانین لے کے آ رہے ہیں یہاں پر جو غیر ملکی ہیں، چاہے کوئی بھی ہے. آپ کو بھی پتا ہے اس بات کا،
0: شاید جو نئے قانون آ رہے ہیں اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا.
1: تھینک یو، شکریہ، اللہ
0: حافظ. سامعین ناظرین، یہ تھے شاہد نسیم جو کہ ہم سے بات کر رہے تھے. سامعین، ہماری بات جو ہوتی ہے صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے ہوتی ہے، ہمارا کسی سے متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ٹائم لینا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. آپ اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں، آپ ابھی بات کرنا چاہتے ہیں آپ ابھی بات کر سکتے ہیں، کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں. ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है। इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत है, जो जानी पहचानी है, इनका तारफ की जरूरत भी नहीं है, ये बुजुर्ग जो है सीनियर साफी है, मेरी मुराद है जनाब असलम मेहर साहब। आजी साहब, एक बार फिर आपको अपने ही अदारे पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: शुक्रिया जनाब राजा गफूर अफजल साहब, रेडियो आपकी आवाज अपनी जितनी भी कैपेसिटी है, हिम्मत है, वक्त है, टाइम है, लोगों को बेहतरीन इंफॉर्मेशन मुहैया करने के लिए, हम तो इसको एक कम्युनिटी की खिदमत, पाकिस्तान के परचम को बुलंद रखने के लिए अपना हिस्सा डाल देते हैं। आप तो मुतवातर सुबह से शाम तक रेडियो के लिए बेहतरीन और काफी वक्त देकर लोगों के लिए मालूमात मुहैया कर रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूं जी कि हम जुमे वाले दिन अपने राशिद अली साहब ने पूरी जो उर्दू की मीडिया टीम है उन्हें मधु किया था। वहां पर हमारे आसफ साहिल राजपूत थे, जावेद अली थे, असलम मेहर थे, गोंदल साहब थे और जनाब हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और नौजवान सियासतदान, बड़े ही हम्बलफुल हर लफ्ज में उन्होंने अपनी खिताब में यही फरमाया कि मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं तो एक आजिज इंसान हूँ, अपने वालिद के बताए हुए तरीकों पर सियासत करता हूँ और पाकिस्तानी अवाम के लिए कवानीन में अगर सख्तियां हैं तो वो भी बताता हूँ, अच्छाइयां हैं वो भी बताता हूँ, क्योंकि ये मेरा मुल्क है। मैं डेनमार्क में पैदा हुआ हूँ और डेनमार्क में हमारे बच्चे पैदा हुए हैं, तालीम ले रहे हैं, आला आला ओहदों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों दफा कहा कि मेरे अंदर कोई अकड़ बकड़ या कोई ऐसी चीज नहीं, मैं आज दी से जिंदगी गुजार रहा हूँ और आखिरी दम तक अपने माँ बाप की हदायत के मुताबिक आज दी से ही जिंदगी गुजारूंगा। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून जनाब मोहम्मद आसफ साहिल राजपूत साहब ने अपने खिताब में बहुत अच्छी बात की। वो अपने दूसरे ग्रुप की अगर को भी वो बात करते हैं जो नून से मुंसलिक हैं, उनको भी इज्जत और तकरीम के साथ बुलाते हैं, उनका भी वो नाम बहुत प्यार और मोहब्बत से। शौके साहब ने भी ये बात की कि भी दो ग्रुप हैं लेकिन दोनों ग्रुप जो है मौजूदा हुकूमत के हिमायती हैं, उनके जियाले हैं, उनको चाहने वाले हैं, उनके लिए अपना वक्त लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, टेलीफोन करते हैं, हमें बुलाते हैं, राजा गफूर साहब को बुलाते हैं और दीगर दोस्तों को बुलाकर इस जुमे को बहुत ही अच्छी जबरदस्त दावत का एहतमाम राशिद अली साहब ने किया था और मखसूस दोस्तों को बुलाया था। ये अपने जो यहाँ पर वेल्बी में अपने कोलंबिया है, कोलंबिया रेस्टोरेंट, उनका
1: वो तो एक होटल की शक्ल इख्तियार कर गया, काफी बड़ा अदारा बन गया कोलंबिया।
2: हाँ जी, को इसकी ब्रांचें खुल गई हैं जगह जगह, बहुत ज्यादा 5-6 आदमी हर वक्त इनकी किचन में काम करते रहते हैं। उन्होंने कोलंबिया वालों ने, आप यकीन जाने कि इतना अच्छा खाना, मटन मछली, बात ये नहीं कर रहे कि मटन मछली की, नफासत थी, सफाई थी, अदब था, अपने मेहमानों का वो इतना ख्याल करते हैं यार के जैसे घर के मेहमान है, रेस्टोरेंट के मेहमान नहीं है। बार बार आकर पूछ रहे थे, हर चीज वहां पर टेबल पर खाने इतने थे कि जगह नहीं रही रखने के लिए, कितना खाएगा आदमी। बात तो यह है कि राशिद अली साहब ने दिल खोल कर अपने मेहमानों को कह रखा था कि आपने जो कुछ मंगाना है आप बोले वो हाजिर होगा। तो राशिद अली साहब ने वहां पर आपके एजाज में और सिकंदर के एजाज में उनको जो तमगा इम्तियाज मिला है, आपको अम्बेसडर साहब शेब सरवर साहब ने खसूसी तौर पर जिक्र किया है इस बात का कि आप हर साल कायदे आजम की सालगिरह के मौका पर तमाम रहनुमाओं को बुलाते हैं। लास्ट टाइम पे जब आपने तकरीब की थी यहाँ पर और सब लोग जो हैं अपनी अपनी सोसाइटियां या कदावर रहनुमा, सियासी, दीनी, अदबी, कारोबारी, बिजनेसमैन सब मौजूद थे। उन्होंने कहा, मैंने इस चीज को नोट किया है कि ये सब लोग जो हैं वो हैं जो पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। तो मैंने इस चीज को एक साल नहीं, दो साल नहीं, तीन साल से मैं मुतवातर देख रहा हूँ कि इससे पहले भी राजा गफूर अफजल ये तकरीब 25 दिसंबर को हर साल मनाते हैं और बिला तफरीक सब लोगों को दावत देते हैं और बोलने का मौका देते हैं। तो ये खसूसी शील्ड इसलिए आपको दी गई। तो बाकी जनाब कल अपने सिकंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साबक, उन्होंने तमगाए इम्तियाज के बारे में एक घंटा पूरी तफसील से ये बताया कि ये ऐसे नहीं मिल जाता, इसके लिए बहुत काम, रिपोर्टें चारों तरफ से ली जाती हैं, हर तरफ से पूछा जाता है और एक लिस्ट बनाई जाती है उस मुल्क के अंदर कि अगर 10 आदमी भी हैं तो कुछ लोग शॉर्ट आउट करते करते करते करते फिर जब ज्यूरी जो है वो वोट देती है, वो अपनी राय देती है, उसके कारनामों को वो पढ़ रहे होते हैं टेबल के ऊपर बैठकर, उनके सामने उस शख्स की पूरी बायोडाटा होती है, उसका उठना बैठना खाना पीना, मुल्क के लिए क्या किया, उस दंगे किए हैं या के काम किया है, क्या किया है, वो हर चीज उसकी पूरी वहां पर लिखी हुई होती है कि जिस दिन से उसने पाकिस्तान डेनमार्क के लिए खिदमात सर अंजाम दी है तो फिर वोटिंग होती है और डेमोक्रेसी है और जमहूरियत है। इसी चीज को मद्देनजर रख के सिकंदर मलक सदीक को तमगा इम्तियाज दिया गया है। तो ये तमगा इम्तियाज हर आदमी को नहीं मिलता। आप देखें हमारी जो तारीख है, हम 56 या 60 साल से यहाँ पाकिस्तानी आए, मजदूर की हैसियत से आए, काम किया वतन के लिए, इन्होंने जो कुछ हो सका अपनी मेहनत की, पाकिस्तान के परचम को बुलंद किया, ये वाहिद शख्स है पहला हमारे में से जो हम में पैदा हुआ, यहाँ पैदा हुआ, इसको तमगा इम्तियाज। गुलाम साबर को जो मिला था उन्होंने अलामा इकबाल के ऊपर, अलामा इकबाल शायर मशरक कायदे आजम के साथी थे, इस सिकंदर मलक ने नौजवानों के लिए काम किया, हमारे लिए काम किया है। यार वो बार बार यही कह रहा था कि मेरे अंदर कोई ऐसी प्राउडनेस नहीं, मैं तो एक आजिज इंसान हूँ, आप में से हूँ। जब भी मैं कोई चीज देखता हूँ कि कवानीन बनते हैं, मैं उसके ऊपर आवाज उठाता हूँ, पार्लियामेंट में आवाज उठाता हूँ। मैंने कहा सिकंदर मलक मुझे ये तो बताएं, क्योंकि मैं डैनिश अखबार रेगुलरली नहीं पढ़ता, लेकिन मैं आलमी मीडिया जो उर्दू का है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से हो, कनाडा से हो, अमेरिका से हो, बीबीसी हो, डोच ऑफ वॉइस ऑफ डोच हो, जर्मनी हो, मैं उर्दू मीडिया वहां तक पढ़ता हूँ कि ये प्रिंट कहाँ से होकर निकला है, उस वो जो प्रेस है उसका नाम भी पढ़ लेता हूँ कि ये किस दफ्तर से ये खबर आ रही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सिकंदर मलक ने ना दिन देखा ना रात देखी, तो उनको जो हुकूमत पाकिस्तान ने ऑफिशियल तौर पर यह तमगा दिया है, ये हर आदमी को नहीं मिलता। यहां मैं ऐसे मिसाल दूंगा कि अब्दुल सत्तार ईदी मेरा आइडियल है कायद आजम के बाद। आप देखें कि सारी जिंदगी एक कुर्ता एक पजामा और हवाई चप्पल के अंदर पूरे मुल्क के अंदर उसका नाम गूंज रहा है ना, गूंज रहा है। क्या कभी तीनों अफवाज के सरबराह किसी ऐसी शख्सियत के जनाजे में शामिल हुए थे? फिजाइया, बर्री, बहरी, तीनों अफवाज के जर्री, बहादुर, सिपा सालार, ये हवाओं के मुसाफिर, ये समंदरों के राही, ये सब जो हैं अब्दुल सत्तार ईदी के जनाजे में नमाज जनाजा में शिरकत की है और ये एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। इसी तरह एक मजदूर का बेटा, मैं भी मजदूर आया, सिकंदर का वालिद भी एक मजदूर आया था, उसके बेटे ने कम्युनिटी की खिदमत की है, आवाज उठाई है। और मैंने कहा सिकंदर आप कालम लिखते हैं, ये तो मुझे पता है, मुझे ये नहीं पता दो चार कालम लिखे होंगे, पांच लिखे। कहता नहीं अंकल, 100 कालम 100 कालम लिखे हैं मैंने, और जब 100 कालम अखबारात में कंप्लीट हुए उन्होंने मुझे स्पेशल बुलाकर मेरी हौसला अफजाई की, मेरी हौसला अफजाई की कि आप आवाज उठाते हैं, 100 कालम कह देते हैं राजा गफूर अफजल, क्या मामूली बात है? हम घर बैठकर किसी को कह देते हैं ये अच्छा है, कहना चाहिए, बुरी बात नहीं। हमने अपने सफीर जो यहाँ पर आते हैं, क्या कहते हैं, मशीर आते हैं, वजीर आते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। लेकिन डैनिश मीडिया के अंदर میری جہاں تک معلومات ہے کسی اور آدمی نے سکندر ملک کے علاوہ کوئی 100 کالم نہیں لکھا, وہ بدستور لکھ رہا ہے. اور پھر بار بار سر جھکا کے کہتا تھا کہ یہ اردو میڈیا بیٹھا ہوا ہے, میں آپ کے سامنے آپ کا عاجز بھائی ہوں. اس میں اس کے چہرے کے تاثرات بھی پڑ رہا تھا یار. میں کبھی ان کو کہہ بھی دوں نا کوئی ایسی بات جو مطلب ہے کہ ناگوار ہو, پھر بھی کہتا ہے آپ میرے انکل ہیں. گاڑی سے اتر کر ایک دفعہ میں یہاں یقین جانو اپنے گھر کے پاس جو ہے ٹریفک اشارے پہ کھڑا تھا, سائڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے اترا, مجھے سینے سے لگایا, سلام کیا. یہ ہے بڑا پن. تو کوئی ایسے تو نہیں تگمہ مل جاتا پاکستان سے. تگمہ جو ہے یہ ایک پہچان ہے اس کی, اور آئندہ بھی انشاءاللہ وہ اسی طرح پوری پاکستانی کمیونٹی کی, ہر آدمی کی جو بھی مسئلہ ہوا. اور دوسرے نمبر پہ اس وقت بخاری صاحب جا رہے ہیں, میری دعا ہے کہ ایک وقت آئے اجاز بخاری صاحب کو بھی حکومت پاکستان ریکگنائز کرے اور ان کو بھی تگمہ دے, کیونکہ ان کی بھی بڑی خدمات ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو شعیب صاحب کو اللہ خوش رکھے, آباد رکھے. چھوٹے چھوٹے میرے پاس 7 سال کی بچی کی تصویر ہے, میں دکھا سکتا ہوں. تو وہ کہنے لگی کہ ہم کہاں دیکھ رہے تھے کہ لوگ آ کر مینگو فیسٹیول میں ہاتھ ملا رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, اور شعیب سرور صاحب کو بڑے محبت سے دیکھ رہے ہیں. تو میں بھی ماں کا ہاتھ چھڑا کر نہ بھاگ کر سفیر صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی. تو میری ماں نے میری تصویر اتار لی. یار ایسے امبیسٹر جو ہیں نا, یہ ریڑھ کی ہڈی ہیں, یہ ہیں امبیسٹر. ہمیں تو یہاں بہت سارے امبیسٹر آئے, کہہ دیا جی کہ آپ ریڑھ کی ہڈی ہیں, اور ریڑھ کی ہڈی بن کے دکھاؤ, کام کر کے دکھاؤ, ملک کا نام اونچا کرو. دوسری بات اب میں کہہ کے اجازت لوں گا کہ آپ دیکھ لیں کتنے سفرا آئے یہاں پر پاکستان میں, جو ڈنمارک کی ڈینش سفیر ہیں, خاتون ہیں, معزز ہیں, احترام ہے, محترمہ ہیں. تو وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ, پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ یہ امبیسڈر ہے. جب انہوں نے اناؤنس کیا, یہ سامنے جو خاتون صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی, کہ یہ پاکستان اسلام آباد میں ڈنمارک کی سفیر ہے, تو تعلقات بنانا, ملک کی عزت میں اضافہ کرنا, حلالی پرچم کو لہرانا, یہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہوں, جنہوں نے اپنے منصب پر رہتے ہوئے ایک مزدور کی طرح کام کر کے دکھایا ہو. کام چمکتا ہے, آدمی کا نام نہیں, اس کا کام چمکتا ہے.
1: مہر صاحب آپ کا بہت شکریہ, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے چیزوں کو انالائز کیا. تو مہر صاحب ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ احمد فاروق صاحب جو سابقہ سفیر تھے, ڈنمارک تشریف لائے ہوئے تھے, کل پیاں منیر صاحب نے ہمیں ایک تصویر شیئر کی, دیکھ کر جو ہے بڑی خوشی ہوئی. اور ایک تصویر بھی تھی جس میں میاں صاحب اور نصر ملک صاحب اور احمد فاروق صاحب بھی تھے, وہ بڑی اچھی تصویر تھی, بڑی پیاری تصویر تھی. میاں صاحب کی ہے اور احمد فاروق صاحب کی بھی بڑی جو ہے وہ تصویر تھی. تو مہر صاحب ہمیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی.
2: عمران محبوب صاحب کی بھی تصویر مجھے میاں صاحب نے براہ راست بھیج دیا تصویریں. میاں صاحب بہت ایکٹیو ہیں, سوشل ہیں. اور
1: چلے میں یہ دیکھے نا, یہ ایک اچھی چیزوں کی جو ہے وہ تعریف کرنی چاہیے, اچھی چیزوں کو جو ہے سراہنا چاہیے. تو نصر ملک بھی اسی کمیونٹی کا حصہ, اسی ملک میں رہتے ہیں, اسی ملک میں رہتے ہیں, وہ بھی ڈینش شہری ہیں اور بات کرتے ہیں, تو ان کا بھی حق ہے. لیکن تصویر جو میاں صاحب کی اور احمد فاروق صاحب کی, نصر صاحب کی, بہت ہی خوبصورت ہے.
2: ہاں جی, عمران محبوب بھی ساتھ ہیں, ایک تصویر,
1: وہ بھی بڑی تاریخی تصویر ہے, دونوں تاریخی تصویریں ہیں.
2: میں اب آپ نے نصر ملک صاحب کا نام لیا ہے تو آپ سن لیں کہ میں حقیقت بیان کرنے سے کبھی بھی گھبرایا نہیں, اور نہ ہی یہ سمجھتا ہوں کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا. لبنہ الہی نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا, انکل ہم نے جو کام کرنا تھا کر لیا, نہ کوئی ہمیں چھوٹا کر سکتا ہے, آپ کو بھی مجھے بھی لبنہ کو نہ کوئی اونچا کر سکتا ہے, ہم نے جو کرنا تھا کر لیا ہے. اب نصر ملک کی بات سن لیں. نصر ملک صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ یہ جب ریڈیو ڈنمارک پہ کام کرتے تھے, میں ان کے پاس میرا خیال ہے 20 مرتبہ گیا ہوں. میں جاتا تھا, میں دیکھتا تھا کہ یہ جنگ اخبار خریدتے ہیں اور سرخ سیاہی سے اس کو انڈر لائن کر لیتے تھے, کہ جس کو خبر اپنے انداز سے یہ بناتے تھے اور اچھی خبر بناتے تھے. पहला यही उर्दू का एक अदारा था, अब तो जगह जगह के ऊपर हमारे हाथ में, अब यह जो मैं बात कर रहा हूँ मैं टेलीविजन हाथ में पकड़ कर आपसे बात कर रहा हूँ, तस्वीर जो नजर आती है और पूरी दुनिया सुन सर रही है जी, पूरा यूरोप यूरोपीय यूनियन सुन रहा है, ये बातें सारी हो रही हैं। तो नसर मलक को मैंने बैठ कर देख कर काम करते हुए जब देखा तो जनाबे वाली इनके टेबल के ऊपर एक कप भी पड़ा हुआ था। मेरा मुशाहिदा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि वो अंदर से काला बाहर से सफेद था। काफी पीते थे, लिखते थे, काटते थे फिर लिखते थे। तो खबर बनाने का ढंग जो है मैंने नसर मलक से सीखा। और एक मर्तबा एक जगह पे हम बैठे थे तो नसर मलक ने मेरी उर्दू चेक करनी थी। इन्होंने 22 सफात लिखाए, शायद मुझे शक पड़ रहा है कि आप भी साथ थे शायद। 22 सफात ये बोलते गए, मैं लिखता रहा लिखता रहा लिखता रहा। तो फिर इन्हें यकीन आ गया कि मैं उर्दू में मुश्किल से मुश्किल अल्फाज भी लिख सकता हूँ। मेरे इस हवाले से नसर मलक उस्ताद हैं और ये पाकिस्तान में सहाफी थे। जब यहाँ वली खान आए कोहनूर में, काकर अयूब साहब ने उनके एजाज में, सागा सैनमा खत्म हो गया, वहां लीडल मार्केट बन गई है खाने पीने की, तो वहां पर नसर मलक की मुलाकात, और मैं भी था और भी लोग थे, अयूब काकर भी थे। तो उन्होंने वली
1: हाजी साहब जरा मैं दुरुस्त कर दूं, वो कोहनूर में नहीं आए थे, वो शेख साहब जो नदीम का रेस्टोरेंट था उसमें आए थे।
2: वहां भी थे, कोहनूर में भी आए थे, ये मैं आपको सच कह रहा हूँ,
1: क्योंकि आपके पास नॉलेज ज्यादा है,
2: क्योंकि वो वहां भी आए थे। और ये शायद आपके आने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, इनके पास उनके इंटरव्यू की कॉपी थी जो इन्होंने दिखाई उनको, और उन्होंने कहा कि वाकई मैंने आपको पाकिस्तान में इंटरव्यू दिया था, क्योंकि उनको तो अयूब काकर साहब ने वो अपनी।
1: चलिए भाई साहब, चूंकि आप तजुर्बाकार हैं माशाल्लाह, आपके पास बड़ा नॉलेज है, आपके पास पूरी वो कहते हैं बक्से भरे हुए हैं, जो सबूतों के बक्से भरे हुए हैं, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता आज साहब।
2: और इन्होंने रिकॉर्डिंग की थी नसर मलक ने, बाकायदा रिकॉर्डिंग की, और मैंने वो खबर जो है खुद अपने तौर पर, क्योंकि मेरा उस्ताद है खबर बनाना लिखना, उसका बैलेंस करना,
1: ऐसा उस्ताद का एहतराम करना चाहिए, यही हमें सिखाया गया है।
2: तो वही तहफ्फुज़ात हो सकते हैं अपने अपने, और एक बात वो ये भी कहते हैं तुम्हारा दीन तुम्हें कबूल, मेरा दीन मुझे कबूल। मैं भी उन्हें कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये कोई ऐसी नाराजगी की बात नहीं है। मेरे बच्चे यहाँ पर डैनशों से तालीम नहीं लेते, आपके बच्चे नहीं लेते, औरों के बच्चे नहीं लेते, उनका दीन उनको कबूल, मेरा दीन मुझे कबूल। क्या मेरे बच्चे जिन्होंने मास्टर किया है, जिन्होंने अच्छी नौकरियां ली हैं, जिन्होंने इंपीरियल सेना में मुझे दावत मिली थी कि मियाँ माँ बाप तुम्हारे आ सकते हैं जब तुम्हें हम सनद देंगे, और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने सनद दी है मेरी बेटी को। मैं जब वहां पे गया तो उनको पढ़ाने वाले जो हैं वो लाला मूसा के प्रोफेसर नहीं थे, डेनमार्क के प्रोफेसर थे। तो कहने का मकसद है कि नसर मलक मेरा उस्ताद है खबर बनाने का ढंग, बल्कि मैं यहां तक कहूंगा ये दावा है नसर मलक का, यहाँ जितने माहनामे रसाले निकले हैं ना उनको भी कुछ ना कुछ, मैं लफ्ज कह रहा हूँ कुछ ना कुछ, सबको नसर मलक ने सिखाया कि मैगजीन बनाया जाता कैसे है। वो तो वीजा लेकर आए थे यहाँ, जर्नलिस्ट बन के आए थे, वो किसी का बेटा नहीं बन के आए थे। सदाए पाकिस्तान की कापी असलम महर के पास आज भी मौजूद है सदाए पाकिस्तान की। तो मैं कह रहा हूँ कि वो इसमें कोई शक नहीं, वो
1: हाजी साहब जो भी अल्लाह ताला ने जिसको भी इलम दिया है उसकी तारीफ करनी चाहिए। और आप भोगों से काम लेते, हम भी भोगों से काम लेते, जिस तरह आपने कहा है वो अपने तौर पर, आप अपने तौर पर बड़ी अच्छी तरीके से आप वजाहत कर दिया है। और इसी तरह अगर देखिए मालमों में हाजी साहब इलेक्शन हो रहे हैं, आपका बड़ा असर रसूख है वहां पर भी मालमों में भी, क्योंकि मालमों के पास भी दो शरीयत है पाकिस्तानियों के पास जो है ना, वो भी वोट दे सकते हैं, यहाँ भी रहते हैं मालमों में भी रहते हैं। तो हाजी साहब दूसरी ये बात है कि एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हम कहते हैं हम तो इस मुल्क में रहते हैं, स्वीडन या स्कैंडिनेविया के जो ममालिक हैं वहाँ तो सारे इस मुल्क में रहते हैं, इस कानून कायदे के अंदर रहते हैं, कोई सुन्नी है कोई वाबी है कोई शिया है कोई मरजई है, तो इसमें हाजी साहब यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है इस तरह का।
2: नहीं देखें, इन्होंने दो मस्जिदें बाकायदा जमीन से उठाकर अहले तौशी के लिए, आर नवाए नहरे बरो नसर अपने नासर फूड स्टोर के पास से गली जाती है क्या वो मस्जिद बिल्ट करके नई बनाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने नहीं दिया आपको अहले तोशी को? और एनवी में कतर ने 120 मिलियन डैनिश क्राउन, मेरा ख्याल है अब सही पता नहीं, 120 मिलियन जो है उन्होंने कतर ने खर्च करके आपको बेहतरीन मस्जिद एनवी में, एनवी नेरेब्रोस में बना कर नहीं दी। मालमो के अंदर भी मैं वहां जुमा पढ़ के आया हूँ, वहां जनाब रोजन गॉड में पता नहीं कितने मिलियन करोन लेकर उन्होंने जमीन का किता खरीदा और उसके ऊपर स्वीडिश फर्म कंपनी ने बनाने वाले इंस्ट्रक्शन जो है कंस्ट्रक्शन फर्म इतनी प्यारी मस्जिद बनाई है कि जब दूर बैठा कोई आलम खिताब कर रहा तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरे कान में जो है ना वो हेडफोन लगा हुआ है और मैं सुन रहा हूँ। इतनी प्यारी मस्जिद, वहां सैकड़ों मेरा ख्याल हजार आदमी आसानी से, तो ये इन्होंने सहूलत दी है मुझे जो मैं अपनी जिंदगी।
1: हाजी साहब ये देखे ना, वहाँ जो है वो कादियानियों की इबादतगाह बनी हुई है, वो बहुत भी बड़ी खूबसूरत है। हाजी साहब यहाँ कानून का एहतराम किया जाता है,
2: कानून का एहतराम इस तरह किया जाता है कि उससे पहले आप अगर मोटरवे से आ रहे हैं वहां पर तो हर दफा जब मैं गाड़ी पे जाता हूँ अपने बेटे के साथ अपने दामाद के साथ तो वो जो है बिल्कुल मोटरवे के पास नीचे खुले बड़ी खुली जगह जमीन जैसे फुटबॉल की होती है तो तुर्कों ने बनाई हुई है, तुर्कियों ने बनाई हुई है मस्जिद, और कार पार्किंग की सहूलत है बेतहाशा। बस मैंने एक चीज नोट करी है कि आप अपनी इबादत करें, आप तशद्दुद ना करें, आप यहाँ पर कोई कानून की खिलाफ वर्जी ना करें, किसी को धमकी ना दें, और अपने घर बुलाकर धोखे से दावत में बुलाकर उसको माँ बहन की नंगी गालियां ना दें। अगर ऐसा काम करते हुए आप पकड़े गए और आपके पास सबूत है तो सीधे कानून ने पकड़कर कान से जेल में ठोंस देना है।
1: हाजी साहब अब कानून जो है बहुत तब्दील हो चुके हैं, हम सबको कानून का एहतराम करना चाहिए, जो भी हम यहाँ रहते हैं यहाँ की डैनिश सियासी जमातों का हिस्सा बनना चाहिए और यहाँ के कानून का एहतराम करना चाहिए। कोई भी आलम दीन हमें नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि यहाँ के कानून का एहतराम ना करें, वो भी फरमाते हैं सारे आलम दीन कि यहाँ रहते हैं यहाँ कानून का एहतराम करें, दीनी लिहाज से उसकी वजाहत भी करते हैं कि जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के कानून का एहतराम करें।
2: उसकी मिसाल ऐसे है कि जाहिद खान है अपने कोयटे या पिशावर के, उनके वालद डॉक्टर अब्दुल अजीज यहाँ 40 साल पहले आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं जो कोई बात सीखी है तो इन लोगों की महफल सोबत में बैठकर सीखी है। आप देखें ना कि अगर आग का कोई अंगारा है, भट्टी है, उसके करीब आप बैठेंगे ना तो वो आग अगर आपको जलाती नहीं ना तो उसके अंगारे जो है वो बारीक बारीक उड़कर आपकी कमीज में छेद कर देंगे। अगर आप अतर वाली दुकान के पास बैठे हैं, ना भी खरीदें अतर, लेकिन आपको उस दुकान के दरवाजे या खिड़की से खुशबू मिलेगी। मैं डॉक्टर अब्दुल अजीज यहाँ 40 साल पहले थे, जाहिद खान है उनका नाम।
1: जी साहब आप तीसरा लफ्ज भी कहते होते, आप गंदगी में बैठेंगे तो गंदगी आप पर पड़ेगी।
2: तो वही तो ना, वो मिसाल वो आग वाली दी है ना कि आग जो है वो सुराख कर देगी कमीज आपके अंदर। तो ये चीजें अब खत्म हो रही हैं और हो गई हैं और हो जाएंगी, अब नई नस्ल तीसरी चौथी जवान हो चुकी है। आप बाद औकात कहते हैं ना, वजाहत सुन लो कि जी नौजवान बाहर नहीं निकलते, डेमोस्ट्रेशन नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, फला नहीं करते। आपने यहाँ पर रोड के ऊपर लड़ाइयां नहीं की, बताए मुझे, उन्होंने देखी नहीं, पढ़ी नहीं, सुनी नहीं अखबारात में, रेडियो।
1: तो अजी साहब कानून बन गए ना, देखें बच्चे ना समझ होते हैं, बच्चे सबके बराबर होते हैं।
2: आगे आए आपके बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि ये बाबे जो हैं लड़ाइयां लेकर आया यहाँ पाकिस्तान में, आए मजदूरी करने थे। और मैं अक्सर, आज भी मेरी बात हुई है किसी से, मुझे अब याद नहीं आ रहा, मैंने उन्हें कहा है कि अगर यार मैं पाकिस्तान में होता तो मैं अपने बच्चों को उन कॉलेजों, उन यूनिवर्सिटियों में, उन आला तालीमी अदारों में मैं तालीम नहीं दिलवा सकता था जहां जिनका मयार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरह है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरह है। हमारे बच्चों को डेनमार्क ने मुफ्त तालीम दी और जेब में करोड़ डालने हैं कि जाओ जाकर बर्गर भी खाओ, बर्बल भी खाओ, शफाफ पानी भी पियो, तालीम भी दी है, फर्नीचर भी दिया है, मेरे पास एक तस्वीर है गिलगित के अंदर, मेरी छोटी छोटी मासूम बच्चियां बर्फ के मैदान के ऊपर बैठी हुई इम्तिहान दे रही है। मैं तस्वीर दिखा सकता हूं क्योंकि मुझे मेरा शौक ये है कि या तो मैं किचन में अपनी मर्जी की सब्जी फ्रूट जो भी बनानी है क्या खाना है, और दूसरा मैं कीड़ा हूँ, कीड़ा मुझे आप हैं हूं तो मैं इंसान अल्लाह का बनाया हुआ बंदा हूं, लेकिन मैं मुताले के लिहाज से मैं कीड़ा हूं पढ़ने के लिए। मेरे पास बच्चियों की तस्वीर है गिलगित।
1: जी साहब, आप तालीम की कदर करते हैं। देखें ना, जस्टिस रिटायर्ड रमदे साहब वो भी एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जंगल में। वो कहते हैं एक पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी, जब वो मुकम्मल हो जाएगी, क्लासेस शुरू हो चुके हैं, जिन बच्चों का आप जिक्र कर रहे हैं वही बच्चे जो है अब यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे। वक्त आएगा, हमारी जिंदगी में आएगा, या वो कोशिश तो कर रहे हैं।
2: आएगा, जरूर आएगा। मैं वही कह रहा हूँ, बर्फ है बिछी हुई सफेद चादर और बच्चियां सादे कपड़ों में बैठ कर अपना इम्तिहान दे रही है, और वो वहाँ पर क्यों नहीं स्कूल।
1: हाँ जी साहब, आप देखे ना, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर कॉलेज है, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज है, तालीम आपकी सारी आपको मुफ्त है, अस्पताल में आपको सारी सहूलतें मिलती हैं, जो बादशाह को भी मिलती हैं वो आप मजदूर को भी मिलती हैं। तो हाजी साहब, इन चीज़ों की हमें कदर करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हम जिन जिन ममालिक से आए वहाँ जाकर ये बातें करनी चाहिए। वहाँ जो अच्छी चीज़ें, वहाँ की अच्छी बातें यहाँ भी करनी चाहिए।
2: राजा साहब, उसकी मिसाल ऐसे है, आप कितनी बातें दूं, कितने बताऊं। मुझे ये 30 साल पहले जो घर मिला ना, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड। तो मैंने अपने बच्चे को कहा, बेटा ये बोर्ड किस लिए लगा हुआ है? कहने लगे, ये बोर्ड लिखा हुआ है कि 8 बजे के बाद यहाँ आप फुटबॉल का जो थप्पा है नीचे फेंक कर उसका शोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरे लोग जो है वो आराम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, प्रोग्राम देख रहे होते हैं, या किसी किताब में मशगूल होते हैं। तो बोर्ड लगा हुआ यहाँ पर, मुझे ये 35 साल हो गए इस घर के अंदर, इस जगह। जो लोग अपने मुल्क की नस्ल को साइंसदान राकेट पर बिठा कर चांद पे भेजना चाहते हैं, वो अपने मुल्क की नर्सरी को इब्तदा से, शुरू से, बार नहर से ऐसी तरबियत देते हैं। आप सुबह निकले इशारे के पास, टीचर उनका 5 साल के बच्चे को लेकर खड़ा हुआ है, 8-10 बच्चे हैं, तो वो कहता है कि ये लाल रोशनी आपके दिमाग के अंदर ऐसे बैठ जाए कि जैसे कंप्यूटर में बैठती है। आपने नहीं जाना, जब ग्रीन होगी, सबज होगी, तो फिर चलना है आपने। वो 4-5 दफा ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड। मैं खड़ा होके देखता हूँ, मेरे पास तस्वीरें भी बनी हुई हैं, कि उनको वो उनके दिमाग के अंदर हिफज करा देते हैं कि सुरख बत्ती क्रॉस नहीं करनी। तो हम क्या करते हैं, लाल बत्ती से जिग जैग बनाकर गाड़ी निकाल लेते हैं, मोटरसाइकिल निकाल लेते हैं। कितने नौजवान मर गए हैं एक्सीडेंट के अंदर, कितने ही नौजवान। ये आदतें शुरू से बच्चों के अंदर दिमाग में डाल दी जाए ना, तो बिल्कुल बच्चे जो हैं उसके ऊपर अमल करते हैं। मैं केला खाकर ना छिलका, मैं अपनी बात करता हूँ, किसी की इसलिए नहीं कि कोई नाराज हो जाएगा, मैं छिलका सड़क पे फेंक देता हूँ, बूढ़ा आदमी ताके फिसले और गिरे और मैं हंसूं और उसकी वीडियो बनाऊं। पाकिस्तान में ऐसा ही तो होता है। मैंने देखा एक बच्चा 5 साल का चिंगम मुंह से निकाल कर, तो वो डस्टबिन ढूंढ रहा था, डस्टबिन ढूंढ रहा था कि मैंने ये चिंगम चबा दी है, अब इसको मैंने सड़क पे नहीं फेंकना, मैंने डस्टबिन में फेंकना है। ये मुल्कों की तरक्की का राज, अपने बच्चे को बारनहैफ से साइंसदान बनाने के लिए और चांद पर जाकर दूरबीन लगाने के लिए तैयार करते हैं। हम क्या करते हैं कि किसी ने प्लेन पकड़ना है, एम्बुलेंस आ रही है, और जनाब 20 गाड़ियां दाएं, 20 बाएं, 20 आगे, 20 पीछे, पूरी सड़क खाली उसके लिए करा लेते हैं कि भी वो जो है जा रहा है गवर्नर हाउस, अपने दफ्तर जा रहा है। तो फिर तरक्की कैसे होगी? यहाँ हमें सीखना चाहिए। मुझे जब लोग मिलते हैं ना, बाज आदमी कहते हैं कि यार अगर 56 ईयर हैज बीन स्पेंड हेयर, यहाँ आपने गुजारे हैं 56 साल, तो आपने अभी भी कुछ नहीं सीखा। यार पैसा दौलत भी कमाओ, काम भी करो, आलीशान मकान भी बनाओ, प्लाजे भी बनाओ। 320 के उसके नसर मलक की रेडियो की खबर मेरे पास है, दुकानें हैं, बिजनेस है, कारोबार है, रोटी कमा रहे हैं, अच्छी बात है, कोई نصر ملک نے ریڈیو پر یہ خبر نشر کی تھی 320 ہمارے بندوں کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دیں، ان کو بھی سائنسدان بنائیں۔ ایک لڑکا آیا ابھی میری بات ہوئی گروسری کی دکان پہ، اس نے کسی ایجنٹ سے نہیں کہا، اس نے اپنی سی وی لگائی تو اس کو مالٹا میں، راجہ گفور صاحب مالٹا نے انٹرنیٹ کے اوپر چیک کیا، انہوں نے کہا اتنی تعلیم اس کے پاس ہے، اتنا اس کا دماغ برین ہے، یہ پاکستانی بچہ ہے۔ انہوں نے اس سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ اسی وقت اسلام آباد جاؤ اور ویزا لو۔ ہم اس کو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سپانسر ہیں اس لڑکے کے، ہم نے اس کو پاکستان سے اپنے ملک میں لانا ہے۔ وہ گیا، انہوں نے کہا ہاں تمہاری تصویر، تمہارے آپ پوری تعلیم یہ پڑھی ہے، ہم آپ کو ویزا دیتے ہیں۔ ٹکٹ بھیجا، وہ آ گیا۔ اب جب آ گیا یہاں پر، اس کی 1,00,000 نوکری ہے، مانیں گے آپ؟ مکان اس سے پہلے اس کی بیوی بچوں کے لیے دیا ہوا تھا، بنایا ہوا تھا، میری ملاقات ہوئی ہے چند دن پہلے۔
1: تو حاجی صاحب، علم کی قدر کی جاتی ہے نا، ہر دور میں علم کی قدر ہوئی ہے۔
2: انفارمیشن لوگوں سے شیئر کرتے رہیں گے، بس ایک ہی گزارش ہے، سکندر ملک کہتا ہے کہ میں عاجز رہ کر یہاں تک آیا ہوں، اپنے بچوں کو عاجزی سکھائیں، کسی کا گریبان نہ پکڑے، کسی کو ڈرائے نہ، دھمکائے نہ، اور دعوت دے کر گھر بلا کر اس کو ماں تیری، بہن تیری، اور تیری
1: حاجی صاحب آپ نے مطالبہ کیا اور بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ سفیر محترم کی 2 سال نوکری بڑھائی جائے، یہ آپ کو خیال کیسے آیا؟
2: یہ جناب سب سے پہلے آئیڈیا اور خیال اور اس طرف توجہ جو مبذول کرائی ہے، یہ جناب راشد علی صاحب نے جو بہت بہترین زبردست، انہوں نے جو ہماری پرتکلف ضیافت کی ہے کولمبیا ریسٹورینٹ میں، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے سب سے پہلے، اور اچھی بات ہم ہر جگہ سے لیتے ہیں۔ وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ میری تنظیم، میرے دوست، اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میرے بچے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، میں انہیں بھی کہوں کہ یہ موجودہ سفیر، ابھی یار دیکھیں میں کون ہوں، میں نے تو یہاں کے فرش صاف کیے، جرمنی میں میں نے 2 مہینے پلیٹیں صاف کی، تو مجھے امبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلم یار تو آ کے ساتھ نہ، کبھی چاہ بھی نہیں پیندا ہے، ہمیں مجھے چائے کی دعوت دے رہے تھے۔ یہ جو ابھی 2026-14 اگست کو، تو میں سائیکل پہ جاؤں گا، میں نے کہا میں تھک جاؤں گا، بچوں کے پاس تمام سب کے پاس گاڑیاں ہیں، ایسا آدمی آج تک یہاں نہیں آیا امبیسڈر، میں آپ کو بتاؤں۔ لیکن مخالفت فرشتوں کے بھی ہم کرنے والے ہیں، مخالفت کرنی ہے نا تو اس کی کمزوری ایک پکڑ لیں گے، کوئی پکڑ لیں گے، یار بندے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، آدم کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی تھی جنت میں، کہا تھا اس درخت سے نہیں کھانا، تو ان کو اسی لیے زمین پر اللہ نے اتارا۔ ہمارا اول والد، قرآن کہتا ہے کہ تمہاری تمام انسانیت کا اول باپ آدم علیہ السلام ہے، وہاں سے اللہ نے ایک آدمی۔
1: بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ نے بڑی قیمتی معلومات دی ہیں، اب ہمیں ٹائم اجازت نہیں دے رہا، اگلے مہمان جو ہمارے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ۔ حاجی صاحب
2: آخری 2 منٹ چلیں جی، وہ بھی آپ
1: چلیں۔ حاجی صاحب آپ کہہ لیں کلوز کر لیں۔
2: نہیں بس میں یہی بات کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو جس نے تعلیم دے دی نا، دولت چوری ہو سکتی ہے، دولت پکڑی جا سکتی ہے، دولت برآمد کی جا سکتی ہے، کہیں بھی چھپائی ہو، تعلیم چوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ حافظ۔
1: سامعین ناظرین، یہ تھے حاجی اسلم مہر صاحب، جو کہ آپ کو قیمتی معلومات دے رہے تھے، اپنی زندگی کا تجربہ بیان کر رہے تھے۔ سامعین، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اپنی رائے دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر۔
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے، تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا، دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज का

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामान नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं। समय बहुत सारी खबरें होती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं, हम आपसे शेयर करते रहते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्हें इस साल सितारा इम्तियाज़ मिला। ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशी की बात है, डेनमार्क के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। इस पर खुल खुला कर बात करेंगे कि ये कैसे मिलता है, किस तरह मिलता है, इसका तरीकाकार क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि टाउन हॉल में क्या हो रहा है, टाउन हॉल की पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, सियासतदान क्या कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे, और जितना हमारी लोकल बातें हैं उस पर भी इंशाल्लाह खुल खुला कर बात करेंगे। इस वक्त मलिक सिकंदर सदीक जो किसी तारफ के मुताज नहीं, मैंने छोटी सी तमीज बांधी है। मलिक सिकंदर, आपको एक बार फिर अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जनाब राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, अपने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम।
1: वालेकुम सलाम सिकंदर, आपको तो इस साल सितारा इम्तियाज़ मिला और उसके बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का प्रोग्राम था, सफ़ीर मोहतरम वहाँ भी तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने वहाँ भी आपको मुबारकबाद दी। लेकिन ये बातें जानने से पहले हम आपसे पूछेंगे, ये पार्लियामेंट खुल गई है, कोपेनहेगन जो पार्लियामेंट है उसका सेशन भी हुआ, तो हमारे नाज़रीन के साथ कोई इन्फॉर्मेशन तो शेयर करें।
2: जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अब जुलाई के बाद अगस्त में जो कोपेनहेगन असेंबली है वो दोबारा से उसमें काम शुरू हो जाता है, और हाल में अभी 20 अगस्त के दिन हमारी पहली असेंबली की मीटिंग थी, उससे पहले हमारी कमेटीज की मीटिंग भी रही है। तो बहरहाल पहली जो मीटिंग थी वो थी अभी 20 अगस्त को, जिसमें मैंने शिरकत की एज अ मेंबर ऑफ कोपेनहेगन असेंबली, और वहां पे बहुत सारी हाल में 33 केसेस थे, पॉइंट्स थे, बिल थे जिनको हमने देखना था, और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं समझता हूँ कि बताता है कि जो इस वक्त सियासी माहौल है डेनमार्क का, हाँ वो पार्लियामेंट नेशनल असेंबली का हो या वो कोपेनहेगन असेंबली का हो या वो बकाया जो टाउन हॉल्स हैं उनमें हो, तो एक तो मुसलमानों के हवाले से एक लहर जो है, जो एक सख्ती की लहर जो है जो चल रही है, वो हमने कोपेनहेगन असेंबली की जो मीटिंग थी उसमें भी उसको पाया। उसमें सबसे पहली बात ये है कि अभी मैं कुछ ही देर में एक क्लिप लगाने जा रहा हूँ उस मीटिंग का, कि अभी भी इनकी कोशिश ये है, आपको पता है कि इन्होंने कोपेनहेगन कम्यून के जितने भी लोकेल हैं, जितने भी उनकी जगह हैं, उसमें उन्होंने जिससे कहते हैं कि मर्द और औरत इकट्ठे जिसमें नहीं बैठे, तो उसको उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया है, जिस वजह से अब स्विमिंग जो है, जब ऐसी तंजीमें होती हैं जो कम्यून के स्विमहल इस्तेमाल करती हैं जिसमें सिर्फ लेडीज होती हैं, उसको इन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया है। इसी तरह आपको पता है कि जो ईद की नमाज पढ़ते थे हम पहले कम्यून के लोकेला में, उसको उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया कि भी मर्द औरतें जो है वो सेपरेट होती हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ बड़ी एक मुनाफिकीनी है, आप समझ रहे हैं, मुनाफकत है। इसमें मैं भी बाद में आऊंगा कि क्यों है ये। तो इसके ऊपर बकायदा आज चौथी बार हमारा जो सेशन हुआ है, तो फिर उसमें डेनिश पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने इस इशू को रेज किया, और वहां पे आप यकीन करें कि मुझे इतना अफसोस होता है, इतना अफसोस होता है कि हमेशा ये होता है डेनिश सोसाइटी में, आप देखें ये बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अपने लेडीज के अपने ग्रुप होते हैं और जिसमें मर्दों की अपनी एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाया जाता है। और मैंने वहां पे बड़ी एक जो मिगल प्यान है डेनिश पीपल्स पार्टी का, खस्तान प्यूलो है पीपल्स पार्टी का, जो एन बे वाटर है लिबरल अलायंस की, सीने प्यूवेल है विंसवा पार्टी की, इन सब ये एक तरफ सारे तो मैं समझता हूँ एक इनका जो रवैया था, जो इनकी जो पॉइंट्स थे वो एक इस्लामोफोबिक और एक खतरनाक किस्म की हमारी जमहूरियत के लिए उनके पॉइंट्स थे, ये मेरी एक साथी राय है। और ایک طرف اور بقایا سارے چپ، لیفٹ ونگ پارٹیز میں سب چپ، جن کو آپ اکثر ووٹ دیتے ہیں سب چپ. یہ مسلمان، یہ ان کو یہ کیا جائے وہ کیا جائے، یہ کھوینے ہونا چھوکنے ہیں، نیگیٹو سوشل کنٹرول ہے. تو وہاں پہ میں نے ایک سوال اٹھایا جس کا بھی میں کلپ لگاؤں گا، ابھی تھوڑی دیر میں لگ رہا ہے. میں نے ان سے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو تنظیمیں ہیں جو سوئے محل لیتی ہیں اور سوئے محل کے اندر جو جو گروپ ہیں جس میں صرف لیڈیز ہوتی ہیں اس میں وہ کہتے ہیں مرد نہیں اب آ سکتے، یہ سوئمنگ کرتی ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان عورتیں کرتی ہیں، یہ پینے ہونا چھوکنے ہیں. تو میں نے ان سے یہ پوچھا، یہ بڑا نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے، اور میں نے ان سے پوچھا آپ جتنے بھی رائٹ ونگ پہ ہیں جو مسلمانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ صرف پینے ہونا چھوکنے اور صرف عورتوں کے ساتھ بربریت تب ہے جب یہ کوپن ہیگن کمیون کی جو ڈسٹنکشن ہے اور کوپن ہیگن کمیون کی جو لوکیل ہیں، جو رومز ہیں، فیسلٹیز ہیں، ان میں ہوتا ہے، تب یہ کھوینے ہونا چھوکنے ہیں؟ یا یہ چیز کہ مرد عورت اکٹھے نہیں ہوتے، سیپریٹ ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ میں کھوینے ہونا چھوکنے ہیں؟ یہ دیکھیے سوال آپ لوگ میں پھر ذرا سننے والے ہیں، ان کو دہرا رہا ہوں. میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کے ساتھ بربریت ہے تو یہ اس کو اسلامک ٹریڈیشن سے اس کو ختم کیا جائے، تو میں نے سوال یہ کیا جب یہ کوپن ہیگن کمیون کی فیسلٹیز میں ہوتی ہیں چیز کہ عورت اور مرد سیپریٹ ہوتے ہیں، تو کیا یہ اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے اوپر بربریت ہے کہ یہ کمیون کی فیسلٹیز میں ہو رہی ہے، یا یہ اپنے آپ میں کہ عورت اور مرد سیپریٹ ہے، یہ اپنے آپ میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کے اوپر بربریت ہے؟ یہ میں نے سوال کیا اور کسی سے جواب نہ دیا گیا ہو، کہ کوئی جواب نہ دے. پھر میں نے دوسری بار کیا، پھر تیسری بار جو میں نے کیا، میں نے کہا میں اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوپن ہیگن کمیون کی فیسلٹیز کے حوالے سے، مطلب کمیونسٹک سیل اور سوئے محل کے حوالے سے بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر مرد عورت جو ہے وہ سیپریٹ بیٹھتے ہیں کسی پروگرام میں سوئمنگ میں مسلمانوں کی، تو آپ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو یہودیوں کا سینگاگ ہے خشتیل کل میں، وہاں پہ جب مرد عورتیں سیپریٹ بیٹھتی ہیں تو کیا اس پہ آپ کنڈیم کرتے ہیں؟ کیا ادھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عورتوں کے اوپر بربریت ہے؟ آپ یقین کریں ایسی خاموشی چھا گئی پورے اسمبلی میں، یہ دیکھنے والی تھی، سارے چپ. میں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اسلامک ٹریڈیشنز جہاں پہ مرد عورت سیپریٹ ہوتے ہیں جمناسٹک کرتے ہوئے یا سوئمنگ کرتے ہوئے یا ویسے بیٹھتے ہوئے، ان کے اوپر آپ نے پابندی تو لگا دی ہے، تو پھر آپ اپنے منہ سے یہ کہیں کہ جو سینگاگ میں یہودیوں کا جو ٹیمپل ہے یہاں پہ، وہاں پہ جب وہ عورتوں کو پیچھے بٹھاتے ہیں اور سیپریٹ بٹھاتے ہیں اور مردوں کو آگے بٹھاتے ہیں، ادھر بھی کہیں کہ وہ بھی پھر بربریت کر رہے ہیں اپنی عورتوں پہ؟ یقین کریں میں نے جب یہ سوال کیا، پہلے تو انہوں نے جواب نہ دیا، جب میں نے یہ بات کی خاموشی، کوئی آگے جواب نہیں دے سکتا، ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ کہے. میں نے کہا یہ اس لیے آپ لوگ منافقت کر رہے ہو، اگر آپ لوگوں کے دل میں یہ بات ہوتی کہ مرد عورت جو ہے وہ ایک ریلیجس پرپس کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہوتے، تو پھر آپ ہر ریلیجن کو کہیں کہ یہودی بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے، مسلمان بھی کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. نہیں، آپ لوگ صرف مسلمانوں کو کہتے ہو، آپ لوگ صرف جو ہے ہمارے اوپر جو آپ لوگ قانون بناتے ہو، اس لیے یہ آپ کی منافقت ہے، اور یہ آپ لوگ مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں ہنٹ کر رہے ہو، ڈسٹرب کر رہے ہو، خراب کر رہے ہو. آپ یقین کریں وہاں خاموشی چھا گئی. کیوں؟ کیونکہ مجال ہے کسی کی، ہے کسی کی مجال جو یہاں کی جو یہودی مائنورٹی ہے ان کے خلاف کوئی بات کرے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ یہ بڑی بین پر وہاں پہ کسی نے یہ بات کی ہوگی، اور جس وجہ سے ان کے پاس آرگومنٹ ہی نہیں تھا. آپ یقین کریں میں ایک طرف اور یہ سارے دوسری طرف، اور جو بقایا ہمارے نادان دوست ہیں اینس لسٹ میں، غاری خیل منسٹر میں، وہ تو کچھ بولے ہی نہیں نا، وہ تو چپ رہے بالکل، ان کے تو منہ کو تالے لگ گئے. تو وہاں پہ ہم فری کون ہی بول رہے تھے، میں بول رہا تھا. تو یہ بڑی، آپ دیکھیں نا کہ یہ اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے. تو اگر آپ یہ بات غلط ہے تو ادھر بھی کہیں غلط ہے، ادھر تو کسی نے نہیں کہا. تو اسی طرح اس پہ بھی بحث ہوئی. اس کے بعد ہمارا ایک بہت بہت بڑا ایشو है जिसके ऊपर मैंने भी बाकायदा बात की कुछ अरसा पहले, हुई है कि कोपेनहेगन के छिंग प्या के इलाके में, वहां पे कोई पुलिस ने किसी यंग बंदे को गाड़ी में रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुका, पर वो उसने पुलिस के कहने पे इतना नहीं रुका तो उसने क्या किया, उसने गाड़ी भगाने की कोशिश की। तो वो वीडियो पे है, वीडियो नजर आती है कि एक पुलिस वाला जो है वो गाड़ी के पीछे खड़े हो गए, यानी कि वो गाड़ी के आगे नहीं खड़ा, गाड़ी उससे दूर भाग गई, वो गाड़ी के बैक साइड पे खड़े होके उसने फायर कर दिए, उसने मुखालबत को 6 फायर किए और जो बंदा था वो जख्मी हो गया। और अब वो केस जो है वो पुलिस के एक और डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे वो ये देखते हैं कि पुलिस वालों ने सही हरकत की है या गलत किया है, उनका एक्शन सही था या गलत था, उसमें जो है ये अभी इस पर चढ़ी है। तो वहां पे यंग लोग हैं छिंग पे आके उन्होंने वहां पर दंगे फसाद किए हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो आपने उसने गोली क्यों चलाई है, तभी गाड़ी से फरार हो रहा था, ये भाग रहा था, ये कोई उस पुलिस वाले को अपने जान का खतरा नहीं था, फिर भी इसने मैगजीन चला के उसको जख्मी कर दिया, तो ये ज्यादती है वगैरह। इसके ऊपर जो विंस्ता पार्टी है जिसको कभी आपके हमारी कम्युनिटी के लोग सपोर्ट करते थे, ये विंस्ता पार्टी जो है इन्होंने क्या सजेशन दिया, बिल पेश किया के छिंगप्या के अंदर जो यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर कर्फ्यू लगाया जाए, वो एक टाइम के बाद जो है वो घर से ना निकल सके। अंदाजा लगाएं कि डेनमार्क में ये भी हालात होने थे कि कोपेनहेगन असेंबली के अंदर विंस्ता पार्टी ये क्या कहते हैं बिल पेश कर दी है कि क्या कुछ एक मखसूस टाइम के बाद जो यंगस्टर्स हैं छिंगप्या में जो रहते हैं उनको ऊपर कर्फ्यू लगाया जाए, वो घर से ना निकल सके। मतलब इतनी तो
1: क्या वो डेनमार्क के शहरी नहीं है,
2: मैं कहता हूँ कि इतनी बेहूदगी। तो वहां पे बात हुई, बहस हुई, और मैंने इनसे कहा तो फिर अब अगली बार क्या होगा, जब नवंबर पे अगली बार फसाद होंगे तो फिर उधर भी आप कर्फ्यू लगा देंगे और फिर आपकी और लगा देंगे, फिर इस तरह आप सब यंगस्टर्स को जो है रखेंगे अंदर जेल में रखेंगे, आप उनको एक किसी पिंजरे में रखेंगे, जानवर की तरह रखेंगे। उसके बाद मैंने उसे कहा कि आप एक क्रिएट कर दें ए एंड बी टीम के कुछ लोग जो है यंगस्टर्स जो है वो किसी एरिया में रहते होंगे, वो बाहर जा सकते होंगे, और जो उस एरिया में यंगस्टर रहते हैं उनको आप कर्फ्यू जो है पुलिस उनको घर फिर लेके जाएगी, आप घर जाए, आप बाहर नहीं जा सकते। अगर वो मिल के दोनों की हाउस प्लेस गए हुए हैं और वहां पे वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्या एक बच्चा जो छिंगप्या में रहता है वो अब दूसरों को कहेगा लो भैया मैं घर जा रहा हूँ, मुझे अब कर्फ्यू है, मैं बाहर छिंगप्या में नहीं रह सकता। और अगर वो बाहर से छिंगप्या के बाहर है और वो घर आ रहा होता है, वो छिंगप्या से गुजर के अपने घर जाना है कर्फ्यू के टाइम के बाद, तो क्या पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी? पर ये इतनी बेहूदगी और इतना पागलपन और इतनी हेटनेस का मुजाहरा है कि मैं कहता हूँ कि वहां पे भी फिर हमारी बहस हुई, कहता लंबी चौड़ी बहस हुई, और वहां पे भी मैंने उनसे कहा कि ये आप लोग ज्यादती कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और आप
1: तो विंस्ता पार्टी की कौन सी पार्टियां उनकी हमायत कर रही थी?
2: वहां पे कुछ पार्टी हमायत कर रही थी, कुछ काफी पार्टी हमायत नहीं भी कर रही थी, लेकिन उसपे मेरा ख्याल से अभी मेरे जेहन में निकल गया कि एग्जैक्ट कौन सी पार्टी जो है वो हमायत में थी।
1: तो जब गैर मुल्की नसाद जो जिनको वोट का जमहूरी हक मिला हुआ है तो जब इन पार्टियों को वोट देते हैं तो वोटर सपोर्टर सोचते नहीं होंगे?
2: भाई देखें, मुझे यही तो अफसोस होता है कि आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ मार रहे हैं, खुद जो है आप ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो या तो एक तो आपके खिलाफ बात करते हैं या आपके खिलाफ बात हो रही हो तो आपके हक में बोलते ही नहीं है, चुप बैठे रहते हैं। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि ये आप देख लें, इसी दिनों में इंगा स्टॉप आ जाए, उसने भी बकायदा एक क्या कहते हैं प्रपोजल पेश किया है कौमी असम्बली में, जहाँ पे वो ये बात करती है कि आज के बाद जो बच्चे हैं मुसलमान बच्चे हैं स्कूलों में उनको रोजा रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उसने को 15 पॉइंट दिए हैं, उसमें एक पॉइंट ये था, दूसरा उसने पॉइंट ये दिया है कि जो जैकेटें होती हैं तून या का वो इनको पहनने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ मेरा खूबसूरत अच्छा मुल्क डेनमार्क किस जगह किस तरफ ये लोग सियासतदान लेके जा रहे हैं, ये बदबख्त और कमबख्त सियासतदान किस तरफ लेके जा रहे हैं? क्या हम जमहूरियत पसंद नहीं है? क्या जमहूरी मुल्क डेनमार्क नहीं है? उसमें आप देखें, मैंने इनसे ये सवाल किया फेसबुक पे, मैंने ये लिखा, मैंने इनसे कहा आप बताएं कि आप किस तरह लोगों को रोजा रखने से کیا کہتے ہیں روکیں گے؟ کیا کوئی اسپیشل پولیس ہوگی، شرطہ ہوگی کوئی اسکولوں میں جو بچوں کو بائی فورس ان کے منہ میں کھانا ڈالے گی؟ مطلب یہ کون سی یہ ضلالت ہے، یہ کیا، یہ کس طرف آپ ڈنمارک کو لے کے جا رہے ہیں؟ لیکن میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ آپ خود بھی، آپ کا اپنا بھی ایک اس میں ہمارا بلیم ہے، کیونکہ بلیم میں کرتا ہوں اپنے لوگوں کو، کیونکہ آپ ووٹ دیں، ووٹ خاص کریں، جو آپ کے لیے بولتے ہیں ان کی سپورٹ کریں، وہ ٹرینڈ چھوڑیں جو پہلے بھی آپ ان پارٹیوں کے ممبر تھے آتا کہ اور کیا کہتے ہیں وہ آپ کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن آپ اپنی سیٹ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو سپورٹ کریں، اس کو کریں، چھوڑیں ان چیزوں کو، جو پارٹیز آپ کے حق میں بول رہی ہیں، جو آپ کے حق میں ہیں پارٹیز، ان کو آپ سپورٹ کریں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے ڈنمارک میں اگر کوئی پارٹی ہے جو پوٹینشیل رکھتی ہے آپ کے بچوں کے لیے بول، آپ کے بچوں کے حق میں بولنے کے لیے، آپ کے حق میں بولنے کے لیے، تو فری کون ہے آپ؟ میرا یہ اوپن چیلنج ہے، مجھے آپ بتا دیں کہ کوئی پارٹی ایسی ہے یہاں پہ جو آپ کے لیے اس طرح بولتی ہو جو فری کون بولتی ہے. ہم پارلیمنٹ میں تھے، ہم تب بھی بولتے تھے، اب میں کوپن ہیگن اسمبلی کا ممبر ہوں، وہاں بھی میں بولتا ہوں. مجھے دکھا دیں اگر وہ کوئی پارٹی آپ کے حق میں اس طرح بولتی ہے. ابھی تو آپ نے دیکھا ہے کہ گاڑی کھیل ونستا نے، جس کو آپ نے بھرپور ووٹ دیا ہے اس بار، ریکھیل ونستا نے کچھ دن پہلے تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو یہ جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ آج کے بعد جب آپ نے پارلیمنٹ، جب آپ نے لینا ہے، آپ نے جب پاسپورٹ لینا ہے، تو ابھی بہت ساری شرطیں ہیں، شرطیں جب آپ ان کو فلفل کر لیں اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ مولانا حافظ ادریس صاحب جو ہیں، انہوں نے ساری ریکوائرمنٹس پوری کر لی تھی قانون کی، اس کے باوجود ان کو پاسپورٹ نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ کچھ رائٹ ونگ پارٹیز انکلوڈنگ اب سوشل ڈیموکریٹ نے یہ کہا ہے کہ اب ہم صرف جو نیوٹرل ریکوائرمنٹس ہیں اسے نہیں دیکھیں گے، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بندے کا ذہن کیسا ہے. اندازہ لگائیں کہ بندے کا ذہن کیسا ہے. تو اس نے فیس بک پہ پہلے کبھی کوئی ایسی چیز جو ہمیں پسند نہیں ہے، جو ہم سمجھتے ہیں غلط ہے، تو اس لیے ہم ان کو دیں گے. اس رابطے کے انہوں نے مولانا ادریس صاحب ہے، حافظ ادریس صاحب ہے، انہوں نے ہر وہ بل کے اوپر نام تھا ان کا، ان کو ملنا تھا، انہوں نے ان کا نام بل سے ہٹا دیا اور نہیں دیا کہ بھائی یہ جو یہ امام ہے اور یہ ان کی جو باتیں ہمیں نہیں پسند تو ہم نہیں دیتے. یہ کتنی بڑی، جس طرح کے نام،
1: لیکن سکندر چونکہ یہ جمہوری ملک ہے، ان کی بڑی تنظیم ہے، تو تنظیم کو احتجاج بھی ریکارڈ کرانا چاہیے تھا اپنا.
2: جی جی جی جی، میں آپ کو بتاؤں نا، اس میں یہ ساری صرف جو ریسسٹ اور جو ان وہاں تک خیریس پارٹیز تھی، یہ وہ پارٹیز جو ہے اس چیز کو سپورٹ کرتی تھی. پھر سوشل ڈیموکریٹ نے اس کو سپورٹ کیا، اور اب کچھ دن پہلے جو غاری کھیل ونستا ہے، انہوں نے بھی اعلان کیا کہ ہم بھی اسے سپورٹ کرتے ہیں، ہم بھی اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی فورنر لیتا ہے پاسپورٹ کی اپلیکیشن دیتا ہے تو 10-11 سال بعد پھر وہ سارے ٹیسٹ دیتا ہے، پھر وہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کرتا ہے، اس کے بعد پھر ہم اس کا ذہن دیکھیں گے کہ یہ کیسی ذہنیت کا مالک ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ تھاٹ پولیس، مطلب ذہنیت کو چیک کرنے کے لیے ابھی کہ پولیس بٹھائیں گے کہ آپ. اچھا پھر جو سیاستدان ہیں مسلمانوں کے خلاف ہیں اکثر ڈینش پارلیمنٹ میں، تو اس میں کیا یہ پھر اس کے خلاف بولیں گے کیا؟ اس کے پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے فیس بک پہ 10 سال پہلے یہ لکھا ہم آپ کو پاسپورٹ نہیں دیتے، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ تو اب خیل ونستا نے بھی اس پہ ہمیں حامل آ دیا اور کہا کہ ہم بھی اب اس کے بعد
1: اپنی آواز اٹھاتے ہیں سکندر. اور ووٹ تو بہت زیادہ ہیں کوپن ہیگن کمیون میں بھی، پورے ڈنمارک میں غیر ملکیوں کے ووٹ ہیں. جب انہیں اپنے حقوق کا اس جمہوری ملک میں پتہ ہی نہیں، ووٹ دینا ان کا جمہوری حق ہوتا ہے، جب یہ ووٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے، تو ووٹ دینے سے پہلے یہ سوچتے کیوں نہیں ہیں لوگ؟
2: کیونکہ اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، کچھ گندے انڈے ہیں، کچھ میر جعفر میر صادق ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ خود یہ کیٹیگری ہے، دوسری کیٹیگری وہ ہوتے ہیں جن جو اپنے وہ مثال طور پہ ممبر ہیں پارٹیز کے، تو وہ کیا کہیں؟ وہ پھر اپنے پارٹی کا دفاع کرتے ہیں، कुछ लोगों को अपनी सीट का इंटरेस्ट होता है, इस तरह डिफरेंट रीजन होती है। ये जरूरी नहीं कि हर किसी की बहुत भी रीजन है साथ देने की उनका, लेकिन सबकी अपनी अपनी रीजन होती है। और जब तक आप अपने जात से हट के मुश्तरका तौर पर आप ये नहीं देखेंगे कि एज अ कम्युनिटी, एज इस मुल्क के शहरी के तौर पर इस मुल्क के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए क्या बेहतर है, तब तक ऐसे ही डिवाइड रूल होता रहेगा। आप जो है अपने छोटे मफाद के लिए अपना बड़ा मफाद जो है उसको नुकसान पहुंचाएंगे।
1: बहुत शुक्रिया सिकंदर। ये हाल ही में जो है 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम्स हुए, इस पर हम बाद में आते हैं, ये मेडल की तरफ आते हैं, ये मेडल कैसे मिलते हैं। उससे पहले जो मुख्तलिफ प्रोग्राम हुए, सब जगहों पे प्रोग्राम हुए, बड़ा प्रोग्राम था जो पाकिस्तान एम्बेसी का जो ऑफिशियल प्रोग्राम था, इसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और सब ने जो है, हमारी डेनिश सफीर भी वहाँ मौजूद थी, तो आपने देखा कि वहाँ कितना खुशगवार माहौल था, इस पर आप क्या रोशनी डालेंगे।
2: देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि इस वक्त जो एम्बेसी का जो अमला है और उनको जो उनकी जो सरबराही कर रहे हैं एम्बेसडर साहब, ये मैं समझता हूँ कि डेनमार्क के पाकिस्तानी जितने भी यहाँ पे बसते हैं उनके लिए बड़ी खुशनसीबी है कि इस जैसे एम्बेसडर जो है वो यहाँ पे आए हैं और वो बेहतरीन काम कर रहे हैं पाकिस्तान और डेनमार्क के रिलेशंस के हवाले से। उनकी ओपन डोर पॉलिसी जो है वो सबके सामने है, वो हर जगह जहां भी कोई बुलाए उन्हें वहां जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, एम्बेसी के दरवाजे खुले हुए हैं। और जो 14 अगस्त के दिन जो फंक्शन हुआ है वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ है और वो इस बात की गवाही देता है कि कितने खूबसूरत और मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने 14 अगस्त की सेलिब्रेशन की है, जिसमें पहली बार ये हुआ है कि डेनिश एम्बेसडर जो पाकिस्तान में होती है, पाकिस्तान की, उन्होंने भी शिरकत की है। ये बताता है कि इस वक्त डेनमार्क और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत टाइट हैं और बहुत ये करीब आ चुके हैं। तभी उनकी एम्बेसडर यहाँ पे बैठी हुई थी और ये क्रेडिट जो है, ये एम्बेसडर साहब जो है एक्सीलेंसी शुएब सरवर साहब, ये उनको जाता है। उन्होंने 2-3 साल यहाँ रहे कि जो उन्होंने जो अपने सफारखाना जिस तरीके से चलाया है, अपने डिप्लोमेटिक अपने जो ड्यूटीज है उनको जिस तरीके से सर अंजाम दिया, ये उनकी क्या कहते हैं, ये वो फ्रूट है अब उसका जो हम देख रहे हैं। और 14 अगस्त और डेनमार्क और पाकिस्तान एम्बेसी की उस फंक्शन की बात की जाए और राजा गफूर अफजल साहेब आपकी शील्ड की बात ना की जाए तो ये भी नाइंसाफी है। मैं जनाब दिल की अताग्राहियों से, राजा साहब आपको, आप कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन हैं, आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि वहाँ पे सारी कम्युनिटी के सामने ऑफिशियली 14 अगस्त के दिन फ्लैग सेरेमनी के बाद एम्बेसडर साहब अपनी तकरीर में आपको बुलाया और आपको एज अ कम्युनिटी लीडर रेकग्नाइज किया कि आपने जो मेरे सामने तो 20 साल की आपकी ये क्या कहते हैं जद्दोजहद है, लेकिन आप 35 साल से कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज को रेकग्नाइज किया और आपको शील्ड पेश की, सबके सामने की, कम्युनिटी के सामने की, बच्चों के सामने की, माओ बहनों के सामने की, बुजुर्गों के, सारी कम्युनिटी के सामने की। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी रिकग्निशन है और आपने जो दिन रात एक करके इस कम्युनिटी की लीडरी संभाली हुई है, इस कम्युनिटी जो आपने कम्युनिटी फोरम दे के उसमें आप जो इस कम्युनिटी के लिए एक्टिविटीज करते हैं और आपकी जो ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारी तमाम पाकिस्तानी जो करता धरता सोसाइटीज हैं और तंजीमें जो हैं और जो सारी जो आपकी इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन अंडर है, मैं समझता हूँ कि एम्बेसी ने बहुत खूब बहुत सही इस चीज को रिकग्नाइज किया है आपको एज अ कम्युनिटी लीडर। आपकी जो जिनाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जो आप प्रोग्राम करते हैं उनकी 150 इयर्स की बरसी पे, उस सालगिरह पे जो है उन्होंने इस चीज को रेकग्नाइज किया है, तो इसकी मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।
1: सिकंदर, एक और बात करते चलें कि आपको सितारा इम्तियाज मिला और उसके बाद हमने देखा कि स्टेट के वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ साहब ने आपको आम भेजे, पाकिस्तान स्टेट के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने आपको आम भेजे, ये भी ज़रा बताएं उन्होंने आम क्यों भेजे आपको।
2: देखें कि उनकी उनका बड़प्पन है, आई फील वेरी ऑनर्ड कि उन्होंने ये भेजे। ये जाहिर बात है ऐसे होता है ना कि जब आम का सीजन होता है तो वो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो और जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो फिर आम जो है वो भेजते हैं। उन्होंने डिफरेंट ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स को भी भेजे, उनके जो और आप समझ लें जो जिनको वो समझते हैं कि उनको गिफ्ट देना चाहिए उनको देते हैं। उसमें एम्बेसडर्स भी होते हैं, उसमें जो हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। अभी लगाई थी मेरे ख्याल से लिथुएनिया के प्राइम मिनिस्टर साहब ने लगाई थी। तो मैं आई फील वेरी बड़ी हम्बली ये कह रहा हूँ कि आई फील वेरी ऑनर्ड और ये क्या कहते हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारी जो पाकिस्तान की क्यादत है उनका कि वो मुझे इस लायक समझते हैं कि उन्होंने मुझे ये भेजे। पिछले साल भी भेजे थे, इस बार भी भेजे हैं। आई फील वेरी हम्बल्ड, आई फील वेरी ऑनर्ड और मैं उनका दिल की अथाग्राहियों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि उन्होंने मुझे ये भेजे।
1: सिकंदर, ये सफीर मोहतरम की कामयाबी है। आगे हाजी असलम मेहर साहब बात कर रहे थे कि उनका टेन्योर जो है वो 2 साल बढ़ाया जाए। सिकंदर देखें, 14 अगस्त के हवाले से अगर 2026 की हिस्ट्री को देखा जाए, लोग तो बनाते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी ने प्रोग्राम किया एल्बर्सन में, इसी तरह जो है वो दूसरी तंजीमत ने प्रोग्राम किया, मुस्लिम लीग नवाज़ ने प्रोग्राम किया, इसी तरह जो मैंगो फेस्टिवल हुए उससे पहले जो 14 अगस्त के प्रोग्राम हुए, और उसके बाद पाकिस्तान अम्बेसी का बड़ा प्रोग्राम हुआ, इसी तरह पाकिस्तान सोसाइटी ने प्रोग्राम किया। तो ये सारा क्रेडिट जो 14 अगस्त के हवाले से आए वो सफीर मोहतरम का काम जो है हमें नज़र आता है। तो जो लोग आप डिमांड कर रहे हैं उनकी 2 साल टेन्योर और बढ़ाया जाए, आप क्या कहते हैं?
2: मैं तो समझता हूँ कि अगर ये काम हो जाए तो ये बहुत बड़ी हमारी खुशनसीबी है। मैं कल आपकी एक पोस्ट पढ़ रहा था, आपने बड़ी एक दिलचस्प पोस्ट लगाई कल, जिसमें आपने ये बता रहे थे कि पाकिस्तानी जो है वो कितने डेनमार्क में आए हैं इस पिछली दहाई में, और उसमें मैं पढ़ रहा था आपकी खबर कि उसमें 2010, 11, 12, 13, 14 यानी कि इन एम्बेसडर के आने तक 200 से 500 के दरमियान जो है पाकिस्तानी जो है वो डेनमार्क आ रहे थे। तो अचानक जो है 24 और 25 में, अचानक 24 में कोई 800 प्लस लोग आए हैं और 2025 में तकरीबन को 1500 लोग जो है वो आए हैं, कहाँ 200 और कहाँ 1500। तो मैं सोच रहा था कि यार ये देखो ये जो एम्बेसडर साहब हैं इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया और डेनमार्क और पाकिस्तान के रिलेशन इतने बेहतर हो रहे हैं कि कितने लोग 2024 और 25 में यानी कि इनके टेन्योर के दौरान जो है इतने सारे लोग आए हैं। तो ये इस चीज की गवाही देती है कि एक डेनमार्क और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिप्लोमेटिक टाइज बेहतरीन हो रहे हैं और उसका क्रेडिट इन्हें जाता है कि ये आए हैं। तो इन्होंने, क्योंकि मुझे ये भी पता, मैं अक्सर ही बात करता हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कम्युनिटी नहीं देख रही होती, जो पसे पर्दा हो रही होती है, जो मुल्कों के दरमियान हो रही होती है, जो डिप्लोमेसी के दरमियान हो रही होती है, जो एम्बेसडर्स के दरमियान हो रही होती है, वो आप नहीं देख रहे होते। कुछ चीजों का मुझे पता है, कुछ चीजों का मुझे इल्म है और मैं देख रहा होता हूँ और इन्होंने बहुत काम किया है। और इन्होंने सिर्फ ये नहीं कि वो एम्बेसडर आते हैं कहते हैं ट्रेड बढ़ाओ और बस जो एक ड्यूटीज है, नहीं, ये उससे बढ़ के जो है इन्होंने काम किया है और उससे बढ़ के इनका इंटरेस्ट और इनका फोकस रहा है सॉफ्ट डिप्लोमेसी पे, पाकिस्तान और डेनमार्क रिलेशन के ऊपर, पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं समझता हूँ कि अगर इनको 2 साल और यहाँ पे मिल जाते हैं ये भी हमारी खुशनसीबी होगी और ये हमारे लिए एज अ कम्युनिटी जो है और एज अ डेनिश पाकिस्तानी ये डेनमार्क और पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत बहुत अच्छा अच्छे साबित हो सकते हैं।
1: सिकंदर, फ्री ग्रोने पार्टी के पहले आपके साथी थे, ओखियाले हैं, बड़ा मुतर्रक हैं, बड़े पोलाइट हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं, उन्होंने 2-3 इलेक्शन लड़े और आगे भी इलेक्शन लड़ेंगे और अपना सफ़र वो जारी रखते हैं। राशिद ने कल हमारे एजाज में, आपके एजाज में एक दावत की, उसके मुतल्लिक आप क्या फरमाएंगे?
2: ये देखें,

0: बहुत ही मोहतरम एम्बेसडर साहब, जो के जो शोएब सरवर साहब से पहले एम्बेसडर थे, वो क्या कहते हैं यहाँ पे आए हुए थे, और बेसिकली उन्होंने भी कल खाना रखा हुआ था इसी टाइम पे। उनसे भी मैंने बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से मैंने उनसे माजरत की कि उसमें हम नहीं आ सकते क्योंकि राशिद साहब ने हमारे लिए ये प्रोग्राम रखा हुआ था। तो मैं राशिद साहब को यही कहूंगा कि अल्लाह पाक उनके कारोबार में, उनकी जिंदगी में, उनके जिंदगी के हर हालात में जो है रहमतें नाजिल करे, मजीद उनके कारोबार में बरकतें पैदा करे अल्लाह पाक। मेरी तो यही दुआ है और मैं उनके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे ऑनर में निकल दावत रखी।
1: सिकंदर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो अवार्ड मिलते हैं, सितारा इम्तियाज मिलता है, ये ऐसे ही मिल जाता है या आपको जो मिल गया ये वैसे ही मिल गया है?
0: देखिए, ये जो
1: इसका पूरा प्रोसीजर अगर बता सकते हैं तो।
0: देखिए, ये जो प्रेसिडेंशियल जो मेडल होता है ना, ये हाईएस्ट जो पाकिस्तान की जो रिकग्निशन है, जो मेडल्स होते हैं, जो कैटेगरी होती है मेडल्स की, ये वो हाईएस्ट कैटेगरी होती है। ये प्रेसिडेंट जो है वो देते हैं और ये स्टेट होती है वो ये फैसला करती है कि इसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, इसे कि आपने कोई ऐसी परफॉर्मेंस की हो तो तब देते हैं। एक तो ये बात होगी और दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे शायद वो नादान दोस्त या जिनको शायद इतना नहीं पता, वो ये समझते हैं कि कोई एम्बेसी जो है वो नाम दे दे तो बस मेडल मिल जाता है। ये बिल्कुल बचकाना सोच है और ये शायद उन लोगों को असल में वो कभी खुद इन फील्ड में रहे नहीं, उनका इनसे शायद कोई तल्लक जाहिर बात नहीं रहा, उनको शायद पता नहीं है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, वो एम्बेसडर साहब या एम्बेसी जो है वो मेडल दिलवा देती है। ये बिल्कुल खुराफात है, इस तरह नहीं होता। इसकी बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है, उससे आप गुजरते हैं। ये पहले आपका कोई नाम देता है या कोई जगह से एक एप्लीकेशन जाती है कि ये इसकी जो है, या वो खुद जो कमेटी जो बैठती है मेडल देने के लिए, वो देखती है कि वहां पे यहाँ पे ये लोग जो है ये एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, काफी अरसे से दे रहे हैं, या इनका कोई ऐसा काम है जो जो एक मेडल के लायक है, तो वो फिर बकायदा 8 को मीटिंग्स होती हैं। एक बकायदा एक लंबा प्रोसीजर होता है जिसमें इदारों के लोग होते हैं, जिसमें फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग होते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्ट्री के लोग होते हैं, जिसमें और एम्बेसी से रिपोर्ट जाती है, हर तरफ से जाती है, और अक्सर जिनके नाम दिए जाते हैं वो इस प्रोसेस में पहली मीटिंग में उनका नाम जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर वो दूसरी सेशन होता है, फिर तीसरा होता है, फिर इस तरह कई सेशन के बाद जाके हर इदारे की रिपोर्ट पढ़ के, एम्बेसी की रिपोर्ट पर, अगर जिस तरह हम मैं हूँ पाए रहता हूँ, यकीनन उन्होंने एम्बेसी से भी पूछा होगा, आप बताएं, वो हर आपको पता ना ये सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मांगते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो अगर उनका रिकॉर्ड सही ना हो या उनके उनकी कोई ऐसी प्रोफाइल हो तो इदारे जो है वो कहते हैं कि इसको नहीं देना, क्योंकि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मेडल होता है। ये इस तरह होता है जिस तरह यहाँ का जो किंग होता है वो आपको गजा खोज दे, या इनकी एल्फेन ऑर्डन होती है। तो इसी तरह ये पाकिस्तान का सबसे बड़े मेडल है, कैटेगरी मेडल मेडलों की। तो वहां पे बड़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि किसे दिया जाए, कैसे दिया जाए। फिर आप पहली मीटिंग से, पहली प्रोसीजर से अगर आप निकल जाए, फिर आपका नाम दूसरे प्रोसीजर में जाता है, उधर से निकल जाए, इस तरह करते करते अक्सर पहले में रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर कुछ दूसरे में हो जाते हैं, कुछ तीसरे में हो जाते हैं, इस तरह करते करते चंद लोगों को वो ये मेडल देते हैं। और जिस तरह की मैं बता रहा हूँ उसमें सारे जो पाकिस्तान के बड़े इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, कौमी इदारे हैं, जो बड़े बड़े सिक्योरिटी के वाले, उन सब से गुजरती है ये बात, तब जाके आपको मेडल मिलता है। तो ये जो अगर कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि ये एम्बेसडर के साथ अच्छे तल्लुकात हों या किसी के साथ अच्छे तल्लुकात हों तो आपको मेडल मिल जाता है, मैं समझता हूँ ये वो क्या कहते हैं चारे जो जिन लोगों को ज्यादा इल्म नहीं है इस बारे में, ये वो ही लोग जो है समझ सकते हैं। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो हर वक्त हर किसी को मेडल मिल रहे होते। पाकिस्तान, हकूमत पाकिस्तान, और मैं सिर्फ हकूमत पाकिस्तान नहीं कहूंगा, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये हकूमत नहीं देती, स्टेट आपको देती है। फिर ये जो मेडल आपको फिजिकली सदर देता है, जो जो मुल्क

0: सदर होता है, लेकिन ये मेडल स्टेट देती है, हुकूमत नहीं देती। और स्टेट का ये बहुत बड़ा ये एजाज होता है और इसपे बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स हैं। तो कुछ जो लोग जलने वाले जो होते हैं, कुछ लोग जिनको मिर्चे लगती हैं ऐसी बातों में, वो तो फिर ये कहते हैं कि वो ऐसे मिल गया, ऐसे मिल गया, ऐसे नहीं मिलता। उसके बाद आप ये देखें, उसके बाद जब आपको ये देते हैं तो वहां पे बकायदा एक आपकी साइटेशन पढ़ी जाती है, आपकी क्रेडेंशियल्स पढ़े जाते हैं, आपको क्यों दिया जा रहा है। वो बकायदा आपको एक रिटर्न में मिलता है, जहां आपको लिखते हैं रिटर्न में कि हम आपको ये मेडल इसलिए दे रहे हैं। तो उसपे मैंने कल भी इसपे बकायदा जो है इसपे थोड़ी रोशनी डाली, और वो साइटेशन जो है मैंने घर से मेरे पास पड़ी हुई है, इन्होंने क्यों दी। और उसमें जाहिर बात है मेरा जो पॉलिटिकल वर्क है पिछले 20 साल से आज तक के, मैं बड़े ऑनर और बड़ी हम्बल होके, बहुत हम्बल होके, बहुत आजिज़ी में ही मैं बात बता रहा हूँ कि मुझे बताएं और किसी ने कभी कश्मीर की जो जो इशू है वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके प्राइम मिनिस्टर के साथ बहस की हो। बता दे मुझे अगर यहाँ है कोई और, तो मैं बहुत आजिज़ी से ये बात कर रहा हूँ वहां पे। इस वजह से उन्होंने ये, जाहिर बात है मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, तो फिर वो नोट करते हैं हर इदारे, यहाँ तो मैं इसराइल के खिलाफ बोलता हूँ, उनके इदारे सारी चीज नोट कर रहे होते हैं, रिपोर्टें भेज रहे होते हैं, हमारे भी इदारे सब, हर किस्म के इदारे। ये तो एक आम चीज है, मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ इस क्या इस इशू को चला, मैंने इसको अपना कोर इशू बनाया जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर था, मैंने फॉरेन मिनिस्टर के साथ इसके ऊपर बात की, उसने मुझे जब इनकी ग्रीन डील हुई इसके साथ क्या है, क्या इसे कहते हैं इंडिया के साथ, उस पे मैंने रफर डाला। जब नरेंद्र मोदी साहब यहाँ आए थे तो पार्लियामेंट में मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या कहते हैं मेरी बड़ी तर्क कलामी हुई, वहां पे बहस हुई। और है कोई और जिसने यहाँ कभी ये किया हो, जिसने कश्मीर के इशू को, जो पाकिस्तान का कोर इशू है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, मैं तो ह्यूमन राइट्स की वजह से बोलता हूँ ना, तो आप मुझे बताएं कि किसी ने किया यहाँ पे, कभी किसी ने इस लेवल पे बात की है कश्मीर की। हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बजे बड़ी आजिज़ी से ये बात कर रहा हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने तौफीक दी कि मैंने ये की, और मैंने लगातार 3.5 साल इसको किया, कलम लिखे इसके ऊपर, और इसको मैं हाईएस्ट डेनिश पॉलिटिकल हाईएस्ट लेवल पे ले गया। कुरान पाक की बेहरमती जब होती थी यहाँ पे, क्या मैं वो पहला और वाहिद सियासतदान नहीं था जिसने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बिल पेश किया कि कुरान पाक की बेहरमती को खत्म किया जाए। है कोई और जिसने ये किया हो? है, अगर है तो मुझे बताएं। तो इस तरह बहुत सारे, और जहां कभी पासपोर्ट पे बात हुई, जब पासपोर्टों में सख्ती हो रही है कोई और आवाज जो बोल रही है, मैं जब पार्लियामेंट का मेंबर था मैं इस पे और बोलता था। और इसके अलावा मैंने हमेशा अपने काम में ये कोशिश की है कि पाकिस्तान और डेनमार्क के टाइज जो है वो बेहतर से बेहतर हों, और ये वही बात होगी, पसे पड़ता बहुत सारे काम हो रहे होते हैं जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता। मैंने हमेशा अपनी कोशिश की कि मैं इस पे पाकिस्तान और डेनमार्क के हालात बेहतर से बेहतर करूं, क्योंकि डेनमार्क मेरा मुल्क है, मैं यहाँ की पैदाइश हूँ, ये मेरी मिट्टी है, लेकिन पाकिस्तान में मेरे रूट्स हैं, वो भी मेरा मुल्क है, जो मोहब्बत है पाकिस्तान से मेरा हमेशा एक तल्लक रहेगा। इसके अलावा आप बताएं कि इसराइल पर है कोई मुझसे स्ट्रांग आवाज, वोकल आवाज है डेनमार्क में, सियासी आवाज जो इसराइल को कंडेम कर रहे हो? है कोई और, कोई माइकल लाल इस क्या कहते हैं सियासी निजाम में जो ये अपनी पार्टी पॉलिसी रखे हकूमतें जो स्टेट ऑफ इसराइल है उसके डिसॉल्व किया जाए और फ्रॉम द रिवर टू द सी एक स्टेट बनाई जाए जिसमें सब रहे और सबके इक्वल राइट्स हो? है और कोई माइकल लाल इस को जो सियासतदान बनते हैं जिसने जो ये बात करे? सब तो जब इसराइल बर्बरियत कर रहा था, सबको पता है कि इसराइल के खिलाफ बोलना तो अपनी मौत को वो क्या उसे कहते हैं सियासी मौत है, सब अपने बिलों में वो छुप गए थे, चले गए थे। है कुछ सियासतदान जो इस तरीके से बोल? मैंने तो हमेशा खुल के बोला है, मैंने तो हमेशा खुल के बात की है। और आपको पता है कि जब यात्री श्री रविशंकर आए थे और अपने डिलीगेशन लेके, और जब उन्होंने क्या कहते हैं अपने प्रोपगंडा करने आए थे, मैंने उस पे रातों रात जो है जो है कश्मीर सोसाइटी उनके साथ, मैंने उनके साथ मिल के प्रोटेस्ट वहां पे किया, और हमने इतना किया कि टाइम्स ऑफ इंडिया में उसकी खबर आई, श्री रविशंकर को जो है बयान देने पड़े क्या कहते हैं इसके ऊपर मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा हम 15 मुल्कों में गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ, डेनमार्क में जो है इन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं। आपको याद है जब यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब आए थे, वहां पे मैंने सेक्रेटेरिएट के, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के बाहर खड़े होके जब वो उनको वेलकम किया जा रहा था वहां पे प्रोटेस्ट किया अपने पार्टी के साथ और कुछ लोगों के साथ, तो मैंने तो हमेशा खुल के बोला हूँ, मैं ये बड़ी आजी से कह रहा हूँ, अल्लाह पाक काम कराता है, ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है, अल्लाह पाक इज्जत देते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने तो अपने तौर पर अपने करियर में जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी, मैं उस वक्त 18-20 साल का था, उस वक्त जब विंस्टा को लोग सपोर्ट कर रहे थे और विंस्टा जो है ये हमारा यहाँ नाटका बंद कर रहे थे, उस वक्त मैंने विंस्टा जो है जो जो उस वक्त जो जो हुकूमत जो आनस को खास हुसन था उसको जो है, और मैंने यहाँ के अखबार में लिखा कि मैं इसको कंडेम करता हूँ। उसके बाद मैंने तो हमेशा अपने हमेशा बड़े वोकल और बोल्ड तरीके से मैं जहाँ पे हमारी शिनाख्त की बात आई, जहाँ पे हमारी आइडेंटिटी की बात आई, वहां पे मैं बोला, जहाँ पे मैंने समझा कि ये पॉलिसी जो है ये डेनमार्क को भी खराब कर रही है वहां पे मैं अपने मुल्क डेनमार्क के लिए बोला, जहाँ पे मैंने समझा कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है वहां पे मैं बोला, पासपोर्ट की बात हुई मैं बोला, स्काफ की बात हुई मैं बोला, कुरान पाक की बहरुमती हुई मैं बोला, कश्मीर की बात हुई मैं बोला, हमेशा मैंने वो बात की। इसकी मैंने बड़ी सजा भी पाई है, इसकी मैं आप देख लें कि मैंने जब इसराइल के खिलाफ बोला हूँ वो मैंने इनसे कहा कि इनकी जो लॉबी है यहाँ पे जिसका सख्त इन्फ्लुएंस है यहाँ पे उसको खत्म किया जाए, तो देखें उसके बाद मुझे कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो राजा साहब ये सदारती अवार्ड ऐसे नहीं मिल जाता कि आप कोई 50 बंदे बुला के फंक्शन करते हैं तो आपको अवार्ड मिल जाएगा, या आप खुद मांगते फिरे तो आपको अवार्ड मिल जाएगा, इस तरह नहीं होता। ये बड़ी एक लंबी प्रोसीजर होता है, एक बहुत लंबा जो है एक एक एक सिस्टम होता है उसके तहत आप गुजरते हैं। नहीं तो क्या कहते हैं, सोशल वर्क तो बहुत सारे लोग करते हैं और चंद लोगों को खाना खिला देना तो आप समझे कि ये आप कम्युनिटी के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, ये भी अच्छे काम है बड़े काम है, लेकिन इसमें सदारती अवार्ड नहीं मिलते। सदारती अवार्ड आपको तब मिलते हैं जब आप सियासी लेवल पे कोई हुकूमती लेवल पे आप कोई ऐसे काम हो, खा वो समाजी हो खा वो सियासी हो, लेकिन इतने इस लेवल के काम हो तो फिर आपको रिपोर्टें भी जाती हैं और लोग आपको नोट भी करते हैं। तो मैं ये बहुत क्लियर कर दूं कि वतो इज्जत मंतशाओ वतो जिल्लत मंतशाओ, अल्लाह पाक के हाथ में इज्जत है, अल्लाह पाक के हाथ में जिल्लत है, और मैं 100 बार अल्लाह के आगे झुकता हूँ, कहता हूँ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल किया और तूने मुझे ये इज्जत बख्शी, मैं इस काबिल बल्कि था ही नहीं, तूने मुझे इज्जत बख्शी और मुझे ये अवार्ड दिया। और मैं आज बड़े वाज़े अल्फाज़ों में यहाँ सबको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अवार्ड जो है ना इसके असल हकदार जो है मेरे वालिद साहब है, अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम दे, मेरे वालिद साहब की बरज़ख की जिंदगी को आसान फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत का एक बाग बनाए। असल में तो मेरे वालिद साहब जो है इस अवार्ड के हकदार हैं और ये अवार्ड जो है मैं उन्हें डेडिकेट करता हूँ। मेरे वालिद साहब जो है वो बहुत ग्रेट इंसान थे, उनका अखलाक आपके सबके सामने है, क्या जबरदस्त अखलाक था उनका, वो माशाल्लाह इतने जहीन और पढ़े लिखे थे। मेरे वालिद साहब जो हैं वो किसी से डरते नहीं थे, उन्होंने हमेशा जुल्म का मुकाबला किया और डंके की चोट पे किया और हमेशा जीते। मेरे वालिद साहब जो हैं वो जब कहीं खड़े हो जाते थे तो कहते थे पुत्र दुनिया इधर से उधर हो जाए, खड़े हो जाओ जालिम के खिलाफ खड़े हो जाओ, हमें तो ये तालीम मिली है शुरू से, तभी तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके नक्शे कदम पे चलूं। और मैं इसलिए मैं पार्लियामेंट में बोलता हूँ, इसलिए मैं कश्मीर के लिए बोलता हूँ, इसलिए मैं अपने जो मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है मैं उसके ऊपर बोलता हूँ। हमारे वालिद साहब जो थे वो तो उनकी तो उनका लेवल ही और था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अवार्ड है ये अवार्ड जो है इसका क्रेडिट उन्हें जाता है। और मुझे सबसे ज्यादा राजा साहब मैं आपको बात बताऊं, मुझे खुशी इस बात की होती है कि उनका नाम जो है ना अमर हो गया है। वो जो चाहते थे कि पहले उनका बेटा जो है यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट भी बना, कितने लोगों को तकलीफ भी हुई, कितने लोगों ने लॉबियों ने इसके खिलाफ काम भी किया कुछ भी हुआ, अल्लाह पाक ने इज्जत दी। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे इस नवाजा इस मेडल से और इस चीज को रेकग्नाइज किया, मेरे काम को रेकग्नाइज किया। मेरे वालिद साहब का नाम जो है वो अमर हो गया। अब जो मर्जी को कहता रहे जो मर्जी को बोलता रहे, मैं समझता हूँ अल्लाह पाक ने जिसको इज्जत देनी होती है किसी का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह पाक के हाथ में इज्जत है, अल्लाह पाक के हाथ में जिल्लत है, और अल्लाह पाक जिसको देना चाहे वो कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। सो मैं वेरी आजी में बहुत ही आजी में बहुत ही हम्बल होके मैं कहता हूँ कि मैं यकीन करें मुझे अपने आप को ये मेडल मिलने से सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है کہ میرے والد صاحب کا جو ایک خواب تھا، میرے والد صاحب کا جو ایک ایک کوشش تھی، اور میرے والد صاحب کا اب نام جو ہے نا وہ ریکگنائز ہو گیا ہے، حکومت پاکستان نے ریکگنائز کیا ہے، میرے والد صاحب کا نام جو ہے وہ امر ہو گیا ہے. مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے، اور میں بہت ہی ہمبل اور بہت ہو کے بہت ہی عاجزی میں میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اتنا پیار دکھایا، اتنا ساتھ دیا، ہر الیکشن میں ساتھ دیا، ہر بار. ظاہر بات ہے بیچ میں ہمیشہ آپ سیاستدان ہوتے ہیں، اس میں آپ کے خلاف بھی لوگ ہوتے ہیں، اور جس کی مخالفت نہ ہو تو آپ سمجھیں وہ منافق ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ جس کے دشمن نہ ہو، جس کو سب پسند کرتے ہو تو سمجھے وہ منافق ہے. اور اگر آپ نے کسی کو پرکھنا ہو نا، آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے مخالفین کون ہیں، جتنے اس کے مخالفینوں سے بندہ پہچانا جاتا ہے. الحمدللہ اکثر جو ہماری یہاں کی جو کمیونٹی ہے اس نے کیا کہتے ہیں بہت پیار دیا ہے، بہت ساتھ دیا ہے. ہاں کچھ یہاں کی جو ریسسٹ پارٹیز ہیں وہ مخالفت کرتی ہے، یہاں کی جو زائنسٹ لابی ہے وہ مخالفت کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک دو کمیونٹی کے لوگ ہوں گے جو جن کی اپنی رائے ہوگی مخالفت کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ الحمدللہ کمیونٹی نے بہت ساتھ دیا ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ مجھ میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن انہوں نے میرے والد صاحب کا یہ جو خواب تھا، میرے والد صاحب کے نام کو جو آنر کیا ہے پاکستان کی حکومت نے، میں بے حد خوش ہوں اس بات سے. میں گھر میں ہمیشہ فیملی کو بھی یہ کہتا ہوں، ظاہر بات ہے کسے نہیں ہے تمنا سروری، لیکن خود ہی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے. میں نے بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے ڈینی سیاست میں، ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن میں اپنے والدین کے، والد صاحب کے جو سبق تھا، جو تعلیم تھا، اس میں میں نے تعلیم تھی اس میں میں نے کوشش کی چلنے کی، اور مجھے اتنی خوشی ہے اس بات کی کہ مجھے اللہ پاک نے وسیلہ بنایا کہ نام جو صدیق نام ہے وہ پاکستان کی سٹیٹ نے جو ہے ریکگنائز کیا ہے. یہ میرے والد صاحب کے لیے بڑی آنر کی بات ہے، اور میرے والد صاحب کا نام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سٹیٹ لیول پہ ریکگنائز ہوا ہے. میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ اللہ پاک نے جو ہے مجھے وسیلہ بنایا ہے، اور تاکہ میرے والد صاحب کا یہ نام اس طرح ہو. آج وہ ہوتے وہ بہت خوش ہوتے. تو میں قبر پہ گیا ان کے، تو وہاں بھی میں میڈل لے کے گیا، اور یہ ذرا ایک ایموشنل بات ہے میں بتا دیتا ہوں. وہاں پہ میں نے والد صاحب کو میڈل دکھایا، میں نے کہا والد صاحب دیکھیں جی آج آپ کا بیٹا میڈل لے آیا، آج آپ کا نام صدیق جو ہے وہ آج پاکستان کی جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، جو پاکستان کی جو سٹیٹ ہے، آج ان کی جو کوریڈورز ہیں ان پہ آج آپ کا نام جو ہے وہ گونج رہا ہے، آپ کا وہ ریکگنائزڈ ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اللہ پاک ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی جو یہ اب سفر ہے برزخ کا اس کو آسان فرمائے. تو بات یہ تھی کہ جو میڈل ہے نا، کچھ لوگ جو ہیں جن کو شاید تکلیف ہوگی یا سیاسی مخالفین ہیں.
1: سکندر اس پر ہم بات کریں گے، گو کہ آپ نے ٹائم مجھ سے مانگا تھا کہ آپ مجھے ٹائم دیں، میں کچھ چیزوں پر بات کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو ٹائم دیں گے، چونکہ میں نے کسی اور سے بھی وعدہ کیا ہوتا اپنے مہمان سے، تو آپ کا ٹائم ہے. ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، آپ کا جواب دینا آپ کا جمہوری حق ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، چونکہ آج ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہے، تو آپ نے اپنے میڈل کی وضاحت کی، تھوڑی سی وضاحت میں بھی کرتا چلوں. آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی اس ہسٹری میں ہوا کہ پارلیمنٹ میں جا کر کسی کو شیلڈیں دی گئی ہوں، پارلیمنٹ میں جا کر کسی کو ریکگنائز کیا گو؟ کیا اس ہسٹری میں کبھی ہوا؟ وہ ہم نے میں نے جو ہے ایلو کے ساتھ مل کے، اسٹیٹ منسٹر تھے پال نیورپ اس وقت، بڑے پاورفل وزیر اعظم تھے، ہم نے ان سے افیشیل میٹنگ کی، جس طرح دو ملکوں کے سربراہ آپس میں بات کرتے ہیں، اس طرح کی ہماری میٹنگ تھی، منٹس لکھے گئے، تو تاکہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. یا واجپائی صاحب تشریف لائے تھے، اس وقت کے وزیر آنس جو تھے انہوں نے اسٹیٹ ڈنر دیا تھا، اس اسٹیٹ ڈنر میں میں موجود تھا. کبھی اس تاریخ میں ہوا کہ کوئی اسٹیٹ ڈنر میں اس طرح کو گیسٹ بنا ہو؟ کبھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ بندہ وہ گننی شروع کرتے تو بہت ساری بن جاتی ہیں. یا میڈل کوئی کسی کو ویسے نہیں دیے جاتے، اس میں بہت سارا اس کے پیچھے کام ہوتا ہے، اس لیے میڈل دیے جاتے ہیں. سکندر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ نے کہا تھا کہ مجھے ٹائم دے، میں کچھ چیزوں پہ بولنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ میں آپ کو پھر اگلے ہفتے ٹائم دے دوں گا.
0: ठीक है राजा साहब, जिन चीजों में मैं बोलना चाह रहा था वो पे तो अभी बोला ही नहीं हूँ, चले इंशाल्लाह
1: नहीं, इसके अंदर मैं आपको टाइम दूंगा जो है ना, ये आपको पता है हमारा लाइव प्रोग्राम होता है, फिर हमारे लिसनर बहुत सारे सुन रहे होते हैं, मेरा वादा है आपका जमहूरी हक है, मैं आपको टाइम दूंगा।
0: ठीक है, और राजा साहब मैं आपको एक आखिरी बात ये जरूर कहूंगा कि आपकी शील्ड को लेके ना काफी धुआं उठा है, और मैं आपको यही कहूंगा जो जलने वाले हैं उनको जलने दें, जो इस वक्त जिनको दर्द आपकी शील्ड के ऊपर दर्द हो रहा है उनको दर्द होने दें, अल्लाह पाक इज्जत देने वाला है, आपने बहुत काम किया है, आपको ये मेडल मिला है, आप इसके हक, आपको ये शील्ड मिली है, आप इसके हकदार थे, और जो जलते हैं उनको जलने दें।
1: सिकंदर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, इंशाल्लाह आपका टाइम आपको मिलेगा। सामान्य नाज़रीन ये थे मलिक सिकंदर सदीक जो कि सितारा इम्तियाज़ हैं, जिनको मिला, हमें शील्ड मिली, हमारी कम्युनिटी को शील्ड मिली है। ये देखें हर चीज़ होती है, हम कम्युनिटी के लोग हैं, एक कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, और हमें बहुत सोच समझ कर बातें करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। चूँकि लाइव प्रोग्राम में होते हैं तो लाइव प्रोग्राम में आप कितना कुछ, किसी को सामने बैठा हो तो बंदा कोई इशारा कर लेता है, कोई बात कर लेता है, तो इस तरह जो बात सारी होती है। बहुत शुक्रिया आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: रुझानात भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आपने कहा जी कि बुनियादी तौर पर इसमें बहुत सारे अवामिल होते हैं, उसमें एक ही फरीक हम खुद भी हैं जो हमारे खिलाफ कानून है, जो वो जब सख्त बनते हैं तो उसमें एक हिस्सा हमारा अपना भी। जी राय साहब,
1: शाह साहब आपने बड़ी तफसील से बताया। शाह साहब देखें, एक हीरोज़ होते हैं, हीरो से सब लोग मोहब्बत करते हैं, जिस तरह डेनमार्क के बादशाह हैं सब मोहब्बत करते हैं, बेलोस मोहब्बत करते हैं, उससे ज़्यादा मलका से मोहब्बत करते हैं। ये सारी चीज़ें जो अपनी जगह दुरुस्त है ना, वो कुछ सियासत में हिस्सा लेते हैं, वो मोहब्बत करते हैं। शाह साहब जब हम देखें मस्जिद हैं, सारे लोग जुम्मा पढ़ते हैं, जुम्मा पढ़ के अपने घरों में आ जाते हैं। अब पहली दफ़ा या इससे पहले भी थोड़ा बहुत चलता रहता है, अब मैं जुम्मा पढ़ने गया मस्जिद वेस्ट वो गेट में, तो मैंने देखा कि डॉक्टर साहब ने सारा खुतबा जो है वो 14 अगस्त के हवाले से जो है बड़े मेहनत करके और बड़े खलूस से जो है उन्होंने 14 अगस्त के हवाले से बात की है, और शाह साहब दिल बड़ा खुश हो गया। और उन्होंने किसी बंदे का जिक्र नहीं किया, किसी मतलब है कि मस्जिद को नहीं कहा गया मस्जिद वाले ये कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 14 अगस्त के हवाले से किया। उसके बाद जो छोटी मोटी तकरीब हुई, क्या नाम है, बंद उनकी लाइब्रेरी में, इसी तरह और अदारों में भी ये तकरीबात हुई। तो शाह साहब ये तकरीबात जो ये दिन वो होते हैं जहाँ कायद अजम रहमतुल्लाह अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह चौधरी जो है वो रहमत अली साहब, उनका ऐसी चीज़ों का जिक्र होता है, इल्मी गुफ्तगू की जाती है। लेकिन शाह साहब उसके बाद अगर उसी गुफ्तगू को जो बिलफर्ज मेरे घर का लीडर है मैं उसकी तरफ दौड़ पड़ूँ, तो शाह साहब बहुत सारी चीज़ें बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आप क्या कहेंगे शाह साहब?
0: जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। मुझे खुशी हुई कि जहाँ पर आपने जुमा पढ़ा वहाँ पर जो डॉक्टर साहिब हैं, मैं समझता हूँ वैसे भी वो बड़े हर लिहाज से काबिले तारीफ हैं। उनके खिताबात बड़े खूबसूरत होते हैं, मैं खुद उनका बड़ा फैन हूँ। बहुत अच्छा खिताब फरमाते हैं वो, अल्लाह पाक उनके इल्म व अमल में मजीद बरकतें अता फरमाए। तो मैं समझता हूँ ये जो इस तरह के, चूंकि ये जो मौजू है इसका ताल्लुक हमारी वतनियत से है और वतन से मोहब्बत के साथ है, इस तरह के मौजूआत हैं जो वो हर जगह पर होने चाहिए। और उसका जो बुनियादी मकसद एक याद दहानी करवाई जाती है कि हम बहसीय कौम, हमारे पास एक मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है, और हमें उसके मुताबिक अपनी जिम्मेदारी, हम उस पर क्रिटिसाइज कर लेते हैं, लेकिन ये कि सबसे पहले देखने की जरूरत यह है कि क्या हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। और उस मुल्क में बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, उस मुल्क के मस्बत पहलू भी हैं, मनफी पहलू भी हैं, क्योंकि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। तो हमें अपनी जानिब से ये कोशिश भी करनी चाहिए, और यकीनन हमारी दिली दुआ भी है, हमारी कोशिश भी होनी चाहिए कि हमारा एक खुद मुख्तार वतन है जिसका अपना दस्तूर है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम ममालिक की पहली और वाहिद एटमी कुव्वत है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुल्क है जो वो दिफाई सामान की खुद तैयारी करता है, चाइना के साथ मिलकर JF-17 थंडर है जो तैयार है वो बनाया, अल खालिद टैंक बनाया, अजरार बनाया टैंक, यानी बहुत वो सारे वो भी हैं, उनसे भी आंखें बंद नहीं की जा सकती। वहां पर इंसाफ नहीं है, अदलिया है जो वो महकूम है, इदारे हैं जो वो कुछ बहुत तगड़े हैं, और जिन इदारों का काम कुछ और है, काम उनकी जिम्मेदारी कुछ और है, लेकिन कर कुछ और रहे हैं। जो जो चीजें माइनस हैं उनको भी मानना चाहिए, जो अच्छाइयां हैं उनको भी मानना चाहिए। और जहां तक आपने कहा कि अपने अपने लीडर की तरफ, जरूर हमें अपने जहां जहां किसी इंसान की अपनी मोहब्बत है वो अपने सियासी कायद के साथ जरूर रखे, लेकिन हम सब का मकसद है जो वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से मोहब्बत है जो वो हमारे दिल की आवाज होनी चाहिए। ये इसी तरह है कि जिस तरह एक ही जगह को रास्ते मुख्तलिफ जाते हैं, हमारा टारगेट है जो वो सबका वो पाकिस्तान है। कोई किसी सियासी जमात की तरफ से होकर जाता है, किसी दूसरी जमात की तरफ से अगर वो होकर जाता है, अपने अपने कायदीन से जरूर मोहब्बत रखें, लेकिन मैं ये जरूर गुजारिश करना चाहूंगा कि अब जहां पर आपको अपने लीडर से, अपने कायद से मोहब्बत है, तो इसी तरह जब दूसरे को भी उससे अपने कायद से मोहब्बत, एक दूसरे का एहतराम करें, अपने कायद से मोहब्बत जरूर करें। वो किसी बुजुर्ग ने बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे थे जी कि अपना छोड़ो ना, किसी को छेड़ो ना, यानी जो जो आपको पसंद है आप उसको फॉलो करें, और जो किसी और को पसंद है उसको ये हक जरूर दें कि वो उसको पसंद करे। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए जो वतनियत है ये जरूरी है। हमारी मसाजिद से अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है वो वतनियत के फरोग के लिए इस्तेमाल होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए।
1: शाह साहब आपका बहुत
0: जी
1: शुक्रिया, आपने काफ़ी कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। डेफिनेट इस वक्त आपकी और भी मसरूफियात होंगी, आखिर में आप अपनी कम्युनिटी को, अपने बच्चों को सियासी हवाले से, दीनी हवाले से क्या पैगाम देंगे?
0: जी मैं वही पैगाम जो मैं अपने लिए मुनासिब समझता हूँ वही मैं अपनी कम्युनिटी के लिए भी यही कहूंगा, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको, सबसे पहले तो हम सबको खुसूसी तौर पर अपने घर वालों के लिए और अपनी औलाद के लिए वो दुआ मांगनी चाहिए कि ए अल्लाह हमारे घर वालों को और हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना, और अल्लाह पाक हम सबकी औलादों को हम सबकी आंखों की ठंडक बनाए। तो अपनी औलादों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने कुर्बो जवार के लिए, अपने हमसायों के लिए कोशिश कीजिए कि अल्लाह की मखलूक में आप अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो उसकी मदद जरूर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अगर कोई मुस्तहिक है आपकी मदद का, अल्लाह पाक ने आपको बहुत सारे वसाइल दे रखे हैं, तो आप जिसको चाहें, और कोशिश कीजिए कि जो आपके खानदान में से हैं, यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद किसी को उस तरह की ना तो माली मदद की जरूरत है ना कोई अखलाकी मदद की जरूरत है, तो वो जरूर करनी चाहिए। तो जहां जहां आपके कोई जानने वाले, आपके मिलने वाले, आपके खानदान वाले, अगर आप किसी अपने खानदान वाले की मदद करेंगे तो उसके आपको दो सवाब, डबल अजर मिलेगा। एक सिला रहमी का कि आपने अपने किसी रिश्तेदार की मदद की है, और दूसरा किसी मुस्तहिक को मदद करने का। तो अपने बच्चों पर ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए, हम में से अक्सरियत है जो उन्होंने बहुत सारे संगे मील है जो अबू अबूर कर लिए हैं, हमारे पास रहायशें मौजूद हैं, हमारे पास अच्छा खाना पीने के लिए मौजूद है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे साथी हैं जो वो वेल ऑफ हैं, उनके पास गाड़ियां अच्छी हैं, घर अच्छे हैं, बैंक बैलेंस अच्छा है। तो हमें दो चीजों का जरूर ख्याल रखना चाहिए, एक आखरत का कि कल का दिन जब आए तो हम सुरखरू हों उसमें, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, वो हमारा दीन है। और हमने दीन को फकत सिर्फ नमाज रोजे पे मुनसर कर दिया है, नमाज और रोजा दीन का एक हिस्सा है, इबादत है जो ये सिर्फ दीन का एक हिस्सा है, इसके अलावा अखलाकियात बहुत बड़ी चीज है। और अखलाकियात के बारे में सबसे पहले सवाल है जो ये भी किया जाएगा कि तुम्हारा अखलाक क्या था, तो एक दूसरे के साथ अच्छे अखलाक से हम पेश आए, और हमारे जो मुआमलात हैं उसमें हम जितने हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ, हमारे रिश्तेदार हैं उनके साथ, और यकीनन सबसे पहले अपने घर के साथ हम अपने घर का सबसे पहले ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, और जिनके साथ हमारा कोई डायरेक्टली ताल्लुक नहीं भी, उनको उनके साथ भी अगर हम कोई अच्छाई कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए जरूरी है कि मुसलमान होने से, ईसाई होने से, यहूदी होने से, या कोई भी और किसी मजहब का फॉलोअर होने से सबसे पहले हम इंसान हैं। तो अल्लाह पाक ने हम सबको इंसान पैदा किया, तो बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी डबल हो जाती है कि हम खुद भी अपने आप को भी अच्छा करें, अपने घर वालों को अच्छा करें, अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करें, और इसी तरह हम अगर किसी की मदद कर सकते हैं वो जरूर करें, और अगर किसी की में कोई अच्छाई है तो उसका इजहार हम बबांगे दोहल करें, उसका हम महफिलों में जिक्र करें कि इस बंदे में ये अच्छाई है, और अगर किसी में कोई कमी या कोताही है तो अगर उसकी आप तसहीह करना चाहते हैं, सिर्फ तनकीद ना कीजिए, उसकी तनकीस ना कीजिए, उसको अकेले में बिठाकर या उसको बुलाकर उसे बताइए भाई ये मेरे ख्याल के मुताबिक, आपके मुताबिक ये जो है चीज ये इस तरह से है, तो उसकी अगर आप तसहीह करना चाहते हैं तो वो अकेले में कीजिए, लेकिन अगर आप किसी की तारीफ करना चाहते हैं तो वो लोगों में कीजिए, उससे उसका हौसला बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें बहसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छाई को, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत को, एक दूसरे के एहतराम को फरोग दें।
1: शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाह साहब आपका लंबा टाइम इसलिए है कि अक्सर हम जब बहुत सारे प्रोग्रामों में बैठते हैं तो आपको भी देखते हैं और दूसरे मेहमानों को भी देखते हैं, हम भी वहाँ मेहमान होते हैं, तो अक्सर कहा जाता है जी कि जो है जी शाह साहब तलावत करें। तलावत करने से कोई बड़ा कोई सआदत का काम हो सकता है? दुनिया में नहीं हो सकता। तलावत दुआ मांगना इससे बड़ी सआदत किसी के नसीब में आती है, लेकिन शाह साहब हम ये रख लेते हैं, ये नहीं देखते कि एक बंदा जो है इसके पास कहीं डायरेक्टर है किसी फर्म का, किसी और चीज़ का बंदा काम करता है, बंदा कम्यून में बैठा हुआ है, मेंबर है, डिप्टी मेयर है, ये इतना तजर्बा है, और दुन के हवाले से हम उनसे वो काम लें, लेकिन हम कोशिश करते हैं जी जी ये सैयद हैं जी इनसे दुआ मंगवा लें। شاہ صاحب سے تلاوت کروا لے. او بھائی 12 سال 14 سال 10 سال 9 سال ایک بندہ جس سسٹم میں بیٹھا ہوا ہے اس موقع کی مناسب سے ان سے تقریر کروائیں. ہم شاہ صاحب یہ ایک دعا منگوا لیتے ہیں تبرک کے طور پر, یہ سید ہے. شاہ صاحب معذرت ہے, یہ میں نے سوال کر دیا.
0: جی بالکل آپ کی بات درست ہے, مجھے بلکہ میں تو یہ کئی مرتبہ اس کا اظہار بھی کر چکا ہوں. عذرائے تفنن میں نے یہ مزاحن یہ کہا بھی ہے کہ آپ نے تو مجھے صرف دعا والا مولوی بنا رکھا ہے کہ یا تو مجھ سے تلاوت کروائی جاتی ہے, بڑی اچھی بھائی, اس سے بہتر تو کوئی اور کام ہو نہیں سکتا. اور میں سمجھتا ہوں
1: مسئلہ میں دعا والا نہیں بناتے نا, یا دعا والے کو پیسے بھی دیتے ہیں, آپ کو پیسے نہیں دیے جاتے نا.
0: نہیں الحمدللہ مجھے دعائیں چاہیے, پیسے ہیں جو وہ میری کبھی انشاءاللہ نہ کبھی میری ڈیمانڈ رہی ہے نہ کبھی آئندہ ہوگی. تو بہرحال میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ لوگ میرا اس میں الحمدللہ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے اس قابل سمجھتے ہیں, حالانکہ میں اپنے آپ کو شاید اس قابل نہیں سمجھتا, لیکن وہ صرف ایک وجہ سے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہوں. مجھے اپنے بارے میں مجھے پتا ہے کہ میں کتنا نیک ہوں, لیکن وہ میری عزت اس وجہ سے کرتے ہیں اور مجھ سے دعا کرواتے ہیں. میں اس کی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. کل دو جگہ پہ میلاد شریف کا پروگرام تھا, تو وہاں پر مجھ سے بہت پڑھے لکھے, بہت خوبصورت علم والے, عمل والے, مجھ سے بہتر عمل والے علماء وہاں پہ موجود تھے. تو لیکن دعا کے لیے وہاں پر بھی عیسائی میں بھی ہمارے ایک دوست ہے ان کے گھر پروگرام تھا.
1: اس کے بعد میری مطلب ہے کہ مجھے یاد, میں نے آنا تھا, اسی بہانے ملاقات ہو جاتی, میں نہیں آ سکا.
0: جی جی. اور دوسرا کل غزوہ مسجد میں پروگرام تھا, تو الحمدللہ وہاں پر دو مفتیان کرام موجود تھے اور علماء کی ایک لمبی لائن موجود تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں میں ان کا شکر گزار ہوں مفتی طارق امین صاحب کا کہ انہوں نے دعا کے لیے وہاں پر بھی انہوں نے مجھے کہا, میں نے انکار بھی کیا, میں نے کہا جی آپ خود مجھ سے بہت بہتر عالم دین ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, مجھ سے زیادہ علم اور عمل والے ہیں, کسی اور سے کروا لیں. انہوں نے کہا نہیں جی دعا تم نے کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مجھے یہ عزت دیتے ہیں اللہ پاک ان کو مزید عزت عطا فرمائے. مجھ میں کوئی ایسا کمال نہیں ہے رائے صاحب, نہ ہی کبھی میں نے اس بات کا کبھی کوئی کوشش کی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس پہ یہ کہوں جی, کہ نہ کبھی میں نے ڈیمانڈ کی ہے کبھی کہ جی مجھ سے دعا کروائی جائے. یہ ان لوگوں کی محبت ہے جو مجھ سے دعا کرواتے ہیں, اللہ پاک ان کو اس محبت کا اجر عطا فرمائے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ بات بالکل درست ہے, مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ میں اور بھی کام کر سکتا ہوں, آپ تلاوت اور دعا کے علاوہ بھی مجھ سے کوئی کام لے سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا مجھے موضوع بتائیں آپ, میں انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو میں وہاں پر کھڑے کھڑے اس پہ گفتگو کروں گا, مجھے تیاری کی ضرورت نہیں, مجھے یہ ٹائم نہیں مانگنا پڑے گا جی کہ مجھے 5-10 منٹ دیں تاکہ میں تیاری کر لوں. تو جہاں پر مجھے اور جس موضوع پہ آپ چاہیں, آپ پولیٹیکلی ہو مذہبی ہو, تو میں اویلیبل ہوتا ہوں انشاءاللہ. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں آپ نے یہ اچھی ایک رائے صاحب نقطہ اٹھایا ہے, لیکن بار دیگر میں اپنی بات کو اس بات پہ ختم کروں گا جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی کہ الحمدللہ اس دفعہ آپ کو جو اعزازی شیلڈ دی گئی ہے اس پہ بار دیگر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بلکہ میری امبس صاحب سے بھی اس بارے میں مختصراً گفتگو ہوئی تھی, میں کوشش کروں گا ان کے ساتھ مزید اس کو الیبوریٹ کروں کہ الحمدللہ اس سال پاکستانیوں کے حصے میں ایک تو صدارتی ایوارڈ ہے جو وہ بھی آیا ہے, اور امبیسی سے آپ کو بھی یہ شیلڈ دی گئی ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن میں نے امبیسی صاحب سے یہ بھی گزارش کی ہے جی کہ اس طرح کی جو اعزازی شیلڈز ہیں اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا کہ بالکل ایسی بات ہے. اور میں امید کرتا ہوں, اور میں امبیسی کو باقاعدہ طور پر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ میں لکھ کے بھیجوں گا, گزارش کروں گا امبیسی سے, جو کہ وہ ہمارے نمائندے, حکومت پاکستان کے نمائندے, نہ وہ ہم سے الگ ہیں نہ ہم ان سے الگ ہیں. تو میں ان سے ضرور گزارش کروں گا کہ ہر سال کسی بندے کو آپ چن لیں, اس کی وہ جرنلسٹ ہو سکتا ہے, وہ کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے, وہ کوئی ڈاکٹرز میں سے ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی پولیٹیشین ہو سکتا ہے, کوئی ایسا بندہ جس کی کمیونٹی کے لیے خدمات ہیں, اس کو آپ سال میں آپ 2-3 لوگوں کا نام لکھیں, پھر ان میں سے کمیونٹی سے ان کے متعلق آپ رائے شماری لے لیں. کمیونٹی اگر جس کو بہتر سمجھتی ہے وہ اس کو یہ احساس ہے یہ ضرور دینا چاہیے. جہاں تک وہ صدارتی ایوارڈ کے متعلق ہے, وہ تو امبیسی نے جس کو نامینیٹ کرنا وہ تو اسی نے, وہ تو چونکہ اس کا میکانزم اس طرح کا, امبیسی ریکمینڈ کرتی ہے یہاں سے, تو پھر وہاں پہ جو پروسیس ہے اس میں سے گزر کے تو صدارتی ایوارڈ کسی کو مل رہا ہے, تو وہ تو اس کا طریقہ ہی الگ ہے. वो तो कम्युनिटी से थोड़ा ही पूछा जाता है जी कि आप किस लोग को समझते हैं, किसको समझते हैं कि कौन इसका हकदार है। वो उनकी जवाबदेही है एम्बेसी, तो वो उन्हें करने दें। और जो यहाँ पर लोग हैं, मेरी ये गुजारिश होगी एम्बेसी से, और एम्बेसी साहब को मैं लिख के भी भेजूंगा, चलो मौका मिलेगा मैं उनसे गुफ्तगू भी करूंगा इस पे, कि मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी रविश होगी। कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस दफा हमारी एम्बेसी ने ये दो काम जो करवाए, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कम अज कम दो पाकिस्तानियों को, एक सिकंदर सिद्दीक साहब को भी इस दफा सदारती अवार्ड मिला, और कल यानी जुमे वाले दिन 14 अगस्त को आपको ये जो एजाजी शील्ड दी गई है। मुझे इस पे खुशी है कि ये जो शुरुआत हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका तसलसल बरकरार रहेगा और आइंदा हर साल किसी न किसी शख्स को इस तरह की एजाजी शील्ड मिलेगी। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानियों के लिए, ये किसी गैर मुल्की के लिए थोड़ी है, तो जिसको भी मिले हमें खुशी का इजहार करना चाहिए, है तो पाकिस्तानी ना, जिसको भी मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जब भी मेरी गुफ्तगू होगी उनसे, तो मैं इस पर मजीद बात करूंगा कि इसको हर साल इस तरह का कोई एजाजी, जिसकी जिसको आप समझते हैं, कम्युनिटी समझती है कि किसी ने कोई नुमाया काम किया है, कोई काबिले कदर कोशिश की है अपनी कम्युनिटी के लिए, तो उनको इस एजाज से नवाजा जाए, तो मैं इंशाल्लाह इस पे मैं जरूर काम करूंगा।
1: शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम शेयर किया हमारे साथ।
0: बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह जी, अल्लाह।
1: सामान नाज़रीन, ये थे सैयद एजाज हसन बुखारी शाह साहब से। शाह साहब बड़ी मेहनत करते हैं, दीनी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी, कम्युनिटी के लिहाज से भी, ये सारी बातें चलती रहती हैं और चलती रहनी भी चाहिए। इन चीज़ों पर बातचीत भी होनी चाहिए, डिबेट भी होनी चाहिए, और सब की जो है वो नीयत भी साफ होनी चाहिए। सामने नाज़रीन, हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए, ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، موسم کی بھی بات ہوتی ہے تو وہ تو ہو چکی، اسی طرح بادل بھی آ گئے، وہ بھی ہو چکی۔ اب چونکہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی موسم یا سیاسی بادل ہیں، یہ جو کافی لمبے عرصے سے چل رہے تھے، 14 اگست کے حوالے سے بھی، سیاست کے حوالے سے 14 اگست کا 14 اگست ہی ہوتا ہے، مینگو فیسٹیول ہی ہوتی ہے، اور جو بریکنگ نیوز ہوتی ہیں وہ بریکنگ نیوز ہی ہوتی ہیں، کمیونٹی کی خبریں جو ہوتی ہیں وہ کمیونٹی کی ہوتی ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے تجزیہ نگار عدنان امین علی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کوئی بریکنگ نیوز بھی لیں گے۔ عدنان، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے عدنان، میں نے چھوٹی سی تمید جو ہے وہ جلدی میں باندھ دیا، اور جس طرح موسم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تبدیل ہوتا ہے اور ہماری کمیونٹی کی سیاست بھی تبدیل ہوتی جاتی ہے، جس طرح 2 دن آم ہوتے ہیں تیسرے دن آم بھی جو ہے وہ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے، تازہ نہیں رہتا، اسی طرح سیاست بھی جو ہے وہ 2 دن گزر جائیں تو وہ بھی پرانی ہو جاتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟
2: صاحب ایسے ہی ہے، دیکھیں جیسے آپ بھی منڈے والے دن کہہ لیں، آلموسٹ ساری وہ موسم پہ کافی ٹھنڈا اور بارش کا ہوتا ہے، اور پھر گرمی بھی آتی ہے، ابھی موسم کیونکہ اب موسم تو چینج ہی ہو گیا نا، تو سمر بھی آ رہا ہے، تو 10 منٹ سمر کا پی گئے تو ختم ہو رہا ہے۔ دوسری بات، جیسے آپ کو معلوم ہے پچھلے منڈے والے دن ساری آلموسٹ ویکیشن ختم ہو گئی، اسکول شروع ہو گئے، ڈونیشن شروع ہو گئے، تو آلموسٹ لوگوں کے 90% کام شروع ہو گئے، تو ایک قسم کا کہتے ہیں نارمل ویریئر سسٹم شروع ہو گیا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کمون کے بجٹ آئیں گے، سینس بجٹ آئیں گے، مطلب کہہ لیں کہ ایک قسم کا جو رولنگ سسٹم ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے، اور وہ اب چلتا رہے گا، اور آہستہ آہستہ کیا کہتے ہیں چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی، اور نارمل ڈیز وہ کیا کہتے ہیں ہوتے جائیں گے۔
1: یہ عدنان آپ نے بجا فرمایا۔ عدنان، یہ جو سارا سسٹم اب شروع ہوگا، جو پارٹیوں نے وعدے وعید کیے ہوئے ہیں، کیا وہ اس پر عمل درآمد ہوگا یا کہ بس الیکشن ختم ہو گئے تو بات بھی ختم ہوگی؟
2: یہ سب کوشش تو کریں گے نا کہ جو پالیسی جو ویکینسی بنے اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے، اور آبویسلی کیا کہتے ہیں جو ان نے وعدے کیے ہیں ان پہ کوشش کریں گے، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں پورا کریں گے تو آبویسلی پھر لوگوں میں کیا کہتے ہیں فرسٹریشن آ جاتی ہے، اور پھر لوگ ان باتوں پہ کرتے ہیں، اور پورے سمر کے اندر اس بات پہ والر بھی اٹھے ہیں کہ یہ وعدے پورے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، تو وہاں ایک دو پارٹیوں نے پھر کیا کہتے ہیں پورا جو سسٹم ہے، جو پورا ایریا ہے، اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ اب جیسے کچھ دنوں کے بعد سال کا نیشنل بجٹ بھی آ جائے گا، لوکل کمیونوں کے بھی بجٹ آ جائیں گے، تو پھر آبویسلی پتہ چلے گا کہ کہاں سے پریپریٹری ہوتی ہے، کہاں سے نہیں ہوتی، اور پھر کہاں سے چیزیں چلتی ہیں، اور آبویسلی کیا کہتے ہیں لوگوں کی سوال جو ہیں وہ بھی سان کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کافی ٹھپ چیزیں رہی ہیں اور کافی مشکلات بھی ہیں، اور ہر چیز پہ کیا کہتے ہیں غور کریں گے، ہر چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور آبویسلی اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے۔
1: عدنان، الیکشن تو پارلیمنٹ کے کسی ٹائم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کمیون کے الیکشن تو ان کے ڈیٹ، مہینہ اور سال جو ہے وہ فکس ہوتا ہے، اسی دن ہی ہونا ان کے ہوتا ہے، ریجن کا بھی، تو اگلی دفعہ آپ محسوس کرتے ہیں نئے لوگ آئیں گے یا یہی لوگ جس طرح چل رہے ہیں اسی طرح کے کنٹینیو کریں گے؟
2: صاحب، میرے ہاتھ سے تبدیلی کافی آئے گی، اور کیونکہ لوگوں کو مسائلوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، آبویسلی ایک بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ آپ جب الیکشن لڑتے ہیں نا تو آپ کو اس کمیون کے بارے میں پتہ بھی ہونا چاہیے، جس طرح اس کا ہر کمیون کا ایک ایریا ہوتا ہے، آپ بہت سارے وعدے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، مگر آپ کو یہ بھی اندازہ رکھنا چاہیے کہ آپ جب وعدے کرتے ہیں وہ وعدے پورے ہو سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہر چیز، آپ کو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہر وعدہ ہر چیز پورے کرنے کے لیے پیسے بھی شامل ہونے چاہیے، और जैसे आपको मालूम है इस वक्त ये एक डिबेट जारी है कि लोगों को पता होना चाहिए। आप इस वक्त देखें नेशनल प्लान था, आप एक चीज देखें ना जो एक शॉकिंग न्यूज है वो ये है कि टेंस फॉल के पक्षी वंस अगेन जाग गई है और वो एक एजेंडा पे जागी हुई है कि उनका जो नीम क्या कहते हैं एजेंडा है कि मुसलमान काम करेंगे। और इस वक्त वो एक किस्म का देखा जाए ना तो बहुत आगे जा रहे हैं। अभी तो बंदा कह सकते कि इलेक्शन का टाइम है, पता नहीं मेरे ख्याल से इतनी जल्दी तो इलेक्शन नहीं आएंगे, मगर वो वंस अगेन क्या कहते हैं जाग गए हैं। अब ये देखें हमारे मसाई जो स्वीडन है उधर जो उनकी उस तरह की पार्टी है तैनमस का मुकाड़ उसी तरह इनकी तैनमस में है, वो इस वक्त पहली दफा जो बंदा 20 साल मेजर नहीं था कर सकता कि स्वीडन के अंदर होगा वो टेक्निकली जाके स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाए। तो अब एक किस्म का देखिए ना कि कौन कौन सी तब्दीलियां आ रही हैं और कौन कौन सी चीजें आ रही हैं जिसपे गौर करने की जरूरत है। कमिंग डेज में यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा डेमोस्ट्रेशन आ रहा है 5 को, पता नहीं अब करते हैं कि नहीं करते, तो जिनके मसाइल हो गए थे मुझे अभी तक तो प्रिपेयर है। तो इसलिए हर चीज को उसे देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी को आप कैसे चेंज करेंगे। तो अब सर ये हो सकता है कि 2029 के जो कानून के इलेक्शन आए उसमें काफी नए लोग आए और काफी लोगों को देखने की जरूरत है और बंदे को गौर से ये करना चाहिए कि आप जिस कानून में रह रहे हैं 98 कानून है और 4 रीजन है जहाँ के इलेक्शन होंगे अगली बार, तो बंदे को देखना चाहिए कि बंदा उस तरह का टाइम और उस तरह का क्या कहते हैं दे सकता है और चीजों के मामले में पता भी होना चाहिए। आपको जैसे मालूम होगा इस समर के अंदर काफी हालात भी हुए हैं खराब, कुछ कमूनों में टॉस्टॉप होगी, एमस्टोन होगी, रॉस्किल होगी, टिंकिया होगी और उन चीजों पर भी हमें गौर देना चाहिए कि वो चीजें क्यों हो रही हैं और उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं।
1: अदनान अब ये जो है वो आम का जो मेला है मैंगो फेस्टिवल वो भी एक रौनक जो है वो अब लगता नहीं है कोई और प्रोग्राम होगा, वो तो सारे ख़त्म हो गए। 14 अगस्त के हवाले से भी कोई 7-8-9 प्रोग्राम हुए वो भी अख्ताम को पहुंच गए और अच्छा अख्ताम हुआ जिसे कहते हैं खुशाइने खुशी वाला अख्ताम तादाद थी लोगों की, ये काम भी ख़त्म हो गया। और अभी जो क्या एमना बनता है, किस तरफ हमारी कम्युनिटी जाती है, किस सोच को लेकर आगे जाती है, क्या उन्होंने पाकिस्तानी सियासत करनी है या डैनिश सियासत करनी है, आप इसको किस तरह एनालाइज कर रहे हैं?
2: सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं यही कहूँगा कि ये सब कुछ के बारे में अब ये सोचना चाहिए कि इस वक्त बात होती है मुसलमानों को टारगेट आने में भी और हम लोग खुद भी क्या कहते हैं ना एक किस्म का क्या कहते हैं ना चैलेंज दे देते हैं और दे देते हैं। इस वक्त हमें ये भी फोकस देना चाहिए कि हम इस कल्चर का हिस्सा बन गए हैं, हम इस डिबेट को कैसे चेंज करेंगे। हम कोशिश तो करते हैं मगर फिर कुछ है ना कुछ हमारे लोग जो जिस बात को जरा थोड़ा उलट ले जाते हैं। जैसे ये अब कॉलेज जमेशन शुरू होने लगे थे और कॉलेज शुरू होने लगे थे उसके अंदर हिजब तरीक ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसके बारे में बहुत सारे सल्चर चल गई थी, मगर मसला ये है कि बंदा उस चीज को चेंज भी कर सकता है क्योंकि उसको बंदा टेक्निकली कुछ बंदों ने उसको और में और चीजों में कह के ना उस बात को खत्म करने की कोशिश की थी पर अनफॉर्चुनेटली उसमें ना एक दो मिस्टर के दिन में हम उस बात को बहुत बड़ा कर दिया था जितनी बड़ी बात नहीं थी। इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि हम सारे मुसलमान हैं हम एक प्लेटफॉर्म पे आए, जिस तरह हम मैंगो फेस्टिवल और ये फेस्टिवल इकट्ठे कर सकते हैं ना तो उस तरह हम इस पेज पे भी इकट्ठे आ सकते हैं। अभी आपको जैसे मालूम होगा कि हम इस मंथ जो है अल्लाह ताला हम लोगों को ये मंथ 12 नबी का है और हमारे नबी की सांग है, हमारे नबी की कहते हैं ईद और रोजों के बाद देखा जाए तो बहुत बड़ा मंथ है ये। तो इस तरह के मंथ के अंदर हमें इन प्रोग्राम में भी फिर चीजें बतानी चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा कल्चर इस तरह का कल्चर है। तो ये चीजें भी बड़ी जरूरी हैं कि हम अपने कल्चर को बताएं और हम अपने इवेंट को बताएं। हमारे मैंगो फेस्टिवल्स ऑलमोस्ट बहुत अच्छे होंगे और और मैंगो फेस्टिवल के अंदर जैसे आपको पता है ये जो माशाल्लाह अम्बेसी का प्रोग्राम हुआ है उसके अंदर जैसे आपको पता है आप भी उधर थे, मैं नहीं था मगर मुझे पता है कि डेनमार्क की जो अम्बेसडर है पाकिस्तान के अंदर उसने भी पार्टिसिपेट किया है और वो भी आई है, उसने भी कल्चर देखा है और जैसे वो पाकिस्तान में काम कर रही है वो भी हमें पता है, थोड़ी बहुत उसने उर्दू भी सीखी है पहले। तो इस तरह से होता है कि हम अपने कल्चर को स्प्रेड करें और हम अपने कल्चर को बताएं कि हम कुछ लोग हैं जो कल्चर को हास्टल कर लेते हैं मगर वो सेम चीज़ है, वो यहाँ पे भी है, इनके कल्चर में भी वो सेम प्रॉब्लम्स हैं मगर मसला ये है कि बस उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है।
1: अदनान, अक्सर बात होती रहती है कि जब आपसी रिकॉर्ड भी बात की जाए या बंद कमरों में गपशप की शक्ल में बात की जाए दोस्तों के साथ, तो सियासतदान भी ये कहते हैं, हमारे सियासतदान जो हैं कानून के हो गए पार्लियामेंट के साबका या मौजूदा, तो जब बात एंड पे जाती है तो उनसे सवाल किया जाए तो फिर ये जो कानून में सख्तियाँ आई हैं, आप तो बड़ी सहूलियात बताते थे, 70 में ये था, 71 में ये था, 81 में ये था, उस वक्त ये सहूलियात थी, ये सहूलियात थी, तो मैंने कहा फिर इन सारे जो कानून सख्त हुए इनका जिम्मेदार कौन है? तो हमने सर्वे भी कराया था, याद है आपको, तो हर बंदा कहता है ये हमारा कसूर है। जब हमारा कसूर है तो फिर हम सीखने की कोशिश क्यों नहीं करते?
2: इस पर मैं वही कहता हूँ कि इंसान को अपनी गलतियों को सीखना चाहिए और गलतियों को अमीर करना चाहिए। कुछ गलतियां बंदा ऐसे कर देता है कि जो आपके सामने होती है उनको बंदा एडमिट करके रेकोनाइज करके आगे चला जाए और कंप्रोमाइज कर ले तो वो फायदा होता है। आप उन चीजों पर आप कि आप इस आपके पीछे इस एजेंडा से पड़े हुए हैं या आपके पीछे इस एजेंडा से पड़े हुए हैं तो फिर वो बात कभी खत्म नहीं होती। आपको बात को खत्म करके आगे चले जाना चाहिए, कहना चाहिए मुझसे गलती हो गई है, मैं इसको बेहतर करने की कोशिश करूंगा। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो मामला होगा वो ठंडा भी हो जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा।
1: अदनान, आखिर में कोई आप मैसेज या कोई पैगाम देना चाहें कोई नौजवान बच्चों को, अब स्कूल खोले हैं, कॉलेज शुरू हो गए हैं, स्कूल भी नई क्लासें बच्चों को मिल गई हैं, ये सारा काम तो सिस्टम में चल रहा है, चांद सूरज ग्रहण भी हुआ, तो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं और अब तो बच्चों ने बाकायदा जो है अपनी तालीम को जो है जारी वो सारी शुरू कर दी है।
2: मैं यही कहूँगा बच्चों को कि अपनी तालीम पे गौर दें, अपनी एजुकेशन पर गौर दें तो जो आपको बेहतर लगे वो करें। आपका फ्यूचर है, आपकी जिंदगी है, आपने खुद डिसाइड करने का आपको फ्यूचर कैसा है। मैंने भी अपनी बेटी को यही कहा है जो जनरेशन में शुरू हुई है, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, जो तुम करना चाहोगी हम उसमें सपोर्ट करें।
1: अदनान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। सामाई नाजरीन, ये थे अदनान अमीन अली जो के अपना तजिया पेश कर रहे थे। समय हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी है, कोई राय देना चाहता है, अपनी बात करना चाहता है, तो उसके लिए अदर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है, हमारे साथ साथ रहिएगा।
0: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: में भरपूर प्रोग्राम हुआ, उनका भी हाउसफुल था, और उसके बाद जो आखिरी प्रोग्राम हुआ, आखिरी नहीं तो मनाना सारा साल मनाते रहे, कोई मना कर नहीं हो सकता, उसके बाद पाकिस्तान सोसाइटी ने अनाउंस किया हुआ था, उनका प्रोग्राम हुआ। आप देखें जूं जूं प्रोग्राम होते रहे, छोटा बड़ा, बढ़ता बढ़ता बढ़ता वो प्रोग्राम आगे बढ़ते रहे, पीछे नहीं गए शाह साहब
1: जी। वो बिल्कुल आप देख लें कि अम्बेसी में जो हुआ वो आज तक कितना पब्लिक, लेडीज के भी फुल हाउस था और जेंट्स का भी, और लोग खड़े थे इंतजार कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जो डेनिश एम्बेसडर है वो भी वहां पे अपने हस्बैंड के साथ तशरीफ लाई हुई थी, और उन्होंने भी पाकिस्तान का केक काटा, और ये बहुत अच्छा इवेंट था वहां पे। आपको
0: सब आपने देखा ना कि क्रिश्चियन बरादरी आई हुई थी, उन्होंने भी मिली नगमे पेश किए, उसके बाद नौजवान बच्चों ने, जना स्कूल के बच्चों ने क्या समा बांधा हुआ था शाह साहब।
1: ये बहुत ही, मैं कहता हूँ कि बहुत ही प्यारी और बड़ी अच्छी 14 अगस्त जो है, बड़ी मुद्दत के बाद, कुछ अर्सा पहले 80s और 90s में ऐसे होते थे इवेंट्स, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा इवेंट जो है वो 14 अगस्त का इस दफा खुशी से मनाया गया है। और हमें
0: तो शाह साहब इसी तरह, इसीलिए अम्बेसडर साहब को कहा जाता है जो हमने खिताब दिया कि ये अवामी जो है अम्बेसडर थे।
1: जी वो आपने ठीक बात की, लेकिन मुझे अब मैं उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुका हूं कि मुझे ये हैरानगी की बात है कि 14 अगस्त का जो तारीखी पस मंजर था उसके ऊपर डिबेट्स होनी चाहिए थी, उसके ऊपर बताने चाहिए थे, सिर्फ नगमे गाकर और डांस करके या छोटी मोटी तकरीर करके चले जाने से इस तरीके से जो हमारे यंगस्टर्स हैं या हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनको पाकिस्तान के जोग्राफियाई और तारीखी वाकयात का कोई इल्म नहीं होता कि कितनी तकलीफात से खुसूसी तौर पे वो माएं बहनें और बेटियां जो उस मुल्क के अंदर रह गई, जिन उन बच्चों और उन भाइयों की जिनकी शहादतें उस वक्त हुई, उनके लिए भी कुछ बात होनी चाहिए और इन इवेंट्स को लेके आगे चलना चाहिए। और जिस तरीके से आप भरपूर तौर पे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के जो सालगिरह आप मनाते हैं, उनका जो दिन आप मनाते हैं, उसके ही इवज में आपको ये शील्ड दी गई कि आपको, आप कितने मनज़म तरीके से और कितनी मनज़म तरीके से आप डिबेट कराते हैं। तो ये चीजें जो है इस तरह होनी चाहिए। और मुझे ये भी बात है कि अब 14 अगस्त का जो होने चाहिए इवेंट्स अगली दफा शुरू हो या 6 सितंबर का हो या 23 मार्च का हो, तो इसके अंदर उन लोगों को स्टेज पे लाना चाहिए जो कि कोई इल्म की बात कर सके, कोई तलीमी बात कर सके, जो अवाम को मैसेज दे सके। इस तरह के जो मैसेजेस हैं जिसके अवाम को सिवाय हंसने के या जग हंस बनाने के इनका कोई फायदा नहीं है। हमें तामीरी काम करना चाहिए और आगे चलना चाहिए और फॉरवर्ड चलना चाहिए। और इस दफा इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कायदे आजम डे पे लोगों को कायदे आजम के खानदान से, उनकी जो उनके मजहब थे, जो उनकी रवायात थी, उनके बारे में फुल डिटेल पे अगर आपने इनवाइट किया तो इंशाल्लाह ताला जरूर बताएंगे।
0: इंशाल्लाह शाह साहब हमेशा ये नुक्ता आप उठाते रहते हैं, जितना आपके हिस्से में टाइम होता है हमारे प्रोग्रामों में आप इतना जरूर ये इजारे ख्याल करते रहते हैं। इसमें शाह साहब कोई दो राय नहीं है, इसको आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसको डिबेट पे ले जाना चाहिए कि जितना आपका इशारा जिस तरफ था, जितना टाइम हम दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं ढोल बाजे की तरफ, वही टाइम हम अगर इस तरफ लेके जाया जाए तो ये तो 14 अगस्त की एक तारीख है जब पाकिस्तान बना। उन लोगों से पूछे, उन फैमिली से पूछे, उन खानदानों पूछे जिनके बच्चे, माँ बाप, खानदान जो हैं, वो क्या उनके साथ हुआ। तो शाह साहब ये तो चूंकि आप हिस्ट्री जानते हैं, ये जो मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ये तो जाहिर है फिर नाच गाने की तरफ जाएंगे ना अगर इनकी तबीयत।
1: हमने खुद अपने, आप अपने बच्चे को देखे, आप अपने बेटे को देखे, छोटा राजा जो है वो जहां भी जाता है खामोशी से अपने किरदार को निभाता है। जब वो मस्जिद में जाता है तो वहां बकायदा नात खानी करता है या तरीके इस्लाम पे बात करता है। तो हम लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को भी इसी तरीके से, वो इसलिए कि जब आप घर में इस तरह की बातें करेंगे तो आपके बच्चे जो है वो सीखेंगे, और अगर आप पाकिस्तानी ड्रामे देखते रहेंगे तो फिर ड्रामों के अंदर तो जो है वो यूरोप से भी बदतर ड्रामे पाकिस्तान में बनते हैं, तो उससे हमारे कल्चर पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। और इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम कुछ दिनों पे एक ऐसा प्रोग्राम डिबेट करेंगे कि ये जो पाकिस्तानी ड्रामों में

0: जो इश्क की और ये बातें चलती है, जो हमारे कल्चर के बहुत बड़ी तोहीन है, खुसूसी तौर पे हमारे गांव में ऐसा नहीं होता, हमारे शहरों में ऐसा नहीं होता, हमारे घरों में नहीं आता होता। कोई लाखों में एक अगर केस हो जाता है तो उसके मतलब ये नहीं कि हम उनको ड्रामों में पेश करके लोगों को ये बताएं कि भाई हमारा कल्चर क्या है।
1: तो शाह साहब,
0: अब
1: आपने
0: तो
1: देखा इस तरह, आप चले थोड़ा सा बात को मैं थोड़ा सा वजन डाल दूं, जिस तरह ये अबाक्त मुफ्ती कवि साहब आ जाते हैं, वो जो सोशल मीडिया पे इस तरह के जो मुख्तलिफ किरदार आ जाते हैं, तो शाह साहब लोग देखे ना उनको मिलियन के हिसाब से लोग देखते हैं, लाइक भी करते हैं, तो फिर आप लोगों की मेंटेलिटी का शाह साहब आप अंदाजा कर लें। ये तो कोई कानूनी पाबंदियां होनी चाहिए, जो आइन के अंदर चीजें तय होती हैं उस आइन का भी जो है हमें पास कर रखना चाहिए।
0: जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं जरा चलता हूँ थोड़ी सा बात को दूसरी तरफ लेके, खालिद भट्ट साहब से पूछते हैं। इन्होंने अपना अपना पूरा जवानी जो है वहां पे उडनसे में गुजारी है, और एक वक्त था कि उडनसा जो था वो डेनमार्क का सबसे बदनमा और बदतरीन शहर कहलाता था वालमूस की वजह से दूसरे, लेकिन इन्हीं की सियासत खालिद भट्ट साहब ने खुद ही
1: लेकिन
0: वहां पे
1: शाह साहब
0: सियासत की
1: हमेशा
0: और लोगों ने।
1: ओडेंसे में एक्टिविटीज रही और कोपेनहेगन से मेहमान जाते रहे, ये लोग बुलाते रहे।
0: जी, और इनसे पूछा कि वहां पे अब जो इतने लोग अच्छे हो गए हैं उसकी वजूहत क्या है। बट साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि जरा बताएं कि हालात कैसे वहां पे बेहतर हुए।
1: शाह साहब हालात बेहतर हुए या बंदे तब्दील हुए?
2: नहीं, बंदे तो वही हैं, बंदे तब्दील नहीं हुए, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें हमारी जो डिटसे कमून है, हमारी जो डिटसे कमून है, जो हमारी वो जिसको आप कहते हैं मेयर और सिटी काउंसिल वगैरह, तो उसमें यह है कि सोमालियन जो है वो भी अब सिटी काउंसिलर हैं, दो या तीन, उसके बाद तुर्की एक हैं, अरबी हैं, ईरानी हैं, तो ये मल्टी जो कल्चरल जो हो गया ना वो काउंसलर, और फिर जो मेयर हमारे सोशल डेमोक्रेट पार्टी के हैं, तो वाल्समूस का जैसे शाह साहब ने जिक्र किया, तो वाल्समूस में बहुत चेंजिंग आई है। वाल्समूस में तो ये है कि आपको पता होगा कि ये जैसे उसमें ब्रबन और इधर कोपेनहेगन में आपका नेरो ब्रो वगैरह, तो वहां तो कमून जो है उन्होंने बहुत बड़ा वो बजट और प्रोजेक्ट है, कि बहुत सी बिल्डिंगें जो है ना जी, ये गेटो खत्म करने के लिए उन लोगों ने बिल्डिंगें गिराई हैं, गिरा के जो लोग हैं उनको मूव किया है, और कुछ लोगों को साल साल दो दो साल के लिए मूव करके फिर दोबारा उन लोगों ने वो क्या कहते हैं रेनोवेट और रिकंस्ट्रक्शन किया है। तो ये उनका जो मेन जो टारगेट है वो ये गेटो खत्म करना, तो फिर ये था कि वो बड़ा ना गेटो होने की वजह से वो बड़ा एक ना लोकल समझ होता है कि वो आइसोलेट हुए हुए थे, तो उसको जरा बहुत ना खुला किया गया ताकि ना वो इससे जो क्राइम वगैरह ना कम हुआ है। पहले था कि जैसे आपको देखा होगा, आपने देखा होगा हर जगह डेनमार्क में बड़ी ग्रीनरी होती है, बड़े दरख्त वगैरह होते हैं, तो उस वजह से ना को क्राइम वगैरह जो है ना वो ढका छुपा था। अब ये है कि अगर आप ढंग से आए देखें तो उन्हें वार्स वो सारा ओपन कर दिया है। अब जो दरख्त है वो दरख्त भी जो मोस्टली जो है ना उनको वो छांटी करके, ताकि जो है ना पुलिस या एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड इनके लिए अब इजी जो है ना हो गया वो पहुंचना। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें लोग जो हैं वो भी तावन कर रहे हैं, और जो आपका ये जो बलदियाती जो सारा ढांचा है उनके तावन से, और वरना मेरे हाल में मुमकिन नहीं था। तो लेकिन
1: भाई
2: उड़ीसा
1: साहब,
2: में
1: चूंकि
2: जैसे
1: ये सारी चीजें आप जो डेनिश तरीकाकार से, जो सिस्टम से, कानून कायदे से कर रहे हैं, यहाँ पर ये पाकिस्तानी सियासत का तर्ज अमल इसमें नहीं होता, बंदे का, इंसान का अपना, यहाँ का जो जमहूरियत का तरीकाकार होता है उससे ये सारी चीजें अचीव की जाती हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया आपने, किसी का यहाँ बोर्ड नहीं लगा होता जैसे पाकिस्तान में, ये फलां गली फलां सड़क जो है वो तो कीर शाह साहब जो है ना ये मुकम्मल करेंगे, ये फलां नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल बजा है कि ये सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत हर चीज जो है ना वो काम कर रही है। तो बाकी अल्लाह का बड़ा करम है कि जब से मैं डेनमार्क आया हूँ, ये मैं समझता हूँ मेरे अल्लाह का फजल करम है कि वतन से मोहब्बत है, हम वतनों से मोहब्बत है, और जैसे अभी आपने पहले कहा कोपेनहेगन आना, सफारतखाने आना, कोपेनहेगन के जो इवेंट होते हैं उनमें शिरकत करना, ये मेरे लिए बड़ी फखर की
1: बाकी
2: बात
1: साहब,
2: है।
1: उस वक्त कोई
2: मैं
1: इश्तिहार लिखा जाता था जब पब्लिक में जाता था, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर पे तो लिखे नहीं जाते थे, हाथ से लिखे जाते थे, उसमें
2: जी
1: ओडेंसे वालों का और कश्मीरी बिरादरी का जिक्र ना हो तो वो प्रोग्राम कामयाब भी नहीं होता था।
2: नहीं, आज भी देखें मिसाल के तौर पे ना, मैं कई, मैं वो नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज भी कोई भी प्रोग्राम है, चाहे वो पाकिस्तान से रिलेटेड हो, अगर वहां डॉक्टर लामा इकबाल का जिक्र ना हो या उनकी तस्वीर ना हो या कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना का जिक्र ना हो या उनकी तस्वीर ना हो, पाकिस्तान का परचम ना हो, तो मैं तो वो किसी इस तरह के प्रोग्राम को मुकम्मल नहीं समझता। मैं तो, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जब अभी देखे ना, जब ये प्रोग्राम था फ्राइडे को 14 अगस्त का था, तो उसमें कायदे आज़म की, ठीक है उनकी वो बानी पाकिस्तान है, लेकिन जो जो थिंकर एंड ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान अलामा मोहम्मद इकबाल, तो अगर उनकी भी तस्वीर हो जाती साथ तो चार चांद लग जाते। मुझे वो बड़ी कमी महसूस हुई है।
1: भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने, मुझे पता है आप फैमिली के साथ सारे बैठे हुए हैं और अपना टाइम ये आप दे रहे हैं, आपने दिया। तो शाह साहब, आप हमारी तरफ से, अपनी तरफ से जिन लोगों ने हमें मुबारकबाद दी उनका शुक्रिया अदा कर दें।
0: ये राजा साहब, सबकी तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ, और चौधरी विलायत साहब भी बहुत खुश थे, उन्होंने मेरे से बात की, उनको भी बहुत खुशी हुई कि आपको ये शील्ड दी गई है और आप डिजर्व करते हैं। तो मैं आपको, मेरे आर उस के लोगों से भी मुलाकात हुई थी, उडनसे के लोगों से भी, खासबार साहब भी इधर, जितने लोगों से बात हुई है और सब ने खुशी का इजहार किया। अल्लाह ताला इस तरह के इवेंट्स होते रहे और जो हमारी दूसरे लोग हैं जो और भी डिजर्व करते हैं, उनको इस तरह की शील्ड और सर्टिफिकेट जो है वो एम्बेसी की तरफ से मिलने चाहिए, ताकि लोगों की, आने वाली नस्लों की जो है वो, शुरुआत तो आपसे हुई है, शुरुआत तो आपने की है, क्योंकि जो तगमे मिले हैं वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे, जो शील्ड है ये एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ने दिया, तो पहली दफा आपको शील्ड मिलने से सबकी हौसला अफजाई हुई है और लोग जो है वो बेहतर से बेहतर काम करेंगे, ताकि कल को उनको भी इस तरह की शील्ड जो है या इस तरह के सर्टिफिकेट्स मिले, तो ये एक बहुत खुशानदा बात है।
3: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए, ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
4: सब

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बसमान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मजसमान

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज आपकी आवाज।
1: लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी, आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: हफीज होशियारपुरी।

0: दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी, आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: गजल पेशे खिदमत है हसरत मुहानी की।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पे दी गई है, जो थके थके से तो हौसले